0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: वेंसडे 26th of August, सेव द डेट। होगा कुछ बहुत खास, होगा कुछ बहुत स्पेशल। सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रेडियो मस्ती RM2 एंड रेडियो मनोरंजन RN3। लेट्स सिंग टुगेदर, लेट्स डांस टुगेदर, लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर। केक कटिंग, गिव अवेज डिस्ट्रीब्यूशन, गेम्स एंड गिफ्ट्स, और होगी बहुत सारी मस्ती जहां हम करेंगे आप सबका मनोरंजन। आपसे हम मिलने आ रहे हैं गुडलैंड्स न्यू मार्केट दिन के 10 बजे से 11 बजे तक, पोर्ट लुइस अर्बन टर्मिनल मॉल दिन के 12 बजे से 1 बजे तक, रॉसबेल मॉल बाय वेस्ट दिन के 2 बजे से 3 बजे तक, फ्लैक टैक्सी स्टैंड नेक्स्ट टू बस स्टेशन शाम के 4 बजे से 5 बजे तक। सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ। सेव द डेट, सेव द डेट, बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें। साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। गुडलैंड्स, पोर्ट लुइस, रॉसबेल एंड फ्लैक, तैयार हो जाइए। हम मिलेंगे आपसे वेडनेसडे 26th of August को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। Sponsored by Lutavere.

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नाम पतिम वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। सावन प्रभात की इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, भगवान शिव की और संपूर्ण गणों के साथ में उपासना हो रही है। षण्मुखः शिव संभूतः शक्ति वज्रधर प्रभु अग्निशतनयो देवो ह्यापर्णातनय पुनः गंगायाश्च गणाभ्यायां कृत्तिकानां तथैव च विशाखेन च साखेन नैगमेये न चावृत। जिनके छह मुख हैं भगवान शिव से ही और जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो शक्ति और वज्र धारण करने वाले प्रभु हैं, अग्नि के पुत्र तथा अपर्णा के बालक हैं, गंगा गणाम्बा तथा कृतिकाओं के भी पुत्र हैं, विशाख शाख और नैगमेय इन तीनों भाइयों से जो सदा घिरे रहते हैं। शय इंद्रजित चेंद्र सेनानी तारका सुरजित तथा शैलानाम मेरु मुख्यानाम वेदकश्च स्वतेजसा तप्त चामी कर प्रख्यः शतपत्र दले क्षणः कुमारः सुकुमाराणां रूपोदाहरणं महत्। शिवप्रियः शिवाशक्तः शिवपादार्चकः सदा सत्कृत्य शिवयो राज्ञां समेदिशतु कांक्षतम्। जो इंद्र विजयी इंद्र के सेनापति तथा तारकासुर को परास्त करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वतों को छेद डाला है, जिनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर कुमार नाम से जिनकी प्रसिद्धि है और जो सुकुमारों के रूप के सबसे बड़े उदाहरण हैं, शिव के प्रिय शिव में अनुरक्त और शिव चरणों की नित्य अर्चना करने वाले हैं, स्कंद शिव शिवा की आज्ञा सिरोधार्य करके मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। ज्येष्ठानां वरिष्ठा वरदा शिवयोर्यजने रता तयोराज्ञां पुरस्कृत्य सा मे दिशतु कांक्षितम्। सर्वश्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठा देवी, जो सदा भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती है, उन दोनों की आज्ञा मान करके मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। त्रैलोक्यवन

0: जगत सृष्टि विविध्यर्थम ब्रह्मणाभ्यर्थिता शिवात्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

0: नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। मित्रता की कसौटी। यो मित्रताम निष्कपटम करोति निष्कारणो धन्तपम सह एवं विधाय मित्री कपटम विध्ययतात् तम लंपटम हेतुम पटम नटम धीकाम। जो किसी वस्तु की कामना नहीं रखता और सुधांत कारण हो मित्रता स्थापित करता है, वही अनेकशः धनवान का पात्र है। जो मैत्री करके हृदय में कपट रखता है, वह तो महाद्रुत है। उसके तो कार्यवश स्वांग रच लिया है एवं ऐसे मित्र को धिक्कार है। सभी ग्रहों का अंतशय सर्वेशयांतम निश्चयाः पतानांतम समुच्चया संयोग विप्रो गातम मारणातम च जीवतम। सभी ग्रहों का अंतशय है। बहुत ऊंचे चढ़ने वाले का अंत नीचे गिरना है। संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। महात्माओं की वाणी कल्याणकारी। चंद्रशाशवम योक्तार्थम तमाशास्तम मृदा अंत शीतल योक्तेताम महामालाम त गिरह। महात्माओं की युक्तिपूर्ण निर्मल वाणी चंद्र किरण के समान निर्मल सुखकर अमृतपूर्ण अतः करण को शील लगने वाले और अज्ञान रूपी अंधकारी को दूर करने वाले होती है। जहाँ सत्य वहाँ भगवान वही विजय। यतम सत्यम यतो धर्म यतो ही राजवनम यतः तव तो भवति गोविंदम यतः कृष्ण अस्तु हो जयाम। जिस ओर सत्य धर्म लज्जा और सरलता है उसी ओर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वही विजय है। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

हरि ओम तत्सत् वर्णानामर्थसंघाणां रसाणां छन्दसामपि मंगलानांश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिनो याभ्यां वीणाण पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरं श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री रामदूताय नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं आज वेडनेसडे 26 अगस्त के श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में। शिव सती की चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तेहि ते

कहानी। शिव जी सती माता से कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे दक्ष, उससे वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। इसलिए हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी।

यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु।

शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगे तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कही देखा हर जतन बहु रहई न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संगत ब विदा की न त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर लिया। पिता

0: भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे से उनकी सभी लोगों ने स्वागत नहीं किया। केवल एक माता भले ही आदर से मिले, बहनों ने भी बहुत मुस्कुराते हुए मिली। चले आज इसको यही विराम दूं आपकी ध्यान के लिए। बहुत धन्यवाद। सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

वृता यशशाप विवृता। ओम शांति शांति शांति। सभी श्रोताओं को सप्रेम नमस्ते। श्रावण मास तथा ब्राह्मण पर्व की श्रृंखला में आप श्रोताओं के लिए मेरा

यह वक्तव्य इस प्रकार है। यह मंत्र अथर्ववेद के 12वें कांड के 5वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। 4 शब्दों के इस छोटे से मंत्र में गागर में सागर भर दिया गया है और सफल जीवन का पूर्ण चित्र खींच कर रख दिया है। सत्येन सत्य से आवृता सब ओर से युक्त श्रीया लक्ष्मी से धन से प्रावृता और अधिक युक्त यशसा यश से कीर्ति से परि चारों ओर से वृता युक्त हम सब जीवन भर रहे। इस मंत्र में सफलता की 3 सीढ़ियाँ बताई गई हैं। जीवन की पहली सफलता सत्य है। मनुष्य की उन्नति और अवनति की कसौटी सत्य है जिसका साक्षी मनुष्य का अपना आत्मा है। इसी बात को योगिराज श्री कृष्ण जी ने गीता में कही है। उद्ररेदः आत्मनः आत्ममन्नः आत्ममानम् वसा देयत् आत्मै वात्मनौ बन्धुरः आत्ममय रिपु आत्मनः कि अपनी आत्मा से अपने आप उद्धार करें, अपनी दृष्टि से अपने आप को न गिरा लें। यदि सत्य पर चलना हो तो मनुष्य का आत्मा बंधु के समान है जो उसकी सहायता करता है। यदि असत्य और धर्म पर चलना हो तो उसका आत्मा विरोधी बन जाता है। महाभारत में विदुर ने कहा, यह आत्मना पत्र पतेह भृशम नर स सर्वलोकस्य गुरुत्यवत भवत्युक्त। जो व्यक्ति किसी भी काम करने से पहले यह देख लेता है कि कहीं ऐसा काम न हो जाए कि मेरा आत्मा ही मुझे लज्जित करने लगे, वह समस्त संसार का गुरु होने योग्य होता है। इसीलिए सत्यमय व्यवहार जीवन की पहली सफलता है। ऋग्वेद में यह कहा गया है, सत्य नोपतः भीता भूमि। इस संसार को सत्य ने संभाल रखा है। अगर सत्य निकल जावे तो संसार नहीं चल पाता। यह पृथ्वी सत्य पर टिकी है। सतपथ ब्राह्मण में और उत्तम बात आई है, स यह सत्यम वदति तथा अग्निनम समिज्यतम तम घृतेन अभीषितं चेत। जो मनुष्य सत्य बोलता है उसका जीवन घृत से प्रदीप्त अग्नि के समान उत्तरोत्तर प्रकाशित होता जाता है। वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। मनु महाराज का कथन है, नहीं सत्यात् परो धर्मो नात्रितात् पातकं परम, कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: श्रद्धेय श्रोताओं को पंडिता सरस्वती त्वरिया रामभोजन का सादर नमस्ते। वेदों का स्वाध्याय सच्चे अर्थों में जीवन का निर्माण करना है। ऋग्वेद का मंत्र प्रस्तुत है।

की शांति ही। शब्दार्थ इव जिस प्रकार मातृभिः अपनी माता से हिन्वानः प्रेरित परिवर्धित और पालित वस्तः बछड़ा अजयते सहायक प्रकार कांतिमान बनना है उसी प्रकार देवावीह इंद्रियों का संयम करने वाला मदह सदा प्रसन्न रहने वाला मतिभिः परिष्कृतः सत्कारों सद्विचारों द्वारा सुशोभित अथवा विद्वानों द्वारा सुशोभित और विद्या आदि अलंकारों से भूषित विभूषित इंदुह परमेश्वर उपासक भी साधन के पथ पर चलता हुआ अलौकिक शक्तियों से युक्त हो जाता है। भावार्थ बछड़ा माता का दूध पान करते हुए अपनी माता का स्नेह और प्यार प्राप्त करता है। माता निस्वार्थ भाव से उसका पालन और पोषण करती है। परिणाम क्या होता है? बछड़ा कुछ ही समय में कांति संपन्न बन जाता है, देखने योग्य हो जाता है। इसी प्रकार इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रियों की संयम रखने वाला, दुख में शोक में आपत्तियों और विपत्तियों में कष्टों और क्लेशों में सदा प्रसन्न रहने वाला, सत्कर्म करने वाला, सत विचार रखने वाला और विद्वानों द्वारा विद्या आदि शुभ गुणों से युक्त उपासक जब साधना करता हुआ ईश्वर की ओर बढ़ता है तो वह अलौकिक शक्तियों से युक्त हो जाता है। ओम आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः। हे ईश्वर, हमारे शुभ विचार एवं शुभ कर्म सब ओर से निर्विघ्न ऊपर उठते हुए चले जाएं। ओ

0: यज्ञा यज्ञा वो अग्नय गीरा गीरा च दक्षसे प्रप्रवयम् अमृतम् जातवेदसं प्रियं मित्रं नवंशिषम्।
1: विद्वान जनों का कर्तव्य है कि वे हर एक यज्ञ में सुमधुर वाणी से दिव्य शक्ति पाने के लिए प्रयत्न करें। जो शक्ति नाश रहित मनोहर और मित्र के समान है, उस शक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए। जैसे विद्वान लोग सभी से प्रीति उत्पन्न करते हैं और अपने कार्य को शांति के साथ साधते हैं, वैसे ही सभी को यथाशक्ति शुभ आचरण करना चाहिए।
0: ओम गाथपथिं मेधापतिं रुद्रं जलाशभेषजं तच्छंयो सुम्नमीमहे।
1: कोई भी मनुष्य परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के बिना स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा गाथपतिम है, अर्थात स्तुति करने वालों के रक्षक हैं। वही परमात्मा मेधपति हैं, अर्थात यज्ञ, परोपकार एवं पुरुषार्थ करने वाले पुरुषों के रक्षक हैं। परमात्मा ने संसार में दुख एवं कष्टों को दूर करने के लिए यज्ञ, तप, योग एवं उपासना का मार्ग प्रशस्त किया।

0: जिस धारणावती बुद्धि को देवता व विद्वान लोग चाहते हैं और पितर जानी जन जिस मेधावी बुद्धि की कामना करते हैं, वे सर्वोन्नति साधक प्रकाश स्वरूप परमेश्वर मुझे आज ही मेधा बुद्धि का वरदान प्रदान करें। इसी जीवन में मुझे तेज बुद्धि से संपन्न करें। जिस बौद्धिक शक्ति को प्राप्त कर हमारे पितर और देवगण भगवान की उपासना में लगे रहे, मुझे वैसे ही मेधा शक्ति की प्राप्ति हो।
1: ओम मेधा मे वरुणो ददातु मेधामग्नि प्रजापति मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधाम धाता ददातु मे।
0: सर्वश्रेष्ठ तथा वरणीय परमेश्वर, आप मुझे मेधा बुद्धि प्रदान करें। बुद्धि की शक्ति ही एक मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। अग्निदेव जो सबको आगे ले चलता है और सबका कार्य सिद्ध करता है, मेधा बुद्धि प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध हो।

0: समय हो चला है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम विधिमा के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको विधिमा।
1: नमस्कार रिया, सभी को नमस्कार। खुशबा में 25 अगस्त को 7 महीने के मासूम आंध्रिया नुपेरिन के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी, जहां पिता द्वारा की गई उसकी हत्या से पूरा देश स्तब्ध और भावुक नजर आया। इस दुखद त्रासदी से आहत होकर बड़ी संख्या में रिश्तेदार

और पड़ोसी उसे अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिच्चू से जुड़े मामले में स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा है कि किस प्रोटोकॉल के तहत मंत्री के निजी डॉक्टर को सरकारी अस्पताल में चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में बुलाया गया और क्या इस दौरान सरकारी उपकरणों व कर्मचारियों का उपयोग हुआ।

0: पकड़ने की गतिविधियों की निगरानी करना और अवैध शिकार पर रोक लगाना है। इसके तहत जहाजों की इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत किया गया है ताकि अधिकारियों को सटीक आंकड़े मिल सकें। विदेश में कंट्री संगीत की दिग्गज गायिका डोली पॉटन का कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया और कनाडा ने अमरीका पर 50% तक के डॉलर फॉर डॉलर जवाबी टैरिफ की घोषणा की है। और आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। पूर्व से पाए जा रहे बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है। हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह बादल छाए रहेंगे और देश के पूर्व और सेंट्रल प्लेटो पर रह रहकर बारिश होगी। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 25, अन्य इलाकों पर 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और ऊंचाइयों पर कुछ छींटे पड़ेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16, अन्य इलाकों पर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस। हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। सूर्योदय 6:24 पर और आज शाम 6 बजे सूरज ढल जाएगा।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti. ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत। भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
4: चलिए श्रोता, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 6:03 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और आज है बुधवार का दिन और आज है 25 अगस्त 2026। तो चलिए सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। हम आशा करते हैं कि आप जहां से भी हमें सुन रहे हैं आप एकदम स्वस्थ हैं, कुशल मंगल से हैं और भोर के बेला इस हिंदुस्तानी सभा में आप तमाम श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। तो चलिए श्रोताओं, ये सफ़र जो है इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक रहने वाला है आपके साथ। तो ज़्यादा देर न करते हुए ये सवेरा जो है इसका शुभारंभ हम कर रहे हैं सनातन धारा इस कार्यक्रम के साथ।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सनातन धारा।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस सनातन धारा कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय श्रावणी तथा रक्षाबंधन। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को दो प्रमुख पर्व मनाया जाता है, श्रावणी तथा उपाकर्मा।

और रक्षाबंधन। उपाकर्म शुद्ध वैदिक पर्व है जिसे विशेष रूप से द्विज लोग मनाते थे। किसी नदी, जलाशय या समुद्र तट पर सामूहिक रूप से विधि पूर्वक स्नान, पूजन, हवन करके वह पर्व संपन्न किया जाता था। इस दिन यज्ञोपवित्र को अभिजित किया जाता था और ऋषि पूजन आदि का विधान था। अब अधिकांश स्थान में इस पद्धति को लुप्त हो जा रहा है। अनेक लोग उपाकर्म के नाम से भी अपरिचित होते जा रहे हैं। जिस प्रकार आश्रम और गुरुकुल की परंपरा क्षीण हो रही है, उसी प्रकार इसकी भी क्षीण होते जा रही है। शास्त्र में निर्देश है, संप्रभाते श्रावणमास्यते पूर्णिमास्यताम दिनोदये स्नानम कुवीर्तम मतिमानम श्रुते स्मृते विधानता। अर्थात बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि श्रावण की पूर्णिमा को प्रातः ही श्रुति स्मृति विधान अनुसार स्नान आदि कृत करें। यह आत्मशोधन का पुण्य पर्व है। सावधानी के साथ रहने वाले व्यक्तियों से भी प्रमादवश कुछ न कुछ भूल हो जाते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए और पाप से मुक्त के लिए श्रावण का विशेष उपयोग है। आचार्य महेंद्र कृत श्रावणी का संकल्प कर्मकांड का सबसे बड़ा संकल्प है, इसलिए पूर्णिमा तिथि में स्नान करना सबसे जरूरी है। अगर आप सब लोग स्नान का नियम लेंगे तो अनेक प्रकार के चीजों से स्नान करने का वर्णन कहा गया है, जैसे मिट्टी से स्नान करना। कौन सा मिट्टी? तुलसी के पौधे के नीचे जो मिट्टी है उसको लेकर के शरीर में लगा करके स्नान करने से जो हमारा शरीर का रोग है, तन मन का रोग, वो पवित्र हो जाता है। और साथ में कहा गया गोबर से स्नान करना, भस्म से स्नान करना, पंचकव्य से स्नान करना, अपामार्ग कुशा युक्त जल से भी स्नान करना। इस प्रकार से अनेक स्नान का वर्णन किया गया है। और ये सभी स्नान किस दिन करना है? ये पूर्णिमा तिथि में कहा जाता है। श्रावण के पूर्णिमा तिथि में इससे स्नान करने से मनुष्य का शरीर और मन पवित्र हो जाता है। केवलम पावनार्थाय महादृष्टातात्मने कृतम स्थिवामी स्ना प्रसिद्धम च पुनिहिमान। जल को भी लोग शोधक मानते हैं। अगर ये भी नहीं मिला तो अपने घर में जाकर के स्नान करते समय ओम गंगाई नमः गंगाई नमः मंत्र बोल करके अगर स्नान करते हैं तो शरीर पावन और पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार से श्रोतागण, वह पावन दिन है जहाँ पर हम सब लोग प्रेम की धागा को बांधते हैं। ऐसे शास्त्र में बहुत सुंदर सुंदर चरित्र आता है। अगर हम सब लोग रक्षा सूत्र की बात करते हैं, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का सही अर्थ होता है रक्षा सूत बांधना। रक्षा सूत का मतलब होता है कि हम अपने मन इंद्रियों को पवित्र करके अपने रक्षा के लिए हाथों में बांधा जाता है। सिर्फ भाई बहन के लिए नहीं होता है, ये पति पत्नी के लिए होता है, गुरु शिष्य के लिए होता है, जिनके कोई नहीं है, जिसके माँ है, माँ अपने बच्चों के लिए बांधते हैं। यह पावन पर्व इतना सुंदर है कि हम सब लोग स्नान युक्त होकर के अपने भ्राता के लिए दीर्घ आयु के लिए वहां पर रक्षा सूत बनते हैं। ये नवदो वली राजा दानविंद्रो महाबल तेन त्वाम निधियामी रक्षे महाचल महाचल। हे भ्राता, गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, अगर हो सके तो रक्षा सूत में सात गांठ भी बांध लें, हो सके तो पीला रंग और लाल रंग, ये दो रंग के धागा को बना करके गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद अगर आपके पास एक दिया है, जोत है, उस जोत में लगा करके तब

जा करके अपने भ्राता के हाथ में कलाई में बांधे। सिर्फ भाई नहीं कहता, बल्कि भाई भी बहन की रक्षा के लिए अपने बहन के हाथ में कलाई में बांध सकती है। ये रक्षा का कवच है। और पति पत्नी जब भी हम लोग विवाह संस्कार करते हैं, ब्रह्म विवाह संस्कार जब भी करते हैं, तो अंत में क्या देखा जाता है? जब मांग में सिंदूर चला गया, मंगलसूत्र चला गया, कंगन चला गया, तो क्या करते हैं पंडित जी? लड़की से कहते, पत्नी से जो लक्ष्मी स्वरूप है, कहते अपने पति के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधो। और पति भी अपने पत्नी के हाथ में बांधते हैं, तंतु मानी न मम जीव तंतु नाम। क्या कहते हैं? कि आज से मैं आपकी रक्षा करूंगा। और वो भी कहते हैं, आज से मैं आपकी रक्षा करूंगी। इसीलिए सिर्फ भाई और बहन का त्योहार नहीं है, बल्कि पति पत्नी का है। जितने गुरु जी के पास जितने लोग जाते हैं, तो गुरु जी क्या करते हैं? रक्षा सूत बांधते हैं अपने शिष्यों के लिए, सभी लोगों के लिए रक्षा सिद्ध गुरु जी बांधते हैं, ये न वधु बोल करके, टीका करके, दीर्घ आयु के लिए। तो इसलिए यह दिन इतना पावन और पवित्र है कि जहां पर हम सभी लोग अपने परिवार के रक्षा हेतु बना सकते हैं, रक्षा सूत बना सकते हैं, और रक्षा सूत बना करके एक दूसरे के हाथ में भी बांध सकते हैं। जिसके घर में कोई भाई नहीं है, माता जी है और बच्चे लोग हैं, तो माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए बांध सकती है। जिसके घर में पत्नी बीमार है, अगर पत्नी बीमार है, तो पति रक्षा सूत बना करके गायत्री मंत्र लेकर के अपने पत्नी के हाथ में बांधेंगे, और साथ साथ में पत्नी भी अपने पति के रक्षा हेतु के लिए रक्षा सूत बांधते हैं। कम से कम 40 दिन तक तो उसके हाथ में रहेगा उसके रक्षा के लिए। आप सभी लोगों को मंदिर परिषद की ओर से रक्षाबंधन की शुभकामना देते हुए यही प्रार्थना भगवान से करेंगे कि सबका कल्याण हो, सब खुश रहें, सब अपने जीवन में अति आनंद से जीवन को व्यतीत करें। इति ओम शांति शांति, इति शुभम।

0: श्रोताओ, 6:14 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले वक्वा के रहने वाले निवासियों को, जिनमें हैं वुडग्रैनम, मौसलमान सुबा, विल्सन लेन, मुदाला रोड और आसपास की गलियों के रहने वाले लोगों को, बुधवार 26 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच। फिर है पायुत के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है रघुलेन, कालीमाई लेन और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को, बुधवार 26 अगस्त 2026 को दिन के 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच। और अंत में है वायल रोड मेनिल के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है पारिजो रोड के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को और आसपास की गलियों के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 27 अगस्त 2026 को दिन के 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए इस हिंदुस्तानी सभा को हम जारी रख रहे हैं।
1: Changement climat, pas tout n'est que peco ça même. Qui fait? Parce que la vie tout du monde dans tout pays affecté par la sécheresse, par bonne tempête, par bonne baisse production alimentaire. Et un pays qui plus vulnérable que les autres. Maurice, pour faire tonne sur la voie ensemble avec ben les autres pays comme nous, de COP31, qui est une conférence internationale au changement climat.

0: Voix Maurice, c'est où la voix? Participe dans consultation qui ministère l'environnement PFA avant nous soumettre nos positions nationales. Donne-nous l'idée ou proposition, l'eau ça m'en adresse là. menv@govamu.org et COP 31 proposals 2026@gmail.com. Ou pour gagner plus renseignements, le site internet et l'eau BVA qui passe Facebook officiel ministère l'environnement. Date limite 4 tantôt, le 6 septembre 2026.
1: तो चलिए श्रोताओं, आपके एक भावगीत लेकर आए हैं। कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है, हमें समय के साथ चलना होता है और समय का कदर हर किसी को करना होता है।
2: समय का उड़ता पंछी जिसको

चलिए श्रोताओं, इस हिंदुस्तानी सभा को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए श्रावण मास के शुभ अवसर पर ये विशेष कार्यक्रम आर्य सभा की तरफ से आप सुन पाएंगे। कुछ ही घड़ी में 6:30 वाली है। श्रोताओं, आप समाचार सुनेंगे। 7 बजे हम मिलेंगे। सुबह का नजाना कार्यक्रम को लेकर हम उपस्थित हों।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: श्रावण मास के विशेष कार्यक्रम में आर्य सभा मॉरिशस से पंडिता नर्मदा पतिया की ओर से श्रोताओं को हमारी सादर नमस्ते। सेवा में प्रस्तुत है एक वेद मंत्र। ओम गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे, प्रियानाम त्वा प्रियंपतिम हवामहे, निधिनाम त्वा निधिपतिम हवामहे, वसु मम अहम जानी गर्भधमा त्वम जासी गर्भधमा, ओम शम। यह मंत्र यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 19वां मंत्र है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्याग्रह प्रकाश के प्रथम समुलास में ईश्वर के 101 नामों की व्याख्या करते हुए लिखा है, गण संख्याने ईश वापति शब्द रखने से गणेश और गणपति शब्द सिद्ध होते हैं, जो प्रकृति आदि जर और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने हारा है। इससे उस ईश्वर का नाम गणेश व गणपति है। गणानाम त्वा गणपति, गणों का स्वामी मालिक एकमात्र ईश्वर है। गण का अर्थ है समूह, सभी जीवों के समूह का मालिक एकमात्र ईश्वर है, वह ईश्वर जो गणों के बीच रहता है। स्त्री का गण, पुरुष का गण, सभी जीव जंतुओं का गण, पेड़ पौधों का गण, प्रकृति में जितने जड़ चेतन पदार्थ हैं उन सभी का पालनहार वह एकमात्र परमात्मा है। हवामहे, हम यह स्वीकार करते हैं, प्रियाणाम परमात्मा अति प्रिय है, बहुत प्यारा है। हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत मोक्ष की ओर ले जाता है। परमात्मा प्रिय पति, सभी प्रिय वस्तुओं के पति हैं। लोक में उसका कोई पति नहीं, अर्थात उस पर शासन करने वाला कोई नहीं है, नहीं उससे अधिक ऐश्वर्य वाला कोई है, वह परम ऐश्वर्यवान है। यह सूरज चांद तारे सब उसका ऐश्वर्य है, वह जगत का कारण है, वह साधनों के स्वामियों का भी स्वामी है, उसका कोई उत्पादक नहीं और नहीं उसका कोई स्वामी है। इसीलिए परमात्मा प्रियाणाम अति प्रिय और प्रियपतिम है। हवामहे, हम आपकी स्तुति करते हैं। निधिनाम, परमात्मा की निधि खजानों के भंडार से भरे हैं, भंडारों के आप ही स्वामी है। भगवान ने इस धरती पर ऐसे कई सुंदर जीव बनाए हैं जिनमें से कई तो हम रोज़ देखते हैं और कईयों को कभी कभी। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्हें हमने अब तक न देखा ही है। अनेक गणों समूहों के पति होने के साथ साथ परमात्मा भंडारों का भंडार है। हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुए लाखों वर्ष बीत गए,

तब से यह धरती माँ अपने सभी जंतुओं वनस्पतियों के जीवन का आधार बनी है। इसमें प्राणदायक भोजन है, जल है, हवा है, तरह तरह के फल फूल, सुंदर सुंदर प्राणी, घने जंगल, इठलाती नदियाँ, धवल पर्वत शिखर, सतरंगी इंद्रधनुष है। कितनी विविधता है इस धरती पर। यही धरती रत्न देती है, अन्न देती है। लाखों वर्षों से जीवधारियों के लिए ईश्वर ने कभी कोई कमी नहीं रखी, न आगे कमी रखेगी। इसकी वजह है जीवन का संतुलन बनाए रखने वाले प्राकृतिक चक्र। सूरज की गर्मी धरती का पानी सोख लेती है, वर्षा के रूप में वह पानी फिर धरती को मिल जाता है। यह पानी ईश्वर की निधि है, उसका खजाना है, उसके पास सुरक्षित है, काम आने पर हमें प्रदान करते हैं। निधि नाम त्वा निधिपतिम, परमात्मा भंडारों के आप ही स्वामी है, निधिपति है, सबका संचालक है। आप सब में वसु बसे हुए हैं, सब में, पात पात में, फूल फूल में, कण कण में समाये हुए हैं। मम, मेरे अंदर भी आप बसे हुए हैं। आ हम जानी, आ अच्छे प्रकार से जानी, जाने हम अच्छे प्रकार से जाने कि आप हमारे अंदर बसे हैं। हमें अंतर्मुखी होकर अपने जीवन के सद्मार्ग का निर्माण करना है। नदी नाले में जाने कि ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं। गर्भधमा त्वम जासी गर्भधमा, ब्रह्मांड के इतने ग्रहों सितारों को आपने अपने गर्भ में धारण किया है। पृथ्वी के गर्भ से ऊर्जा शक्ति का अगाढ़ भंडार, तेल, कोयला, ईंधन आदि खनिज पदार्थ है। हम धरती की सतह को खोदकर तेल, कोयला, ईंधन आदि के द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं। रेलगाड़ियां, बसें, वायुयान तथा कल कारखाने इसी से चलती हैं। धरती का सीना चीरकर पेट्रोल निकाला जा रहा है, इससे पर्यावरण के विनाश में तबाही हो रही है। गाड़ियों के पेट्रोल के धुएं से जलने के कारण हमारे ओजोन परत में सुराख हो गया, इससे सूरज की गर्मी हम तक पहुंचने का रास्ता आसान हो गया। धरती माता को सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी से बचाना है, नहीं तो उसकी संतानों का जीवन दुभर होता जाएगा। सादा जीवन, ऊंच विचार के सिद्धांत को अपना लें तो हम सब के अस्तित्व पर मंडरा रहा संकट टल सकता है। इस मंत्र में वेद माता अपने पुत्रों से यही कहना चाहती है कि उसी जगदीश्वर की उपासना करनी चाहिए जो गणों का पति, प्रियाणाम निधिनाम त्वानिधिपति है, जो सब जगत की रक्षा चाहे हुए सुखों का विधान, प्रकृति का पालन और सब बीजों का विधान करता है। हम उसके अनमोल खजाने के प्रयोग में संयम बरतें, उसमें से बस उतना कुछ लें जितना जीवन के लिए आवश्यक है। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सबसे पहले आज की सुर्खियां। रोशबा में 25 अगस्त को 7 महीने के मासूम आद्रियानो पेरिन के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी। जहां पिता द्वारा की गई उसकी हत्या से पूरा देश स्तब्ध और भावुक नजर आया। इससे दुखद त्रासदी से आहत होकर बड़ी संख्या में रिश्तेदार और पड़ोसी उसे अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिच्चू से जुड़े मामले में स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा है कि किस प्रोटोकॉल के तहत मंत्री के निजी डॉक्टर को सरकारी अस्पताल में चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में बुलाया गया और क्या इस दौरान सरकारी उपकरणों व कर्मचारियों का उपयोग हुआ तथा ऐसी सुविधा अन्य आम मरीजों को भी मिल सकती है या नहीं। फिशरीज इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम सामनमेंट रेगुलेशंस 2026 का मुख्य उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों की निगरानी करना और अवैध शिकार पर रोक लगाना है। इसके तहत जहाजों

0: की इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत किया गया है ताकि अधिकारियों को सटीक आंकड़े मिल सकें। और विदेश में कंट्री संगीत की दिग्गज गायिका डॉली पार्टन का कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया और कनाडा ने अमेरिका पर 50% तक के डॉलर फॉर डॉलर जवाबी टैरिफ की घोषणा की है। रोशवा में 7 महीने के बच्चे एड्रियानो पेरिन के अंतिम संस्कार के दौरान कल मंगलवार 25 अगस्त को काफी भावुक पल दिखने को मिली। रविवार को पिता द्वारा मारे गए इस मासूम बच्चे की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उसे अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में रिश्तेदार, पड़ोसी और अन्य लोग रोशवा में एकत्रित हुए। कुछ लोगों का कहना है कि वे इस त्रासदी से बेहद प्रभावित हुए हैं। मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सोमवार को एक बयान जारी कर स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू से जुड़े मामले में स्पष्टीकरण की मांग की है। मंत्री ने निजी क्षेत्र में उनका इलाज करने वाले अपने डॉक्टर को एक सरकारी अस्पताल में की जा रही चिकित्सा प्रक्रिया में पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित किया था। MHOA के अध्यक्ष डॉ. विनीश शिवसन ने कहा कि मंत्री को अपना डॉक्टर चुनने के अधिकार का वे सम्मान करते हैं, हालांकि संगठन ये जानना चाहता है कि निजी डॉक्टर ने किन परिस्थितियों में इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप या भागीदारी की। संगठन विशेष रूप से ये जानना चाहता है कि क्या सरकारी अस्पताल के उपकरण और कर्मचारियों की सेवाएं उस निजी डॉक्टर को उपलब्ध कराई गई थीं। MHOA ने एक और सवाल भी उठाया है, क्या यही सुविधाएं उन अन्य मरीजों को भी उपलब्ध कराई जाएंगी जो किसी सरकारी अस्पताल में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ की सेवाएं लेना चाहते हैं। संगठन ने अंत में ये भी पूछा है कि क्या कोई ऐसा प्रोटोकॉल मौजूद है जिसके तहत निजी क्षेत्र का कोई डॉक्टर सरकारी अस्पताल में चिकित्सा हस्तक्षेप कर सकता है। डॉक्टर विनेश शिवसन को सुनते हैं जिनसे बात की राजवीना सीतामणि ने।
1: Alors, nous, au niveau de l'association, et au niveau des médecins qui finissent au intérieur, et aussi d'un senior docteur, qu'on a demandé.
0: संगठन रिटायर्ड डॉक्टरों तथा सीनियर डॉक्टरों की ओर से किसी को भी पता नहीं है कि ऐसी प्रथा चल रही है, इसलिए हमने स्पष्टीकरण के लिए एक विज्ञप्ति जारी की, क्योंकि सामान्य चिकित्सक जो मरीजों और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के बीच पुल का काम करते हैं। जनता और मरीजों से हमें प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि वे भी चाहते हैं कि अस्पतालों में उनकी सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल करने वाले डॉक्टर उनके साथ हो। ये जानना जरूरी है कि क्या एक प्रोटोकॉल लागू है, अगर है तो सर्कुलर कहाँ है, क्योंकि हमें कोई सर्कुलर प्राप्त नहीं हुआ है।
2: शिक्षा के क्षेत्र में NC 2026 के कैंडिडेट्स को परीक्षा का कार्यक्रम भी पता चल गया है। परीक्षाएं 2 से 16 अक्टूबर तक कुल 7 दिनों में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा सत्र की शुरुआत शुक्रवार 2 अक्टूबर को आर्ट एंड डिज़ाइन के पेपर से होगी। इसके बाद 6 अक्टूबर को अंग्रेजी और ICT जबकि 7 अक्टूबर को फ्रेंच तथा सोशल एंड मॉडर्न स्टडीज़ की परीक्षाएं होंगी। 9 अक्टूबर को टेक्नोलॉजी स्टडीज़ के दोनों पेपर होंगे। इसके बाद 13 अक्टूबर का दिन काफ़ी व्यस्त रहेगा। इस दिन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन के साथ साथ भाषाओं के 8 पेपर होंगे, जिनमें हिंदी, अरबी और ख्याल मुहसिया भी शामिल हैं। विज्ञान की परीक्षा 15 अक्टूबर को होगी, जबकि गणित की परीक्षा 16 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब एक विशेष संदर्भ में सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित सुधार के तहत ग्रेड 9 में NCE को समाप्त करने की योजना है। इस सुधार से संबंधित अंतिम ब्लूप्रिंट पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दिया गया है। इसे अभी समीक्षा के लिए देखा जाना बाकी है, जिसके बाद इसे कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। मॉरिशस विश्वविद्यालय में ख्याल मुहसिया का 800 से अधिक पृष्ठों और 20,000 शब्दों वाला एक नया पॉकेट शब्दकोश मंगलवार को लॉन्च किया गया। ये लॉन्चिंग ऐसे समय में हुई है जब भाषा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और 2026 में HSC पाठ्यक्रम में शामिल होने जा रही है। शिक्षा मंत्री डॉ. महेंद्र गंगा प्रसाद ने कहा कि ये नया शब्दकोश छात्रों और आम जनता दोनों के लिए उपयोगी साबित होगा। उनको सुनते हैं जिनसे बात की शैली नयाबन ने विवरण रचनी भी कर का है।
3: C'est-à-dire une équipe technique, maintenant ensemble avec professeur Corpourant, ensemble avec un technicien ministère de l'éducation, MES et MAI, je vais guider qui m'a pour ce certification.
4: Shiksha Mantri Mahen Ganga

0: प्रसाद ने कहा एक टेक्निकल टीम है जो प्रोफेसर कॉपोहो शिक्षा मंत्रालय और एमईएस तथा एमआई के टेक्नीशियनों के साथ मिलकर देख रही है, इस पर काम कर रही है कि किस तरह इसका सर्टिफिकेशन होगा। वे नियमित रूप से करिकुलम असेसमेंट फ्रेमवर्क, प्रोजेक्टों के क्वालिटी एश्योरेंस आदि पर काम करते हैं। इस प्रक्रिया पर काम चलता रहता है, फिर भी कैम्ब्रिज भी इसे मॉनिटर करता है। ये पूरी तरह स्वायत्त नहीं है, इस पर कैम्ब्रिज की भी नजर है ताकि किसी तरह का कंसेशन न हो।
1: पहली अक्टूबर से लागू होने वाली मीठे उत्पादों पर टैक्स के विस्तार की योजना अब निलंबित कर दी गई है। उद्योग मंत्री आदिलामिया मियां की अध्यक्षता वाली समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस समिति की पहली बैठक सोमवार को जीएसटीई एक बहुउद्देशीय सरकारी संस्था के प्रतिनिधियों के साथ हुई। बैठक में मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा हुई कि इस टैक्स का लागत और कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही आयातित उत्पादों की तुलना में स्थानीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर इसका क्या असर होगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस टैक्स का विस्तार समिति की सिफारिशों, मंत्रिपरिषद के फैसले और आधिकारिक घोषणा के बाद ही लागू किया जा सकेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि चीनी पर एक्साइज ड्यूटी पहले ही 20 जून से बढ़ाकर 12 से 15 सेंट्स प्रति ग्राम कर दी गई है। अब टॉफी, जाम, बिस्कुट, वेफल, चेरी और च्युइंगम जैसे उत्पादों पर इस टैक्स के विस्तार की समीक्षा की जा रही है। मंत्री आदिल आमिर मियां को सुनते हैं।
2: जब इसे अमल में लाया गया तब बहुत सारी प्रतिक्रियाएं थी और ठेकेदारों, सहकारिताओं से जो मुलाकात हुई उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की कि क्या टैक्स को लागू किया जाएगा। सरकार ने फिलहाल 15 सेंट्स के टैक्स को फ्रीज करने का फैसला किया है। हम लोग एक बैठक की अध्यक्षता संभालेंगे जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, व्यापार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एमओआरए और स्टेक होल्डर शामिल होंगी। इसके बाद मंत्रिपरिषद में एक सिफारिश पेश करेंगे, तब दर पर बातचीत होगी और ये जानेंगे कि कौन इससे संबंधित होगा।
1: हमारे समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर बेहतर निगरानी रखना और अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करना, यही फिशरीज इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2026 का उद्देश्य है। इन नए प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्राप्त मछली पकड़ने वाले जहाजों पर इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली को और मजबूत किया गया है। ये प्रणाली अधिकारियों को मछली पकड़ने की गतिविधियों पर नजर रखने और पकड़ी गई मछलियों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने में महत्वपूर्ण मदद करती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मछली पकड़ने की गतिविधि के दौरान ये उपकरण खराब हो जाए या उसमें कोई तकनीकी गड़बड़ी आ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा। इनका जवाब जेनी यलापा की इस रिपोर्ट में विवरण याचना मिश्रा का है।
3: इन नए प्रावधानों के जरिए ऐसी परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से नियंत्रित किया गया है। जहाज के संचालक को खराब उपकरण की मरम्मत या उसे बदलने का काम 30 दिनों के अंदर अंदर किसी ऐसे बंदरगाह पर कराना होगा जिसे संबंधित मंत्रालय ने मंजूरी दी हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक उपकरण की मरम्मत या उसे बदला नहीं जाता और अधिकारियों द्वारा उसकी जाँच और पुष्टि नहीं कर ली जाती, तब तक कोई भी जहाज मछली पकड़ने की यात्रा शुरू नहीं कर सकेगा और ना ही उसे जारी रख सकेगा। इस उपाय का उद्देश्य निगरानी प्रणाली में हेरफेर या उसे दरकिनार करने के जोखिम को कम करना है। हालांकि यदि जहाज के समुद्र में होने के दौरान उपकरण में खराबी आती है तो इसके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में मछली पकड़ने की यात्रा जारी रखी जा सकती है, बशर्ते फिशरीज मॉनिटरिंग सेंटर को तुरंत इसकी जानकारी दी जाए। इसके बाद जहाज के संचालक को अपनी गतिविधियों का एक मैनुअल रिकॉर्ड रखना होगा और उपकरण की मरम्मत या उसे बदलने तक प्रतिदिन ईमेल के माध्यम से मछली पकड़ने से संबंधित आंकड़े मंत्रालय को भेजने होंगे। इन संशोधनों में तकनीकी स्तर पर भी अधिक लचीलापन प्रदान किया गया है। अब एक ही उपकरण का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आंकड़े भेजने के साथ साथ जहाज की स्थिति पर नजर रखने के लिए भी किया जा सकेगा। इसके अलावा दंड से संबंधित विशेष प्रावधानों को हटा दिया गया है ताकि फिशरीज एक्ट के साथ एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। इस कानून में पहले से ही अधिक कड़े जुर्माने और अधिक लंबी अवधि की कारावास

0: की सजा का प्रावधान है। इन नए उपायों के माध्यम से अधिकारियों का उद्देश्य मछली पकड़ने से संबंधित आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करना, मछली पकड़ने वाले जहाजों द्वारा अपने दायित्वों को बेहतर पालन सुनिश्चित करना और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मॉरिशस के मत्स्य संसाधनों की बेहतर सुरक्षा करना है।
1: मॉरिशस को भारत और अफ्रीका के बीच निवेश और कारोबार के एक मजबूत सेतु के रूप में आगे बढ़ाना लोकमत वन वर्ल्ड समिट एंड अवार्ड्स में कल इस सोच पर खास जोर रहा। हिंद महासागर में मॉरिशस की रणनीतिक स्थिति, अफ्रीका तक पहुंच और दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने वाले ढांचे जिनमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी शामिल है चर्चा के अहम पहलुओं में रहे। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजनीति, व्यापार, कला और सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली मॉरिशस और भारत की कई हस्तियों को सम्मानित किया गया। समारोह का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल को वैश्विक बदलाव और समाज की बेहतर दिशा में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। अशिता रघु।
2: मॉरिशस में एक मंच पर जुटी राजनीति, कारोबार और मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियां लोकमत वन वर्ल्ड समिट एंड अवार्ड्स के सातवें संस्करण के माध्यम से मॉरिशस के राजनीतिक नेताओं, कारोबारियों, निवेशकों और रचनात्मक जगत की जानी मानी हस्तियों ने एक सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही क्षेत्र में मौजूद निवेश के अवसरों को समझने और मॉरिशस के जरिए दूसरे अफ्रीकी बाजारों तक पहुंच बनाने की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श हुआ।
3: Nous avons une collaboration étroite entre l'Inde et Maurice. Et dans ce contexte, nous voulons remercier M. Vijay Darda et de son organisation LOCMAT qui prend l'initiative de Maurice et M. Owen Abov qui aujourd'hui peut faire une award cérémonie pour Banjoumoun qui fait un gros succès dans différents secteurs. Mais il y a l'occasion pour Banla ouvrir l'ISIE qui était une opportunité et dans Maurice.
4: अगर हिंदुस्तान को कुछ करना है, बदलाव लाना है, तो यही गेटवे जो यहाँ से हम लोग अफ्रीका की तरफ बढ़ सकते हैं। ये हम अफ्रीका क्यों जाना चाहते हैं कि वहाँ की जो मिनरल्स है उनको यूज़ करें हम लोग। यहाँ की जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, वो बढ़नी चाहिए, इक्वलिटी बढ़नी चाहिए। केवल कुछ इंडस्ट्रीज घराने नहीं पनपने चाहिए, तो साथ साथ में छोटे जो उद्योजक है वही रोजगार दे सकते हैं।
2: सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने मॉरिशस में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में रुचि दिखाते हुए टेक्निक, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे सेक्टरों पर चर्चा की।
5: टेक्नोलॉजी के थ्रू हम मॉरिशस में आके कुछ बिल्ड करें जो इंडिया से हम यहाँ लेके आए, तो हम जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेके आए उसी के साथ साथ हम AI को भी जोड़ रहे हैं। तो AI और ब्लॉकचेन मिलके पूरी देश की जो भी अर्थव्यवस्था है, जो इकोसिस्टम्स है या जो भी काम करने के तरीके है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ट्रेसेबिलिटी है, आइडेंटिटी है, ऐसी ढेर सारी चीज़ों के लिए हम भारत से मॉरिशस भी आना चाहते हैं, मॉरिशस में निवेश करना चाहते हैं, मॉरिशस में कंपनियां खोलना चाहते हैं।
2: बॉलीवुड अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह की मौजूदगी ने फिल्म उद्योग और मॉरिशस के बीच संभावित सहयोग, शूटिंग और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स की संभावनाओं पर भी चर्चा का रास्ता खोला।
6: मैं रिप्रेजेंट करती हूँ एक तरह का जो सॉफ्ट पावर होता है कंट्री का, जो जो कल्चर्स को जोड़ता है, जो कंट्रीज़ को जोड़ता है, जो बियॉन्ड लैंग्वेज एक तरह का कनेक्ट बनाता है। एंड आई थिंक सिनेमा से बेटर, फिल्म से बेटर और कोई, मुझे लगता है कि सॉफ्ट पावर इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। वी वर इन थाईलैंड, इफ़ आई लुक्ड राइट एंड फेल्ट लाइक आई वाज इन अमेरिका समवेयर, व्हेन आई लुक्ड लेफ्ट, व्हेन आई लुक्ड एट द हिल्स, एंड इट्स जस्ट अनबिलीवेबल द काइंड ऑफ वेरिड यू नो सीनरीज यू हैव।
2: सम्मेलन में उपस्थित मॉरिशस गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल को प्रतिष्ठित लोकमत ग्लोबल चेंज मेकर आइकॉन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो वैश्विक बदलाव में योगदान के लिए अलग अलग राष्ट्र नेताओं को दिया जाता है। कूटनीति से कारोबार तक, टेक्निक से संस्कृति तक, लोकमत वन वर्ल्ड समिट ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग के कई आयामों को एक मंच पर लाने की कोशिश की।
1: विदेश की खबरों में, दिग्गज कंट्री संगीत गायिका डॉली पॉटन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बाद में उनके प्रतिनिधियों ने खुलासा किया कि पॉटन का निधन कैंसर के कारण हुआ। डॉली पॉटन ने दुनिया भर में 100 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड बेचे और 6 दशकों के अपने कैरियर में 3,000 से अधिक गाने लिखे। और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए शुल्कों के जवाब में कनाडा ने अमरीकी सामानों पर 2,760 करोड़ कनाडाई डॉलर के बराबर के बदले टैरिफ की घोषणा की है। इसके साथ कनाडाई सरकार ने बढ़ते व्यापार युद्ध से प्रभावित

अवैध घरेलू व्यवसायों की सहायता के लिए एक वित्तीय राहत योजना भी शुरू की है। और आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। पूर्व से पाए जा रहे बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है। हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह बादल छाए रहेंगे और देश के पूर्व और सेंट्रल प्लेटों पर रह रहकर बारिश होगी। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 25, अन्य इलाकों पर 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और ऊंचाइयों पर कुछ छींटे पड़ेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 14 से 16, अन्य इलाकों पर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। सूर्योदय 6:24 पर और आज शाम 6 बजे सूरज ढल जाएगा।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम फैजन कुन के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय सुबह के 6:48 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: सोहन लेन ग्रैंड पॉइंट पीमा में 57 साल की 57 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दुलहंती गोपी, जो विश्वानी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10:30 उनके घर सोहन लेन ग्रैंड पॉइंट पीमा से उठाकर पॉइंट पीमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे 10:30। एलियन सनस्ट्रा रोड बोबासे में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री लोमेश प्रसाद सिंह जगरनोत, जो रोशन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 एलियन सनस्ट्रा रोड बोबासा से उठाकर श्रीबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे 1:30। बैठका रोड कौंदेपेश ग्रनवे साउथ ईस्ट में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह मधु, जो राजेन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:00 उनके घर बैठका रोड कौंदेपेश ग्रनवे साउथ ईस्ट से उठाकर बुशों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2:00 PM। नंबर 24 रॉ रोड ओकुले में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री रविचंद जाहल, जो चांद नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:00 उनके घर नंबर 24 रॉ रोड ओकुले से उठाकर बिगाहा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2:00 PM। ला शापेल ओडेंटेरियन सेंसरा रोड बोबासे में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती श्रद्धा कातों, पैदाइशी नाम गोपुल और जो बाम नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। वे बेनीलाला स्ट्रीट मोहोश रहती थी। उनकी अर्थी आज दिन के 2:00 ला शापेल ओडेंटेरियन सेंसरा रोड बोबासे से उठाकर बिगाहा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2:00 PM। गजाधर रोड शामुनी में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री देवानंद सवारत, जो विलियम नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:00 उनके बेटे राजीव सवारत के घर गजाधर रोड शामुनी से उठाकर कोंगोपाल शामुनी की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे 1:00 PM। ब्रांच रोड लालमाटी में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री विश्वदेव दुनाई, जो वेल नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2:00 उनकी पत्नी श्रीमती विद्वती पुनाई के घर ब्रांच रोड लालमाटी से उठाकर गांधी रोड लालमाटी की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2:00 PM। रॉ रोड संशोधिया दुतमो में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड के श्री मदन महाजन, जो विनु आदेश नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। वे पहले एमबीसी पुलिस पोस्ट में पुलिस सर्जेंट के रूप में पोस्टेड थे। उनकी अर्थी आज सपहर 3:00 उनके घर रॉ रोड संशोधिया दुतमो से उठाकर कौतोगल के शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3:00 PM। स्कूल लेने ख्वानियों में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री श्रीराम सुबी, जो सुनील नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 3:00 उनकी पत्नी श्रीमती शकीला

सुबी के घर स्कूल लेने ख्वानियल से उठाकर लावा चुआ की शमशान भूमि दी जाए जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: श्रावण मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में बुधवार 26 अगस्त को शाम 5:45 बजे नेहरू भवन बेल्वी मोगैल शाखा नंबर 13 नेहरू भवन रॉयल रोड बेल्वी मोगैल में यज्ञ और प्रवचन का आयोजन कर रहा है। प्रवचन आचार्य मोहन आर्य श्रुत बंधु द्वारा होगा। बुधवार 26 अगस्त को शाम 4:30 बजे श्रावण मास के संदर्भ में गहलोत राजपूत महासभा के तत्वाधान में बोनाकई राजपूत समाज शाखा नंबर 14 मिशन क्रॉस रोड बोनाकई में एक महायज्ञ का आयोजन कर रहा है।

Sports News. सभी सुनवाओं को अरविंद का प्यार नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड के हाथ एक भी ट्रॉफी नहीं लगी, काफी साल हो गए, पर उसका कप्तान ब्रूनो फर्नांडिस अवार्ड पर अवार्ड जीतता जा रहा है। इस बार प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन अवार्ड ब्रूनो फर्नांडिस के नाम, इससे पहले उसे फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था। महिला कैटेगोरी में मैनचेस्टर सिटी से खदीजा शॉ चुनी गई। यंग प्लेयर अवार्ड सिटी के डिफेंडर निको ओरेलिक ने जीता। प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन प्रीमियर लीग टीम ऑफ द ईयर में डेविड राया, टिम्बर सलीबा, गैब्रियल, डेक्लन राइस आर्सेनल से, मैनचेस्टर सिटी से है निको ओरेली, रायन चर्की, अर्लिंग अलॉन और एंटोन सेमेन्यो, मैनचेस्टर यूनाइटेड से ब्रूनो फर्नांडिस, ब्रेंटफोर्ड से इगो चागो, लिवरपूल एकदम गायब, एक भी खिलाड़ी का नामोनिशान नहीं है। स्कॉटलैंड की चैंपियन टीम सेल्टिक चैंपियंस लीग से आउट, जोर का झटका लगा मार्टिन ओनील को ऑस्ट्रिया की चैंपियन टीम LASK के खिलाफ। फर्स्ट लेग में सेल्टिक की जीत हुई थी 3-1 से। सेकंड लेग में एक समय 4 गोलों की ओवरऑल लीड थी, पर पासा पलटा और एक्स्ट्रा टाइम में सेल्टिक की हार हुई 5-1 से। ऑन एग्रीगेट 5-4 की हार। सेल्टिक को अब यूरोपा कप में उतरना होगा। साबा टीम भी क्वालिफाई हुई 5-2 से अपोएल बेयरशेवा को हराकर चैंपियंस लीग का टिकट बुक किया। बोडोग्लिंट के लिए आसान एंट्री 3-0 से जीत हुई NEC टीम पर। बोडोग्लिंट भी यूरोपियन चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज के ड्रो में होगा। इधर आज और 4 टिकट जीते जाएंगे। AK एथेंस लिव्स की सोफिया फर्स्ट लेग में 0-0। सेलिए स्लोवान ब्रातिस्लावा फर्स्ट लेग में 1-1। ओलंपिक लियो फेनेरबाचे फर्स्ट लेग में 1-1 और विकिंग दिनामो ज़ाग्रेब के बीच मैच 2-2 पर समाप्त हुआ था। सो फर्स्ट लेग में 4 मैच ड्रॉ गए थे, मतलब आज जो जीता चैंपियंस लीग के अंदर, बाकी यूरोपा लीग में। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप के दूसरे राउंड के नतीजे सुन लीजिए। नोविच ने एवे जाकर कार्डिफ को 2-1 से हराया। मिडल्सबोरो की जीत 3-1 से डोनकास्टर के मैदान में। बार्न्सले 3 क्रू अलेक्जेंड्रा 2, ब्लैकबर्न 1 शेफील्ड यूनाइटेड 2, लिंकन सिटी ने ब्लैकपूल को 4-1 से हराया। कैम्ब्रिज 0 मिलवॉल 1, फ्लिटवुड 4 श्रिसबरी टाउन 0। इप्सविच टाउन की जीत 3-1 से लेस्टर सिटी पर। प्लाइमूथ 2 कोवेंट्री 4, शेफील्ड वेडनेसडे 0 वुल्व्स 2, साउथहैम्पटन 1 वेस्टहैम यूनाइटेड 4, स्टीवनेज 0 रेडिंग 3, स्टोक

0: सिटी और हल सिटी के बीच मैच ड्रो गया, 1-1 हल पेनाल्टी पर क्वालिफाई। 440 वोल्ट का झटका लगा वाटफोर्ड को, पीटरबोरो यूनाइटेड ने उसे 5-1 से पछाड़ा। बर्मिंगम 1 ब्रेडफोर्ड 6 और नोटिंगम फॉरेस्ट की लगातार दूसरी हार 3 दिनों के अंदर अंदर लीड्स यूनाइटेड के खिलाफ। लीड्स यूनाइटेड ने इस बार नोटिंगम फॉरेस्ट के मैदान में 2-0 से हराया। आज के मैच ब्रेडफोर्ड सिटी वर्सेस बर्नली, न्यूकासल यूनाइटेड वेस्ट ब्रोमविच आल्बियन, टोटनहम हॉटस्पर चार्ल्टन एथलेटिक, प्रेस्टन नॉर्थ एंड एवर्टन। स्पेन के ला लीगा में कल रियल बेटिस ने 1-0 से वेलेंसिया को हराया। आज रियल मैड्रिड का मुकाबला रियल सोसिएडाड से होगा, रियल डर्बी। ट्रांसफर न्यूज, नॉटिंगहम फॉरेस्ट ने चेल्सी से स्ट्राइकर लियाम बिलप को साइन किया। फॉरेस्ट के लिए क्लब रिकॉर्ड फी 50 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक और मिडफील्ड खिलाड़ी आ गया, ब्राइटन से कार्लोस बालेबा आया है 70 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर। केवल 22 साल का है, 22 ईयर ओल्ड, अभी वो घायल है। अब यूनाइटेड को एक लेफ्ट बैक चाहिए। एस्टन विला क्रिस्टल पैलेस से मातेता को साइन करना चाहता है और निकोलस जैक्सन भी विला का टारगेट है। लिवरपूल के लिए इंतजार ही इंतजार बाकोला के लिए लिवरपूल और पेरिस सेन जर्मेन के बीच बातचीत जारी है, पर डील दूर है। टेनिस, US ओपन के मिक्स डबल के लास्ट 16 में अरीना सबालेंका और नोवाक जोकोविच हार गए। क्वार्टर फाइनल में सेरेना विलियम्स और कार्लोस अल्काराज भी हार गए। US ओपन सिंगल्स क्वालिफाइंग शुरू हो गए हैं। क्रिकेट, श्रीलंका टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में भी भारतीय टीम का पल्ला भारी है। टीम इंडिया के 509 रनों के जवाब में श्रीलंका 265 रन पर खेल रही है 8 विकेट खोकर। भारतीय टोटल के 223 रन पीछे, 238 रन बिहाइंड। कल भारतीय बॉलरों में से मानव सुतर और जडेजा 3-3 विकेट ले पाए। आज चौथे दिन का खेल होगा। और कुमोरो आइलैंड्स में लगने वाले हिंद महासागरीय टापू खेल ज्वेडिजिल 2027 में डेट फाइनलाइज कर लिए गए हैं। सो ये 10 से 19 अगस्त तक लगेंगे, ये 12वां एडिशन होगा। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, ब्रूनो फर्नांडिस को प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन अवार्ड दिया गया और सेल्टिक चैंपियंस लीग से बाहर। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: चलिए शूटआउट स्टूडियो की घड़ी में 7 बज रहे हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। लावाउचिया के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है गोया रोड, टेम्पल रोड, शिवाला रोड और विलेज होल लेन के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 27 अगस्त 2026 को सुबह के 8:45 से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है।
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये है सुबह का नजाना कार्यक्रम आपकी सेवा में। आज है बुधवार 26 अगस्त

2026 से आप सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करते हैं। अगर रेडियो अभी ऑन किया हो तो वैसे सुबह सवेरे 6 बजे से इस समय तक आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सफ़र जो है हम जारी रखेंगे दिन के 11 बजे तक। तो चलिए एक से बढ़कर एक प्रोग्राम आपके नाम हम करने वाले हैं और हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं शुभ विचारों के साथ। शुभ विचार आप सुन सकेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति।

0: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: चंदन से ज्यादा शीतल वंदन होता है, योगी से ज्यादा अच्छा उपयोगी होना अच्छा है, और प्रभाव अच्छा होने के बजाय स्वभाव अच्छा होना अधिक आवश्यक है।

क्रोध और लोभ मैं दज कर जा सकता हूं, तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता हूं। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता।

चलिए श्रोताओं, बुधवार का दिन है आज, आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम लेकर आए हैं तो चलिए हम आपको बताते चलिए। समय आप सुन रहे हैं सुबह का नजरा कार्यक्रम, चंद पुराने गाने आपकी सेवा में। 8 बजे भोजपुरी में समाचार आप सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार सुबह का नजरा कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। 8:30 बजे परिवार नियोजन पर आप एक कार्यक्रम सुन पाएंगे और साथ ही साथ चंद प्यारे गीत जो है शीर्षक गीत आपकी सेवा में हम प्रसारित करेंगे। 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में साथ में आपके लिए एक भोजपुरी गीत। 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम रत्ना की प्रस्तुति में। 10 बजे फिर से समाचार पढ़े जाएंगे। समाचारों के उस पार भक्ति धारा कार्यक्रम आप सुन सकेंगे और इस कार्यक्रम के अंतर्गत विनय अंजलि, ये कार्यक्रम आप डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे। 10:10 पर आप ज्ञान चक्र कार्यक्रम सनातन धर्म मंदिर परिषद की तरफ से ये विशेष कार्यक्रम श्रावण मास के संदर्भ में, और भक्ति धारा कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे दिन के 11 बजे तक। और आप जो है तुलसीदास जयंती के शुभ अवसर पर आप एक विशेष कार्यक्रम सुन पाएंगे श्री सनातन धर्मिया ब्राह्मण महासभा की तरफ से, और 11 बजे आप समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के बाद उर्दू कार्यक्रम सायदा के साथ दिन के 12 बजे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम विश्वमा की प्रस्तुति में प्रीति लेकर आएगी। मराठी भाषा में कार्यक्रम दिन के 12:30 बजे, दिन के 1 बजे आपके लिए आप तमिल

0: समय कार्यक्रम आरसी के साथ अमिता लेकर आएगी गुजराती कार्यक्रम 1:45 पर 2:30 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम उषा की प्रस्तुति में। सपहर के 3 बजे समाचार पढ़े जाएंगे। समाचारों के बाद आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। शाम के 4 बजे विविधा कार्यक्रम, ये कार्यक्रम मराठी भाषा में शीर्ष की प्रस्तुति में। फारे की ओर से एक विशेष कार्यक्रम, जी हाँ, खेती बाड़ी, ये कार्यक्रम शाम के 5 बजे। 5:15 बजे अंताक्षरी कार्यक्रम रोशन और उषा की प्रस्तुति में। 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे और उसके बाद चंद फिल्में गाने। 6:30 बजे हक्का में कार्यक्रम दाविद के साथ, तमिल भाषा में कार्यक्रम रात के 7 बजे। 7:30 बजे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम राजेंद्र के साथ श्रीमती, वैसे मराठी भाषा में कार्यक्रम रात के 7:50 पर गीत गंगा, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शिरीष के साथ। और भजले प्रभु का नाम 8:10 पर मेरी तरफ से। मैं फिलेश अब ये कार्यक्रम अविनाश के साथ रात के 8:40 पर। रात के 9 बजे भोजपुरी तड़का, ये कार्यक्रम प्रताप के साथ सुनहरे पर। चंद पुराने गाने गिनिशा की प्रस्तुति में रात के 11 बजे। और रात के 12 बजे से लेकर कल सुबह के 6 बजे तक आपके लिए चंद प्यारे प्यारे गीत हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा झलकियाँ।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस,
1: झलकियाँ,
2: झलकियाँ,
3: रेडियो मॉरिशस।
4: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
5: मैंने

ते रहिए। कहते हैं ना, दिन वही खूबसूरत होता है जिसमें चेहरे पर मुस्कान हो, मन में शांति हो और दिल में ईश्वर का विश्वास हो। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। चंद पुराने गाने आपकी सेवा में।

वैसे श्रोताओं, हमारी मुलाकात हो रही है आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। ये रेडियो मोर्शस है, मीडियम वेव 19 किलो हर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। वैसे एक बहुत ही प्यारा सा सफ़र है, इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। तो चलिए, सुबह का नज़ारा कार्यक्रम को हम सजा रहे हैं आप ही की पसंद पे चंद प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत, चंद पुराने सदाबहार गीत जो आप सुनना पसंद करते हैं। पुराने गीतों की खूबसूरती यही है कि वे कानों से होकर सीधे यादों के उस कोने तक पहुंचते हैं जहाँ आज भी बीता हुआ कल मुस्कुराता है।

श्रोताओं, जिंदगी में पल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे पलों में बड़ी बड़ी खुशियाँ छुपी होती है। कोई पल मुस्कान दे जाता है, कोई याद बन जाता है और कोई हमें जीवन की अनमोल सीख दे जाता है। आपका क्या कहना, आप हमें ज़रूर बताइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 5251705 और आपकी फ़ोन कॉल्स जो है सुबह से हमें प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी दिलचस्पी दिखाने के लिए इस प्रोग्राम में, जो चलिए सुबह का नजाना कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

किसी ने क्या खूब कहा है और जो भी कहा है बहुत ही खूबसूरती से कहा है। नज़ारे खूबसूरत हो तो दिल ठहर सा जाता है, कुदरत का हर रंग कोई गीत सुनाता है। कभी पहाड़, कभी बादल, कभी बारिश की फुहार, हर नज़ारा कहता है जिंदगी है बेहद शानदार।

बंधे हार्ट फिल्म से लिया गया गीत आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना। पुराने गीत समय की आवाज़ है जिन्हें सुनकर बीता हुआ कल आज भी दिल के करीब महसूस होता है। 7:45 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। गीतों का एक खूबसूरत सफ़र, इसे हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओं, दिल साफ हो तो छोटी सी खुशी भी बड़ी लगती है, और मन सच्चा हो तो हर रिश्ता खास बन जाता है। तो आज अपने दिल की ज़रूर सुनिए, क्योंकि दुनिया की भीड़ में सबसे सच्ची आवाज़ अक्सर हमारे अपने दिल की होती है। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

चलिए श्रोताओ, कुछ ही घड़ी में 8 बजने वाले है भोजपुरी में, आप समाचार सुन सकेंगे विधिमा के साथ। तो चलिए 8 बजे के बाद, समाचारों के बाद वापस मिलेंगे सुबह का नजाना कार्यक्रम के दूसरे हिस्से को लेकर। आप सभी को शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: फजर के 8 बज रहे हैं। नमस्ते, आवाजा भोजपुरी में समाचार सुने जा। गोशबा में 25 अगस्त के 7 महीना के मासूम आद्रियानो पेहिन के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ल, जहां परिपिता द्वारा करल गल उकर हत्या से पूरा देश स्तब्ध और भावुक नजर आल। ई दुखद त्रासदी से आहत होके बड़का संख्या में रिश्तेदार और पड़ोसी ओकरा अंतिम श्रद्धांजलि दे खातिर एकत्रित होल। मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स एसोसिएशन स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू से जुड़ल मामला में स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछत हवन से कि कौन प्रोटोकॉल के तहत मंत्री के निजी डॉक्टर के सरकारी अस्पताल में चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में बुलावल गल और क्या ई दौरान सरकारी उपकरण और काम करवा लोग के उपयोग होल रहल और ऐसा सुविधा अन्य आम मरीज के भी मिले सकी या नहीं। फिशरीज इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम्स अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2026 के मुख्य उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़े के गतिविधि की निगरानी करे के और अवैध शिकार पर रोक लगावे के है। इकर तहत जहाज के इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली के मजबूत करल गल बाटे ताकि अधिकारी लोग के सटीक आंकड़ा मिले सकी। दूसर देश के खबर में काउंट्री संगीत की दिग्गज गायिका डॉली पार्टन के कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गल बा और कनाडा अमेरिका पर ही 50% ले के डॉलर फॉर डॉलर जवाबी टैरिफ की घोषणा कर ली बाटी। तो देश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल। अपन ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते।

जे विश्वानी नाम से जस्ती जाने ते छात्रालन जाओ गुजर कल हवन कर माटी आज फजर की 10 बज के आधा होकर घरे सोहन लेन कौन पॉइंट पीमो से उठा के पॉइंट पीमो के शमशान भूमि ले जावल जाए। एलियन सन्स रोड बुबासे में तीन कुड़ी नौ बरिस के 69 के श्री लोमेश प्रसाद सिंह चकरनोत जे रोशन नाम से जस्ती जाने ते छात्रालन जाओ गुजर कल हवन ओकर माटी आज दिन के 1 बज के आधा एलियन सन्स रोड बुबासा से उठा के शुभल के शमशान भूमि ले चावल जाए। बैठका रोड कौंदी पेशक रनवा साउथ ईस्ट में तीन कोरी 16 बरिस के 87 के श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह मधु जे राजेंद्र नाम से जस्ती जाने ते छात्रालन जाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 2 बजे उकर खरे बैठका रोड कौंदी पेशक रनवा साउथ ईस्ट से उठा के बुशों की शमशान भूमि ले चावल जाए। नंबर 24 रॉयल रोड उकुले में तीन कोरी 15 बरिस के 57 के श्री रविचंद चाहल जे चंद नाम से जस्ती जाने ते छात्रालन जाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 2 बजे उकर खरी नंबर 24 रॉयल रोड उकुले से उठा के भी कहा के शमशान भूमि ले चावल जाए। La Chapelle Audente Elien Sensualud Bobasse Metin Kori Sola Bariske 76 Anke Shrimati Sharda Katon Pedashinam Gupul RG Bam Nam Sijesti Janet Jatralen Jauguzar Kalhawan Ukarmati Ajitin Ki Dubaji La Chapelle Audente Elien Sensualud Bobasse Se Utaki Bigaha Kishamshan Bhumidi Javal Jai गजाधर रोड शामुनी में तीन कोरी 8 बरिस के 68 के श्री देवानंद सावरत जे विलियम नाम से जस्ती जानत छात्रालन जाओ गुजर कल हवन ओकर माटी आज दिन के 1 बजे ओकर बेटा राजीव सावरत के घरे गजाधर रोड शामुनी से उठा के कोंगोपाल शामुनी के शमशान भूमि ले चावल जाए। ब्रांच रोड लालमाटी में तीन कुरी 15 बरिस के 57 के श्री विश्वदेव पुनाई जे वेल नाम से जस्ती जाने ते छात्रालन जाओ गुजर कल हवन ओकर माटी आज दिन के 2 बजे ओकर पत्नी श्रीमती विद्वंती पुनाई के घरे ब्रांच रोड लालमाटी से उठा के गांधी रोड लालमाटी के शमशान भूमि ले चावल जाए। रॉयल रोड सेंट जूलियन डूट मोमे दुकोरी 16 बरिस के 56 के श्री मदन महाजन जे विनु आदेश नाम से जस्ती जाने ते छात्रालन जाओ गुजर कल हवन ओकर माटी आज दिन के 3 बजे ओकर खरे रॉयल रोड सेंट जूलियन डूट मोमे से उठा के कौतूहल के शमशान भूमि ले चावल जाए। स्कूल लेन इखवानियों में तीन कोरी 8 बरिस के 68 के श्री सी राम सुबी जे सुनील नाम से जस्ती जाने ते छात्रालन जाओ गुजर कल हवन ओकर माटी आज दिन के 3 बजे ओकर पत्नी श्रीमती शकीला सुबी के घरे स्कूल लेन इखवानियों से उठा के लावा छुआ के शमशान भूमि ले चावल जाए। शोक में डूबल इस सब परिवार लोग के प्रति हमने संवेदना प्रकट करें थे जा।

चलिए श्रोताओ, 8:12 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। सुबह का नजराना इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में तमाम श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए कुछ मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे। काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ, जी हाँ, हमारे साथ इस समय दागोचा की सुनीता जी जुड़ी हुई है। और ये अगला गीत जो है जाने वाला है उनके भाई सुनील के लिए, साथ में है सुधीर। और ढेर सारी शुभकामनाएं जो है राखी के शुभ अवसर पर समस्त परिवारों की तरफ से। फिर हमारे साथ इस समय पूरन परिवार, और आप जो है शोभा जी है वाकवा की रहने वाली, तो आप जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है सुबह से, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो है इस समय माला जी है कथोबोन की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। उनके साथ है उनके पति सूर्यदेव जी, उनके बच्चे के नाम भी हम जोड़ेंगे। कुछ मॉरिशस में है, कुछ कनाडा में है। और क्लेफों की रहने वाली सभी जो है लचन सिगोबिन परिवार जो है जुड़े हुए हैं, तो उन सभी लोगों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रिविया डे क्रियोल की रहने वाली समस्त जीवन परिवार है, और साधना जी जो है बहुत ही प्यार के साथ निभा रही है सुबह सवेरे से, तो चलिए इन सभी श्रोताओं को धन्यवाद देंगे। साथ में है मौदाबे की अनीता जी जुड़ी हुई है, साथ में है करुणा अमृता, और उनके सभी भाइयों के लिए विकास है, जय है, संजीव है, तो रक्षाबंधन के अवसर पर शुभकामनाएं जो है सभी बहनों की तरफ से। और शिवानी जी है गांवबा की रहने वाली, हमारे साथ जो है जुड़ी हुई है, तो उनको हम धन्यवाद देंगे उनके समस्त परिवारों के लिए ये अगला गीत। उषा जी है ब्रह्मस्थान की रहने वाली, तो ये अगला गीत उनके नाम भी हम जोड़ने वाले हैं। तो ये समस्त श्रोतागण जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माँ गायत्री जी है वेलफॉन्स की रहने वाली, उनके बेटे हैं अजय, और उनके समस्त परिवारों के लिए भी ये अगला गीत हम जोड़ रहे हैं। साथ में है अनिता जी जो कि पोंफिया की रहने वाली है, वैसे पिछी वैजे की रहने वाली अनिता जी, उनकी 3 बेटियाँ काजल, शीतल है, दीक्षा है, और उनके दामाद है वितिश, उनके सभी परिवारों के लिए उनके पति है बालदेव जी, तो ये अगला गीत उनके नाम भी हम करेंगे। गीता जी है पोंफिया की रहने वाली, फिर है उनके सभी परिवारों के लिए उनके पति है रोहित जी, उनकी बहन है मीला न्यूकोव की रहने वाली। विद्या जी है न्यनपाक की रहने वाली, उनके सभी परिवारों के लिए ये अगला गीत, उनकी बहन है सती, साथ में है उनके समस्त परिवारों के लिए उनकी चाची है कुमारी। फिर त्रिवेणी जी है गुडलैंड्स की रहने वाली, उनके पति है अनिल जी, सभी मोहन परिवार के लिए ये अगला गीत हम ज़रूर जो है शामिल कर रहे हैं इन सभी लोगों के नाम जो है ये अगला सा प्यारा गीत। सुनीता जी हैं घोघोप की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, तो चलिए इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हम चला रही हैं।

चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके लाए हैं एक क्विज आइटम, एक गाना हम चलाएंगे, बस आपको गाना सुनकर हमें बताना है किस फिल्म से लिया गया है। फ़ोन नंबर आपको पता है 4028085, हमारा व्हाट्सएप नंबर वो है 5251700005, आप हमें जवाब दे सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए।

चलिए श्रोताओ, लगता है बहुत ही आसान जो है गीत हमने आपको सुनाया, बस फिल्म का नाम हमें बताना है। काफी लोग जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए पहले कॉलर से हम मिलते हैं। हेलो हेलो, हेलो, हेलो,

0: चलिए श्रोताओं, काफी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए पहले श्रोता से हम मिलेंगे। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ नमस्कार जी।
1: नमस्ते।
0: हाँ आपका शुभ नाम?
1: मैं दीपा बोल रही हूँ कांतुगल से।
0: कैसी है आप दीपा?
1: मैं ठीक हूँ।
0: आपने जो है गाना सुना?
1: हाँ।
0: सही जवाब क्या है?
1: बेईमान।
0: बेईमान। तो चलिए हमने आपका जवाब जो है नोट किया है। कुछ ही घड़ी में हम सभी जवाब बताने वाले हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।
1: ओके।

0: थैंक यू, बाय
1: बाय। चलिए एक और कॉलर से हम मिलेंगे। हेलो हेलो हेलो,

0: जी हाँ, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे हैं। तो चलिए एक और कॉलर से हम मिलने वाले हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, हाँ नमस्कार।
1: हाँ नमस्ते, नमस्ते।
0: हाँ भाई जी, आपका शुभ नाम? हेलो
2: हेलो,
0: हाँ नमस्कार भाई जी, आप हमें सुन रहे हैं?
2: फिल्म है बेईमान।
0: बेईमान, आपका शुभ नाम?
2: शिवाजी रामा उदबेल से।
0: तो चलिए आपका जवाब हमने नोट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको शुभ दिन। हेलो
3: हेलो,
0: हाँ नमस्कार जी।
3: नमस्कार,
0: हाँ आप कौन है?
3: मैं हेमा बोल रही हूँ, कथोबोन से।
0: कथोबोन से, कैसी है आप हेमा?
3: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आप हमें जवाब बताइए।
3: जवाब है बेईमान।
0: आपने फिल्म देखी है?
3: नहीं
0: नहीं,
3: किसने देखी है? मैंने नहीं देखी है।
0: और जवाब आपको पता कैसे चला?
3: पति ने बोला।
0: पति ने बोला?
3: Yes.
0: तो चलिए कुछ ही घड़ी में हम आपको बताएंगे कि जवाब सही है या नहीं।
3: ओके, थैंक यू।
0: तो चलिए आपको शुभ दिन हम कहेंगे,
3: आपको भी
0: बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता से हम मिलने वाले हैं। हेलो हेलो जी।
4: हेलो,
0: हाँ नमस्कार।
4: हाँ नमस्कार,
0: आप कौन है जी?
4: हाँ दीपा कौंजाब से।
0: दीपा जी कौंजाब से, आप कैसी है दीपा जी?
4: ठीक हो?
0: तो चलिए दिन की शुरुआत कैसी हुई आज?
4: ठीक से।
0: ठीक से,
4: हाँ जी।
0: तो चलिए सही जवाब क्या है?
4: बेईमान।
0: बेईमान, तो चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपको शुभ दिन कहेंगे। तो एक और श्रोता है हमारे साथ। हेलो।
5: हेलो बहन जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, आप कौन?
5: मैं हूँ अमृता।
0: अमृता जी कहाँ से? ओकुले से।
5: ओकुले से।
0: मौसम कैसा है वहाँ पे?
5: आयो, मौसम बड़ी खराब है, बारिश हो रही,
0: बारिश हो रही है। आपको बारिश पसंद नहीं?
5: पसंद है, लेकिन सुबह को नहीं ना, दिन में आए तो हम आराम करेंगे।
0: आपको बाहर जाना है आज?
5: हाँ बाहर जाना है, सब काम तो बाहर ही है।
0: तो हाँ, सही जवाब क्या है?
5: पता नहीं सही है या नहीं, मैं दो जवाब दूंगी, एक है बेईमान और छोटी बहन।
0: दो दो जवाब आप देंगे?
5: पता नहीं,
0: एक ही जवाब आपको देना है।
5: तो बेईमान।
0: बेईमान, तो चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमृता जी। तो आपको हम कहेंगे शुभ दिन।
5: शुभ दिन, शुभ त्योहार, श्रावण मास अभिनंदन,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए एक और छोटा हम उनको सुनेंगे। हेलो।
6: नमस्ते। नमस्ते रोशनी जी।
0: नमस्ते मोहन जी, कैसी हैं आप?
6: अच्छी हूँ, आप कैसी हैं रोशनी जी?
0: मैं भी ठीक हूँ। बोलिए, वहाँ पर एक्वायर मौसम कैसा है?
6: मौसम एकदम सुहाना है, धूप खिली हुई है।
0: अच्छा, किसी ने अभी कहा कि उनके यहाँ जो है बारिश हो रही है और आपके यहाँ मौसम सुहाना है?
6: सभी तरफ,
0: सभी तरफ
6: बराबर नहीं है ना।
0: आज क्या करने का इरादा है?
6: आज शॉपिंग करने का इरादा है।
0: तो चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, सही जवाब आप हमें बताते चले।
6: बेईमान।
0: बेईमान,
6: मनोज कुमार भी है फिल्म में।
0: तो चलिए मोहन जी, जवाब देने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपको शुभ दिन हम कहेंगे।
6: आपको भी रक्षाबंधन की मंगल कामनाएं, आपको
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए एक और कॉलर से हम मिलेंगे। हेलो।
7: हेलो, नमस्ते रोशनी।
0: नमस्ते शोभा जी, कैसी हैं आप?
7: मैं ठीक हूँ बहना, आप कैसी हो?
0: मैं भी एकदम मस्त।
7: मस्त।
0: पॉपलमस में मौसम कैसा है?
7: यहाँ थोड़ा धूप, थोड़ा छांव, थोड़ा थोड़ा थोड़ा बारिश, थोड़ा थोड़ा
0: ठंड,
7: कहती हूँ सब कुछ है, मिक्स है।
0: मिक्स है, अच्छा है। तो चलिए सुबह से आप हमारे साथ जुड़ी हुई है शोभा जी।
7: जी हाँ।
0: और गाना आपने सुना?
7: जी हाँ, मैंने, मुझे

0: नाम है बेईमान ना।
1: बेईमान
0: जी,
1: आप भी बेईमान बोल रही है।
0: लेकिन गाना नहीं मन से ठीक सुना।
1: नहीं सुना
0: नहीं। तो
1: जवाब कैसे आपको पता
0: थोड़ा,
1: चला
0: थोड़ा, नहीं थोड़ा सा सुना, लेकिन क्योंकि मेरे दो रेडियो है ना, एक किचन में रेडियो प्लस एक कैसे है बाहर वहाँ पर दूसरे कमरे में,
1: दोनों सुन रहे, दोनों रेडियो सुन रहे। आप दोनों रेडियो सुन रही है
0: नहीं, तो दो कान है ना, एक कान इधर रोशनी की तरफ, एक
1: अच्छी बात है, अच्छी बात।
0: कल की प्रोग्राम बहुत ठीक चला एमबीसी में, सभी को शुक्रिया बेस्ट करती हूँ, सभी बहनों को
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको
0: जी। लेकिन आपको नहीं देखा,
1: कोई बात नहीं, अगली बार आप देख सकेंगे। तो चलिए शोभा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम कॉलर से हम मिलेंगे, काफी लोग जो है हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं, एक अंतिम कॉलर से हम मिलेंगे। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार, मैं हूँ बसंती।
1: बसंती जी कहाँ से आप याद कर रही
2: हैं? से मैं बोलती हूँ।
1: चलिए सही जवाब क्या है?
2: बेईमान।
1: बेईमान
2: एक पुराना फिल्म है।
1: आपने फिल्म देखी है?
2: 18 साल की थी तो गाना मैंने सुनी थी जी, मैंने सुना था जी
1: सिनेमा हॉल में।
2: नहीं नहीं, ऐसी गाना तब तक रेडियो नहीं थे
1: उस समय
2: जी जी जी, कोई गाते थे ना तो मुझे अच्छा लगता था सुनने के लिए।
1: थोड़ा बहुत आप गा लीजिए ना
2: जी। शुरुआत कैसा है?
1: ये रक्षा बंधन, ये राखी बंधन है,
2: ये राखी बंधन है ऐसा कि राखी बंधन है ऐसा, बहुत भूल गई।
1: आप रक्षा बंधन मनाती हैं?
2: गगन में मुझे मदद कीजिए।
1: तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही खूबसूरती से गाया आपने, बस हमें बताए आप रक्षा बंधन मनाती हैं?
2: भैया तो नहीं है मैं अकेली हूँ।
1: कोई बात नहीं, कोई बात
2: जी,
1: नहीं,
2: और भैया हैं जी जी जी।
1: तो चलिए बसंती जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए धन्यवाद। अब हम आपको कहेंगे शुभ दिन।
2: शुभ दिन आपको भी।
1: चलिए श्रोताओ, काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी के सभी लोगों ने हमें सही जवाब दिया। फिल्म का नाम है बेईमान। तो बहुत ही खूबसूरत संगीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में गीत आपने सुना। क्विज कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की दिलचस्पी के लिए हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस कार्यक्रम का समय पूरा हो चला, हम बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर।
3: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
1: तो चलिए परिवार नियोजन पर एक विशेष कार्यक्रम आप मॉरिशस फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन की तरफ से सुन पाएंगे।

नमस्कार श्रोताओं, मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन के परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण पे। बच्चों का यौन शोषण ऑनलाइन भी हो सकता है, जहां दूसरी व्यक्ति टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है बच्चों का शोषण करने में, जैसे कि गेम्स के जरिए, सोशल मीडिया इत्यादि के जरिए। ऑनलाइन यौन शोषण का अलग अलग फॉर्म हो सकता है, जैसे कि सेक्सटिंग, अश्लील वीडियोस, फोटोज, चाइल्ड ग्रूमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग हो सकता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अथॉरिटी के अनुसार 2025 में लगभग 1.2 मिलियन लोगों ने बच्चों से संबंधित यौन शोषण मटेरियल्स एक्सेस किया था मॉरिशस में, जिसमें बच्चों के अश्लील फोटोज और वीडियोज भी हैं। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अथॉरिटी ने लगभग 8,700 लोगों के आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक किया था। ऑनलाइन यौन शोषण कैसे हो सकता है, चलिए हम जानते हैं। पहला है पेडोपोर्नोग्राफी, जहां कुछ लोग बच्चों के अश्लील वीडियोस या फोटोज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या देखते हैं। दूसरा है सेक्सटिंग, जहाँ दोषी व्यक्ति अश्लील मैसेज

या फोटोज़ या वीडियोज़ लोगों को भेजते हैं ऑनलाइन। अगला है चाइल्ड ग्रूमिंग, जहां दोषी व्यक्ति टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों से कनेक्ट होता है और उनको बाद में शोषण के लिए इस्तेमाल करता है। फिर है साइबर बुलिंग, जहां इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से या सोशल मीडिया के ज़रिए दोषी व्यक्ति एक या अनेक बच्चों को बुली करता है या परेशान करता है। फिर है साइबर एग्जिबिशनिज्म, जहां दोषी व्यक्ति बच्चे का गलत और फेक वीडियोस बनाता है डीप फेक के ज़रिए और इंटरनेट पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर है डीप फेक, जहां दोषी व्यक्ति बच्चों के फेक वीडियोस और अश्लील वीडियोस बनाता है। अगला है सेक्सटोर्शन, जहां दोषी व्यक्ति किसी बच्चे या व्यक्ति को ब्लैकमेल करता है कि वो बच्चे या उस व्यक्ति का अश्लील फोटोज़ या वीडियोस उसके परिवार को भेज देगा अगर वो उस दोषी व्यक्ति को पैसे ना दे। फिर है स्क्रीनशॉट, जहां दोषी व्यक्ति बच्चे को मैसेज फोटोज़ वीडियो स्क्रीनशॉट करता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है। और फिर आखिरी है लाइव स्ट्रीमिंग, जहां लाइव शोषण को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ऑनलाइन यौन शोषण का बच्चे पर गलत प्रभाव होता है, जैसे कि दोषी व्यक्ति उसका शोषण करता है और बच्चे का फोटोज़ या वीडियोस ऑनलाइन पोस्ट करता है, जो कि समय समय पर बच्चे को फिर से ट्रोमाटाइज कर सकता है। अगर कोई बच्चा का ऑनलाइन यौन शोषण होता है तो वो रिविक्टिमाइज होता है और अपने आप को ह्यूमिलिएट महसूस करता है। ऑनलाइन यौन शोषण का मनोवैज्ञानिक असर होता है, जैसे कि सेल्फ एस्टीम यानी कि अपने आप में विश्वास खोना, नींद न आना, भूख न लगना, अपने आप को दोषी कहलाना, एम्बरास फील करना, डर लगना, आत्महत्या का प्रयास करना, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस। उस बच्चे के सेक्सुअल डेवलपमेंट इम्बैलेंस हो जाता है, वो बार बार ट्रोमाटाइज होता है। कोई कैसे ऑनलाइन यौन शोषण से बच सकता है? दोषी व्यक्ति के थ्रेट्स या ब्लैकमेल को नहीं मानना चाहिए। दोषी व्यक्ति से सब संपर्क रोक देना चाहिए। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट या प्राइवेट मोड पे कर दें। साइबर क्राइम यूनिट या पुलिस को रिपोर्ट करें। इसके बारे में किसी भरोसेमंद व्यक्ति या अपने माता पिता को बताएं। ध्यान रखें कि दोषी व्यक्ति कैसे आपको फंसा सकता है। शुरू में आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा और मैसेज करेगा, आपको ज़्यादा ध्यान और अफेक्शन देगा, आपको अश्लील फोटोज़ या मैसेज भेजेगा, आपके सेक्सुअलिटी के बारे में क्वेश्चंस पूछेगा, आपको अश्लील फोटोज़ मैसेज वीडियोस देखने को प्रोत्साहित करेगा, फिर आपको मैनिपुलेट करेगा और जब आपका विश्वास मिल जाए तो ब्लैकमेल करेगा। ध्यान रखें कि किसी तरह का अश्लील चीज़ देखना, रखना, पोस्ट करना जिसमें कोई बच्चा है वो कानून के अनुसार एक अपराध माना जाता है। बच्चे इंटरनेट पर भी यौन शोषण के शिकार बन सकते हैं। कुछ बच्चे टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने अश्लील फोटोज़ या वीडियोस अपने दोस्तों या प्रेमी प्रेमिका को भेजते हैं और कुछ लोग इन फोटोज़ वीडियोज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चे इंटरनेट पर अश्लील फोटोज़ या वीडियोज़ देखते हैं और दूसरे बच्चों पर यौन शोषण करते हैं। ध्यान रखें कि बच्चों का ऑनलाइन होना कभी कभी उनके लिए खतरनाक हो सकता है और कुछ बच्चे ऑनलाइन यौन शोषण, सेक्सटिंग, सेक्सटोर्शन के शिकार बन सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ जानकारी चाहिए तो माता पिता अपने बच्चों के साथ इंटरनेट पर उसके जानकारी को ढूंढ सकते हैं ताकि वे बच्चे को समझा सकते हैं। और आप हमारे genzmauritius.com चैटबॉट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारे जानकारी मिल सकता है। जब बच्चा छोटा है तो माता पिता को बच्चे के मोबाइल या टैबलेट या इंटरनेट पर कुछ फिल्टर्स लगाना चाहिए ताकि वे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें और समय समय पर इंटरनेट हिस्ट्री चेक करते रहें ताकि आपको पता चले कि बच्चा अपने मोबाइल या टैबलेट में क्या कर रहा है, ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। और इसका भी ध्यान

रखें कि बच्चा सिर्फ निश्चित समय के लिए ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करे, ना कि पूरे दिन। उसके समय सारणी में एक्सरसाइज, पढ़ाई, पारिवारिक समय इत्यादि शामिल करें। ध्यान रखें कि टेक्नोलॉजी का परिवारों में अच्छा और गलत स्तर भी हो सकता है। परिवार में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें। अपने खुद का पारिवारिक रूल्स एंड रेगुलेशंस का उपयोग करें। सीमा यानी कि लिमिट्स निर्धारित करें और प्ले टाइम को प्रोत्साहित करें बच्चों में। स्क्रीन टाइम हमेशा अकेले रहने का समय नहीं होना चाहिए। एक अच्छा रोल मॉडल बने। आमने सामने बातचीत का मूल्य जाने। अपने सबसे कम उम्र वाले बच्चों के डिजिटल यूज सीमित करें। घर में कुछ टेक्नोलॉजी फ्री जोन्स बनाएं। टेक्नोलॉजी को इमोशनल पासीफायर के रूप में उपयोग ना करें। बच्चों के पढ़ाई में सहायता के लिए कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। आपका किशोर का ऑनलाइन होना ठीक है, पर आपको कुछ सीमा निर्धारित करना चाहिए। बच्चों को गोपनीयता का महत्व बताएं और सेक्सटिंग के खतरों के बारे में बताएं। याद रखें कि बच्चे बच्चे ही रहेंगे, इसीलिए उनका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमारे ड्रॉप इन सेंटर जो कि बच्चों पर यौन शोषण यानी कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, बाल वेश्यावृत्ति या किशोरी गर्भावस्था के शिकार बच्चों की हम सहायता करते हैं, और पिछले साल हमने लगभग 430 केसेस रजिस्टर किए थे बच्चों पर यौन शोषण के, जिनमें से लगभग 260 केसेस किशोरी गर्भावस्था के हैं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे सेंटर से संपर्क बना सकते हैं, जो कि स्थित है मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन, लारी दे फोर्ज, पोर्ट विस, या आप हमें इन फ़ोन नंबरों में कॉल कर सकते हैं 2089233211401। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ दिन।

चलिए श्रोताओं, 8:45 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। कुछ ही घड़ी में 8:50 होने वाला है और आपके लाएंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में। साथ में एक भोजपुरी गीत और 9 बजे समाचार पर ले जाएंगे। समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम रत्ना की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे।

0: चलिए श्रोताओं, काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्विज प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, धन्यवाद। कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी हमें प्राप्त हुए हैं। दीपा जी है कौतूहल की रहने वाली, साथ में है देवी जी है जुड़ी हुई है, उनको भी धन्यवाद देंगे। साथ में है विद्या जी उन्न पाव की रहने वाली, तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देंगे। उषा जी है ब्रह्मस्थान की रहने वाली, इन सभी लोगों को हम धन्यवाद देंगे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। तो चलिए श्रोताओं, 8:50 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, अगले प्रोग्राम की ओर बढ़ेंगे हमारी धरोहर किरण जानकी की प्रस्तुति में।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। विश्व हाथी दिवस पर आज हमने ध्यान देव जा जोन की गर्ल सिमेन मनाई ली जा 12 अगस्त के। हाथी धरती पर पावे जाए होला सबसे बड़ा प्राणी है, और हाथी दिवस मनावे के पीछे भावना यह है कि दुनिया भर में हाथी के प्रति जोन ध्यान बा ओके बढ़ावल जाए, उ लोग के जागरूक करल जाए और हाथी के संरक्षण के बढ़ावा देवल जाए। भारतीय वन जीव के जो अधिनियम बा वो 1972 यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया 1972 हाथी के सबसे ऊंचा दर्जा देवे के एगो अधिनियम है। और इस जागरूकता कौन मुद्दा पर आनल जाता, दरअसल हाथी के संख्या इस दुनिया में घट ले जाता, और ई हाथी लोग के संरक्षण, उ लोग के पुनर्वास, बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करे खातिर और गैर कानूनी तरक्की रोके के और भी कोशिश करे खातिर प्रेरित करल जाता। हाथी के कौन महत्व है? हाथी एक बहुत जरूरी प्राणी है। जो जंगल में हाथी रहेला उस जंगल में बाकी वन जीव एगो सामंजस्य, एगो शांति, एगो लॉमोनी के साथ जियेलन सा। हाथी के झुंड जब चलेला तब जंगल में रास्ता खुलेला,

0: और दूसर जन जनावर बा उ लोग के सीमा बनेला, उ लोग के मदद मिलेला। हाथी के दांत एगो बहुत कीमती वस्तु मानल जाला, आइवोरी जेके बोलीला सा। और एकर व्यापार खातिर कितने शिकारी लोग हाथी के जान से मारेलन सा और उकर दांत निकाल लेवेलन सा, या फिर खाली उकर दांत निकाल लेवेलन सा जेकर बाद उ हाथी मर जाला। और ई संख्या अब चिंताजनक हो ले जाता। जन विभाग, पर्यावरण प्रेमी और गैर सरकारी संगठन लोग मिलके इस संरक्षण कार्य चलावत हवन सा। इस दिन के मनावे की शुरुआत 2012 से हो रहल एलिफेंट के इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा। और अभी जो गल दशक गुजरल उमें हाथी के संख्या 10 लाख रहल, लेकिन ई में भारी गिरावट आवता। हाथी के मारे के या ओके नुकसान पहुंचावे के एगो जुर्म है। हाथी पर कुछ रोचक जानकारी इ प्रकार बा। जन्म से 20 मिनट बाद हाथी के बच्चा खड़ा हो जाला। हाथी दिन भर में 120 किलो खाना खा लेवेला। हाथी के वजन 5000 किलो तक सकी रहे। हाथी लोग खाए के बहुत खुशी रहेलन सा। एगो हाथी 80 गालन पानी सकी पी लेवे एक हला में। हाथी खुशी रहेला कीचड़ में लोटे के। तो ये रहल हाथी से जुड़ल कुछ जानकारी। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, धन्यवाद, नमस्ते।
1: चलिए श्रोताओं, 8:55 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और कुछ ही घड़ी में 9 बजने वाले हैं और आप समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार आपके लिए आज की चर्चा कार्यक्रम रत्ना की प्रस्तुति में। तो चलिए 10 बजे हम वापस मिलेंगे, आप फिर से समाचार सुन पाएंगे। 10 बजे के समाचारों के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम होने वाला है। तो चलिए, आप लोगों के नाम एक भोजपुरी गीत हम चला रहे हैं। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिवस।

0: समाचारों के लिए कर उपस्थित हो चुकी हैं विधिमा, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते विधिमा।
1: नमस्ते रत्ना जी, सभी को नमस्कार। रोजवा में 7 महीने के अद्रियानो पेरिन के अंतिम संस्कार के दौरान कल भावुक माहौल रहा। रविवार को पिता के हाथों हुई इस मासूम की मौत से पूरा देश स्तब्ध है। अंतिम श्रद्धांजलि देने बड़ी संख्या में रिश्तेदार, पड़ोसी और स्थानीय लोग जुटे। मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स एसोसिएशन MHOA ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिच्चू से जुड़े मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। मंत्री के निजी डॉक्टर को सरकारी अस्पताल में उनकी चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहने की अनुमति दी गई थी। NCE 2026 की परीक्षाएं 2 से 16 अक्टूबर तक 7 दिनों में आयोजित होंगी। परीक्षा की शुरुआत ऑटन डिजाइन से होगी। 1 अक्टूबर से टॉफी, जाम, बिस्कुट, वेफल, जेली और च्युइंगम जैसे मीठे उत्पादों पर प्रस्तावित टैक्स विस्तार फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। उद्योग मंत्री आदिराम मियां की अध्यक्षता वाली समिति ने इस मुद्दे पर काम शुरू कर दिया है। फिशरीज इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम्स अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2026 का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों की निगरानी मजबूत करना और अवैध मछली पकड़ने पर रोक लगाना है। नए नियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत किया गया है, जिससे अधिकारियों को गतिविधियों और पकड़ी गई मछलियों का डेटा हासिल करने में मदद मिलेगी। नियमों में उपकरण खराब होने या तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति से निपटने के प्रावधान भी महत्वपूर्ण होंगे। और विदेश में सोमवार को 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं वाले एक शक्तिशाली बवंडर ने दक्षिण पश्चिम फ्रांस के पोमास गांव को अपनी चपेट में ले लिया। इस आपदा में 39 लोग घायल हो गए और लगभग 300

0: सौ घरों को नुकसान पहुंचा, जिनकी छतें उड़ गई। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: बुधवार का दिन 26 अगस्त और आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर मैं हूँ रत्ना, आ पहुंची हूँ एक बार फिर एक स्वास्थ्य की एक समस्या का प्रोग्राम लेकर, जहां पर आज हम बात करेंगे स्पाइनल इंजरी पॉलीट्रॉमा के बारे में। जी हाँ, स्पाइनल इंजरी पॉलीट्रॉमा। साथ ही साथ आज हमारे डॉक्टर होंगे ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर करुणागरन, डॉक्टर के जिनके नाम से बिल्कुल बहुत सारे लोग परिचित है, और आज के इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग मिल रहा है। तकनीक पर हमारे साथ बने हुए हैं फैजान, प्रोडक्शन असिस्टेंट है उरिसा बानो, और साथ ही साथ शीतल लुबिन हमारी प्रोड्यूसर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और बेशक अगर आपके मन में कोई भी सवाल है स्पाइन इंजरीज़ को लेकर, तो 9:30 बजे के बाद आप आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने सवालों के साथ। 4028085 पर आप हमारे साथ कॉल पर बिल्कुल अपने सवालों को तैयार रखिएगा। और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इस वक्त रेडियो मॉरिशस की लहरों पर यानी मीडियम वाट्स 19 किलोहर्ट्ज़ पर और साथ ही साथ MBC के तीसरे चैनल पर आप देख पा रहे हैं। एक बार फिर याद दिला दें आपको, इसी कार्यक्रम को आप दोबारा से सुन पाएंगे 3 बजे से 4 बजे के अंतर्गत रेडियो मनोरंजन पर। तो आइए डॉक्टर जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर करुणागरन, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: और आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल देखा गया है, बहुत कई बार ऐसा होता है कि जानलेवा एक्सीडेंट्स होते हैं। आजकल बहुत सारे लोग रफ्तार बढ़ाते हैं और कई सारे दुर्घटनाएं रास्तों पर होती है। तो डॉक्टर जी, यहाँ पर तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि एक्सीडेंट्स होने के बाद डॉक्टर की भूमिका, रोल क्या होता है डॉक्टर का?
1: देखिए, एक्सीडेंट्स और मॉरिशस में ये हर साल ये बढ़ते जा रहा है
0: जी।
1: तो जो स्टैटिस्टिक्स जो इस साल अभी तक है, तो पिछले साल से जो टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो है, पिछले साल 3,287 per 100,000, अभी ये 3,355
0: के लिए,
1: हाँ, तो काफी बड़ा हुआ। जो माइनर इंजरी, सीरियस इंजरी, डेथ सब ऊपर हो गया, तो 2.8% डेथ ज्यादा हो गया। तो अभी तक जुलाई 26 तक 80 पीपल मरे हुए हैं
0: यानी एक्सीडेंट से,
1: और ये सब लोग ये यंग यू नो मोटरसाइकिलिस्ट या ओल्ड पेडेस्ट्रियंस। तो दूसरी डेथ से ये काफी अलग है, क्योंकि आप उन पर्सन को अभी आपने देखा है, आधा घंटा एक घंटे के पहले बाइक बोल के घर से गया है,
0: हाँ।
1: और आपको फोन आ रहा है, वो अभी नहीं है। तो ये कम्प्लीटली अवॉइडेबल सिचुएशन भी है,
0: बिल्कुल।
1: तो इसीलिए इसके ऊपर चर्चा करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट
0: है और जरूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि दुर्घटना जब होती है तो आपके अपने आपके पास नहीं है, और उस टाइम पर कई सारे लोग आपके सामने, कोई ऐसी जानलेवा दुर्घटना जब होती है तो कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से उस इंसान को आपको हॉस्पिटल तक पहुँचाना है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी हमें रखना बहुत ही आवश्यक है। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इन सारी जानकारियों का खुलासा हम करने वाले हैं। तो डॉक्टर जी, पहले तो हम ये जरूर पूछना चाहेंगे, पॉलीट्रॉमा ये शब्द का मतलब क्या होता है और इसको दूसरे जो इंजरीज है उससे कैसे अलग माना जाता है?

0: ये पॉलीट्रॉमा जब हम बोलते हैं जब दो या उसके ऊपर इंजरी है दो ऑर्गन सिस्टम से, और साथ ही साथ में इंजरी स्कोर्स भी है, अगर इंजरी स्कोर ज़्यादा है या साथ में पेशेंट को बेहोश हो गया या बीपी कम हो गया, शॉक है, ऐसे कॉम्प्लिकेशन जब ये
1: बढ़ जाता है तो
0: पॉलीट्रॉमा बोलते हैं। ये दूसरी ट्रॉमा जैसे आपने चल रहा है, गिर पड़ा, एक हड्डी टूटा है, हाथ टूटा है, पैर टूटा है, इससे भी काफ़ी अलग है क्योंकि इनका मोर्टिलिटी ज़्यादा है और मॉर्बिडिटी जो फंक्शनल मॉर्बिडिटी भी बहुत ज़्यादा है,
1: यानी इंसान ऑन द स्पॉट मर सकता है।
0: तो ये कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा है।
1: तो डॉक्टर जी, जब किसी का एक्सीडेंट होता है, मान लीजिए सडन, ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत डेंजरस एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे कहा जाता है कि पेशेंट को, वो जो मरीज है या जो लगा है, जिसे घाव लगा है, उसे हिलाना नहीं चाहिए। तो एक्सीडेंट के टाइम पर कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कैसे, किन किन चीज़ों को लेकर, मतलब अगर उसे हॉस्पिटलाइज करवाना भी है तो कैसे इंसान उसकी मदद करे?
0: जैसे आप ये एक एक्सीडेंट साइट में हो बाय चांस, तो आप पहले काम करना है एम्बुलेंस सर्विस को बुलाना है और पुलिस को इन्फॉर्म करना है। दूसरा, अननेसेसरली पेशेंट को हिलना नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट हार्म्स में है, जैसे उधर आग लगा हुआ है, तो मूव आउट ऑफ द हार्म वे। लेकिन अगर आदमी कार में फंसा हुआ है तो खींचना नहीं उसको, क्योंकि वो खींचने में आप
1: उसको और इंजर्ड कर सकते, और उसको डैमेज कर सकते,
0: और इसको गर्दन को हिलाना नहीं है बिल्कुल, गर्दन और स्पाइन को। तो लॉग रोल टेक्निक जैसे, तो अगर पेशेंट ज़्यादा डेंजर में नहीं हो तो आप जस्ट होल्ड द हेड और इन्फॉर्म एम्बुलेंस एंड पुलिस और जस्ट वेट,
1: जैसे वेट करना है। और डॉक्टर जी, जब हम कहते हैं गोल्डन आवर, तो गोल्डन आवर क्या है और इसमें, इसके दरमियान किस तरह से पेशेंट को हमें, मतलब हॉस्पिटल तक पहुंचाना चाहिए?
0: ये गोल्डन आवर ये कॉन्सेप्ट है, जैसे मतलब सिर्फ घंटे इम्पोर्टेंट नहीं है, हर मिनट इम्पोर्टेंट है
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचा देते पेशेंट को उतना
1: उसके बचने के चांसेस
0: बहुत अच्छा है। जैसे आप, जैसे एम्बुलेंस वाले उधर आते हैं, पहले चीज़ वो देखते हैं पेशेंट कॉन्शियस है नहीं है, ब्रीदिंग कर रहा है, वो ATLS बोलते हैं हम, उसके हिसाब से एयरवे एस्टेब्लिश करते हैं, आईवी लाइन एस्टेब्लिश करते हैं, उसका कॉलर लगाते हैं और स्पाइन बोर्ड में लगा के उसको बिल्कुल हिलाते नहीं। तो जितना जल्दी वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाता है उतना
1: अच्छा, ज़्यादा अच्छा होता है। तो इमरजेंसी, मान लीजिए एक दुर्घटना हुई है, तो इमरजेंसी में अगर कोई मदद करना भी चाहे तो किन किन बातों का हमें विशेष रूप से, जैसे आप ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो इसके अलावा कौन सी बातों का ध्यान रखना है? जैसे मतलब हॉस्पिटलाइज कर दिया, उसके बाद किस तरह से,
0: जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो ये टीम अप्रोच, जैसे हम एम्बुलेंस वाले हमको फ़ोन करते हैं तो वो हमें थोड़ा अपडेट देता है, ऐसे पेशेंट आ रहा है, तो हम जल्दी से ये टीम बना जाते हैं। टीम में ICU स्पेशलिस्ट होता है, इमरजेंसी स्पेशलिस्ट और ऑर्थोपेडिक और जनरल सर्जरी, अगर चाहिए तो न्यूरो सर्जन, और डिपेंडिंग ऑन द इंजरी। लेकिन ये टीम पहले रिसीव करके हम ATLS जो ABCDE बोलते हैं, एयरवे, अगर पेशेंट सांस नहीं ले रहे तो उसको इंटुबेट करना पड़ता है, तो बी ब्रीदिंग, अगर कुछ लोग को चेस्ट इंजरी हो जाता है, चेस्ट में ब्लड और एयर हीमोनियोथोरेक्स हो जाता है, उसको हम इमरजेंसी चेस्ट ट्यूब डालना है। और साइड बाई ये एक एक करके नहीं होता है, साइमल्टेनियसली होता है, तो इसलिए टीम वर्क हर मिनट इम्पॉर्टेंट है। तो एक लाइन लगा के फ्लूइड रश करते हैं, और जब स्प्लिंट लगा देते हैं, जैसे भी ब्रेस या अगर फ्रैक्चर हो गया तो, या कुछ ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको बैंडेज लगा देते हैं, जैसे इसका स्टेबलाइज होते है, हो जाता है, पहले स्टेबलाइज द पेशेंट, तो पहले
1: ये सारी चीज़ें होती है। तो डॉक्टर जी, जैसे एक पेशेंट मान लीजिए आपके यहाँ पर आ जाता है इमरजेंसी में, आपने टीम तैयार सारी कर ली, तो अब इन्वेस्टिगेशन का जो साइड है वो कैसे शुरू होता है, कि आपको कैसे पता चले कि आप एसेस कैसे कर पाओगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चोट होती है वो अंदर की तौर पर है, बाहर में दिखाई नहीं दे रही है, और हो सकता है कि इन दैट केस अगर पेशेंट बोलने की भी स्थिति में नहीं है, तो हाउ डू यू इन्वेस्टिगेट, शुरू कैसे किया जाता है?
0: जैसे हम बोलते हैं, जैसे जब पेशेंट अनकॉन्शियस है या पेशेंट को कमर में दर्द है या

0: नेक में दर्द है या कुछ भी है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज हम अस्यूम करते हैं इसको इंजुरी है, तो हम सर्वाइकल कॉलर स्पाइन बोर्ड को हटाते नहीं है। जैसे इनका थोड़ा स्टेबल हो हम इसको सीटी स्कैन लगते हैं।
1: अच्छा।
0: तो हर एक एक एक्सरे करने में टाइम लगता है, व्यू भी अच्छा नहीं होता है। सीटी स्कैन जल्दी से जल्दी हो जाता है और ओवरव्यू, अगर चेस्ट में इंजुरी
1: पूरे बॉडी का आपको दिखाई देता है,
0: इंजुरी है, अगर ब्लीडिंग अपडोमन हो रहा है या कुछ लिम्ब इंजुरी है या स्पाइन फ्रैक्चर है हो जाता है। उसके बाद ये सीटी स्कैन के बाद, उसके बाद अगर पेशेंट स्टेबल है तो हम डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन लाइक एमआरआई स्कैन करते हैं, नहीं तो पेशेंट को जल्दी से आईसीयू शिफ्ट करते हैं। आईसीयू शिफ्ट करके पेशेंट को और स्टेबलाइज करना पड़ता है।
1: ओके, तो आईसीयू में शिफ्ट होने के बाद जैसे ट्रीटमेंट कैसे शुरू की जाती है वहाँ पर, और आपका जो टीम का रोल है वो किस तरह से आगे बढ़ता है?
0: जैसे आईसीयू में भी हमारा टीम पूरा
1: स्टैंड बाय रहता है?
0: नहीं, पूरा काम करता है, स्टैंड बाय नहीं है, पूरा काम करता है। जैसे आईसीयू में हम रिससिटेशन होने के बाद जब वी कैटेगराइज द पेशेंट स्टेबल है या बॉर्डर लाइन स्टेबल है, अनस्टेबल है या एक्सट्रीमली अनस्टेबल है, तो अगर पेशेंट स्टेबल है तो इन पेशेंट को हम देन उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करा के, चाहे अगर एक फ्रैक्चर है या एक स्पाइन इंजरी है, उसका डेफिनेटिव सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो अगर पेशेंट अनस्टेबल है या बॉर्डरलाइन स्टेबल है, उसको अगर ब्लड देना है, जो भी देना है, उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है, ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। कुछ लोगों को एसिडोसिस हो जाता है और बीपी कम हो गया तो उसको ब्लड दे के या वॉल्यूम दे के बीपी बढ़ाना पड़ता है और उसको फिजियोलॉजिकली थोड़ा और स्टेबल करना पड़ेगा।
1: ओके।
0: तो और तीसरा कैटेगरी बॉर्डर अनस्टेबल पेशेंट है ये और एक्सट्रीमली अनस्टेबल, इसको तो अभी आप स्टेबलाइज करने के बाद सर्जरी के लिए इसको ले नहीं सकते, क्योंकि इन पेशेंट को एक्सट्रीमली अनस्टेबल अनस्टेबल पेशेंट को सर्जरी करेगा, सर्जरी भी एक फॉर्म ऑफ इंसल्ट है टू पेशेंट, छोटा है तो इसका कंडीशन और डेंजर हो सकता है। इनको हम डैमेज कंट्रोल ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं, तो मानिए अगर इनको पेल्विक फ्रैक्चर है या ब्लीडिंग है, उसको ब्लीडिंग को रोक के फिक्सेटर लगा के, अगर ए पेशेंट को लाइफ सेविंग सर्जरी, सिर्फ लाइफ सेविंग सर्जरी जैसे,
1: अच्छा मतलब सर्जरी भी डिसीजन लेना एकदम तुरंत आप नहीं लेते, देखना चाहिए कि उसकी कंडीशन कैसे।
0: स्टेबल पेशेंट को डेफिनेटिव सर्जरी करने में हमको काफी एडवांटेज है, क्योंकि जल्दी इसको रिकवरी हो जाता है, लेस नंबर ऑफ आईसीयू डेज, लेस नंबर ऑफ हॉस्पिटल डेज, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म करके कॉम्प्लिकेशन है और ये भी कम हो जाता है। और इस लोगों को ये हम अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हम कम कर सकते हैं अगर स्टेबल पेशेंट को जल्दी विद इन 24 आवर्स ऑपरेशन करें तो। लेकिन अनस्टेबल पेशेंट को डेफिनेटिव सर्जरी नहीं करना है, जो अनस्टेबल फ्रैक्चर को फिक्स करना है एक्सटर्नल फिक्सेटर, वो हम आईसीयू में या बेड साइड में पिन लगा के उसको स्टेबल करके इसको डैमेज कंट्रोल ऑर्थोपेडिक्स करते हैं।
1: अच्छा, पहले उसको जो डैमेज हुआ है उसको पहले कंट्रोल करके,
0: क्योंकि अनस्टेबल फ्रैक्चर्स लगातार ब्लीड करते जाता है, तो उसको फिक्स करके जो लाइफ सेविंग सर्जरी है, जैसे सिचुएशन में पेशेंट को पेल्विक इंजरी है, उसको हम फिक्सेटर बेड साइड में लगा के, इसके साथ में इसको लिवर इंजरी है या स्प्लीन इंजरी है या
1: मतलब उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो प्रायोरिटी है उसको पहले ध्यान दिया जाता है,
0: लाइफ सेविंग सर्जरी करते हैं, उसके बाद पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं, तो एक दो दिन या तीन चार दिन जो भी है, तो जब पेशेंट स्टेबल होने के बाद ही इनको डेफिनेटिव सर्जरी करना चाहिए।
1: मतलब डिपेंड करता है कि पहली क्या प्रायोरिटी है, अगर वो अनस्टेबल है तो उसको पहले स्टेबल करवाना बहुत जरूरी हो जाता है, और तब जाकर इंजरीज को फिर उसको सर्जिकल दिया जाता है, सर्जरी की जाती है, और जब तक वो स्टेबल नहीं है पहले तो उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ही आवश्यकता है। तो हर एक एक्सीडेंट जिस तरह से डॉक्टर ने हमें समझाया, ऐसी बहुत सारी इंजरीज हैं, माफ़ कीजिएगा, बहुत सारी ऐसी इंजरीज़ हैं जिसको प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए उनकी पूरी टीम बिल्कुल तैनात रहती है किस तरह से उसे हैंडल करना है। चलिए लेते हैं गीत का ब्रेक, आते हैं थोड़ी ही देर में।

जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर, और आज हमारे साथ ऑर्थोपेडिक और स्पाइन के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर के जुड़े हुए हैं, जहाँ पर हम स्पाइन इंजरीज पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो खासकर एक्सीडेंट के दौरान कई सारे लोगों को झेलना पड़ जाता है, और स्पाइन इंजरीज के बारे में कुछ ऐसी जानकारी आज के इस कार्यक्रम में हम साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर जी, आप एक सीनियर

0: ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट है और स्पाइन सर्जन है, तो हमें स्पाइन इंजरी के बारे में बताइए, ये कैसे होता है और जो गर्दन और पीछे पीठ का जो हिस्सा है, क्या ये भी स्पाइन इंजरी में इंक्लूड किया जाता है?
1: हाँ जी, ये जैसे हमने बात किया पॉलीट्रोमा में, पॉलीट्रोमा में जैसे हम बोलते हैं अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज स्पाइन इंजरी होता ही है, तो हम हमेशा ये प्रिकॉशन लेना पड़ता है। और ये स्पाइन इंजरी पेशेंट्स मोस्टली यंग पेशेंट्स है, यंग पेशेंट पॉलीट्रोमा में हो जाता है, एल्डरली पेशेंट भी छोटे इंजरी में भी स्पाइन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो हमारा अवेयरनेस इसका ज़्यादा होना चाहिए। तो एक्सीडेंट साइड से कुछ पेशेंट अनकॉन्शियस है तो यू हैव टू अस्यूम उसको स्पाइन इंजरी है, तो कॉलर लगाना पड़ेगा, स्पाइन बोर्ड में लगाना पड़ेगा। या अगर पेशेंट बोलता है मेरे को नेक में पेन है, बैक में पेन है, या अगर बोलता है आई कॉन्ट फील दिस, या सेंसेशन नहीं है, या आई कॉन्ट मूव द लेग और आई कॉन्ट पी पी आई, यू नो, तो हमारा सस्पिशन स्पाइन इंजरी में।
0: तो जैसे ऐसे कहा जाता है डॉक्टर जी कि अगर किसी को स्पाइन इंजरी हुआ है तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उसको बिल्कुल हिलाना नहीं चाहिए, इसका कारण क्या है?
1: तो जैसे हमने बताया स्पाइन इंजरी पेशेंट को हम इमोबिलाइज करना चाहिए जल्दी से जल्दी, जैसे सर्वाइकल कॉलर, हॉट कॉलर बोलते हैं, फिलाडेल्फिया कॉलर, और स्पाइन बोर्ड इसके साथ ही हम शिफ्ट करते हैं। तो जब हम मूव करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ये इसके साथ ही करते हैं, तो और उसके बाद जब हम ये डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं, ये सब हम फास्ट करना चाहिए क्योंकि स्पाइन इंजरी में हम प्राइमरी इंजरी बोलते हैं और सेकेंडरी इंजरी, प्राइमरी इंजरी हमारा कंट्रोल में नहीं है।
0: अच्छा,
1: तो वो एक्सीडेंट का वेलासिटी के ऊपर है,
0: कितना जोर से उसे लगा है,
1: लगा हुआ बिल्कुल ठीक है, तो उसके हिसाब से जो हड्डी है या डिस्क है वो स्पाइनल कॉर्ड को इंजूर कर देता है, ठीक है। और जितने जल्दी हम इसको डिकम्प्रेस, जो इंजरी को निकालेंगे स्पाइनल कॉर्ड से, उसका स्पाइनल कॉर्ड का रिकवरी चांस बढ़ता है
0: बिल्कुल।
1: और दूसरा सेकेंडरी इंजरी, हम जितने डिले करते हैं और पेशेंट का बीपी कम हो जाता है या ऑक्सीजनेशन कम होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मांगता है, तो जितना भी आप डिले करोगे तो ये चांस ऑफ रिकवरी आपको
0: बिल्कुल उसका मतलब ज़्यादा। ओके तो यहाँ पर डॉक्टर जी, स्पाइन इंजरी में सर्जरी की आवश्यकता कब पड़ती है?
1: हर स्पाइन इंजरी पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, हम इसको स्टेबल अनस्टेबल इंजरी बोलते हैं, इंजरी विथ न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट, जैसे इनका मूव नहीं कर सकता है, सेंसेशन नहीं हो रहा है, और बाउल ब्लैडर पेशाब का तकलीफ है, उसको तो ज़रूर ऑपरेशन करना चाहिए मोस्टली। और जिसको ये न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट नहीं है उसको हम इमेजेस में सीटी और एमआरआई में देखते हैं, तो अगर ये कोलैप्स स्टेबल है तो लेस देन 50% इंजरी, तो हम इसको कंजर्वेटिव मतलब ब्रेसेस से और बेड रेस्ट से हम
0: ठीक कर सकते हैं।
1: जो अनस्टेबल पेशेंट है, सिर्फ उसको अनस्टेबल और स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगा है,
0: जी,
1: उसको
0: जी,
1: हम ऑपरेट करना पड़ेगा।
0: तो डॉक्टर जी, क्या ऐसा होता है कि स्पाइनल इंजरी वाले पेशेंट को चलने फिरने में तकलीफ हो, और कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि स्पाइन इंजरी होती है उसे आगे चलकर जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती है जब चलते हैं तब, तो क्या ये सच है?
1: हाँ जी, जो ये जब ये एक्सीडेंट होता है, जैसे हमने पहले बताया, जल्दी से आप ऑपरेशन करोगे तो इसका रिकवरी का चांस बढ़ता है।
0: अच्छा,
1: तो ये ऑपरेशन कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट जरूर चलेगा, तो ऑपरेशन से इनका चांस ऑफ रिस्क रिकवरी बढ़ता है
0: जी,
1: ठीक है। और ऑपरेशन का एक और फायदा है कि आप जो फ्रैक्चर हुआ है उसको फिक्स किया, तो पेशेंट को जल्दी से आप आउट ऑफ द बेड मोबिलाइज कर सकते हैं, इससे हम कॉम्प्लिकेशन लाइक जैसे बेड सोर, न्यूमोनिया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, सबको हम कम कर सकते हैं।
0: तो ये सारे फैक्टर्स मतलब देखना पड़ेगा कि कितने टाइम के अंदर ये, जितना जल्दी उनको ये रिकवरी के लिए तैयार किया जाता है ताकि वो एटलीस्ट मोबाइल हो सके, चलने का नहीं बट एटलीस्ट वो बैठ सके, इतना वो अपने आप कर सके,
1: रिहैबिलिटेशन जल्दी शुरू कर
0: बिल्कुल। तो जैसे आपने देखा कि स्पाइन

सर्जरी कहते हैं ना कि रीढ़ की जो हड्डी है वो हमारे शरीर का आधार है, अगर रीढ़ की हड्डी में कोई घाव या चोट लग जाती है तो बिल्कुल इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हो सकता है कि मरीज़ को चलने फिरने तक की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। लेकिन उसे जितना जल्दी आप हॉस्पिटलाइज करते हैं, जितना जल्दी उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है, और जैसे डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी की भी नौबत बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि बहुत सारे एक्सरेज के बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि उस पेशेंट को या उस मरीज़ को सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है या नहीं। तो बिल्कुल एक्सीडेंट्स के दम पर कई सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं ऑन द स्पॉट, कई बार इसी कारण बहुत सारी चीज़ों को नुकसान हमें झेलना पड़ता है। और आज के इस कार्यक्रम में ऐसी ही कुछ इंजरीज पर हम बात कर रहे हैं जो एक्सीडेंट में कई सारे लोगों को हो जाती है, लेकिन पहले ही घंटे में अगर इसको बहुत ही ध्यान से इमरजेंसी के दौरान में ही उनकी सारी जो सुविधाएं हैं उसे अगर पहुंचा दी जाए, उपलब्ध करा दी जाए, तो उनके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दुर्घटना के समय, जब अगर आप किसी रास्ते में कोई ऐसी दुर्घटना देखते हैं तो बीइंग अ सिटीज़न आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सारी चीज़ों का भी हमें उतना ही ध्यान रखना है। जी हाँ, अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जो आज के इस कार्यक्रम में आप शामिल करना चाहते हैं तो कम शब्दों में आप हमारे साथ बिल्कुल कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। 4028085 हमारा नंबर है, और हमारी टेक्निक पर हमारे साथ बने हुए हैं फिजान, उरुसा बानो जो प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हमारी प्रोड्यूसर शीतल लुबिन। आते हैं एक गीत का ब्रेक लेकर। आज हम बात कर रहे हैं स्पाइनल इंजरी पॉलीट्रामा पर, और आज हमारे ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर करुणागरन हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, और आज हम स्पाइनल इंजरीज पर बात कर रहे हैं, पॉलीट्रॉमा के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी। और जैसे हमने बताया कि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का एक बहुत ही अहम अंग है, उसी प्रकार से हमारी कमर यानी हमारा हिप जॉइंट जो है, हमारी जो पेल्विक है, अगर इसमें कई बार घाव लग जाए, अगर हिप फ्रैक्चर हो जाए, तो क्या ये दूसरी इंजरीज से ज़्यादा सीरियस हो सकता है? आइए जानते हैं डॉक्टर करुणा गरन से, जो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। तो डॉक्टर जी, क्या पेल्विक और हिप जॉइंट की जब हम बात करते हैं, तो ये फ्रैक्चर दूसरे फ्रैक्चर से क्या ये ज़्यादा सीरियस हो सकता है?
2: हाँ जी, ये पेल्विस और हिप फ्रैक्चर्स, ये यूजुअली यंग पीपल में हाई वेलोसिटी इंजरी जैसे पॉलीट्रॉमा में हो जाता है, और ये एल्डरली पेशेंट्स में भी होता है ऑस्टियोपोरोसिस के वजह से, जैसे बाथरूम में गिर गया है, जैसे हिप फ्रैक्चर्स हो जाता है। तो और यंग पेशेंट में ये पेल्विक इंजरी हाई रेट ऑफ मोर्टालिटी एंड मोबिडिटी, बिकॉज ये ब्लीडिंग, ये ब्लीड ज़्यादा करता है, कैंसिलस बोन है।
1: जी जी।
2: तो और एल्डरली में अगर आप इसको ट्रीट नहीं करोगे तो पेशेंट, इट कैन लीड ऑन टू डेथ ड्यू टू इमोबिलाइजेशन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको रिकग्नाइज करना और सही तरह से ट्रीट करना।
1: तो इसे मैनेज कैसे किया जाता है? मान लीजिए डॉक्टर, अगर किसी को घाव लग गया है, कोई गिर गया है, घर में ही कई बार ऐसा होता है कि बड़े बुजुर्ग फिसल कर गिर जाते हैं, तो इसे किस तरह से मैनेज किया जाना चाहिए?
2: ये हमेशा ये पेल्विस और स्टेबलर और हिप फ्रैक्चर्स तो हम पहले दिन ही नहीं करते हैं यूजुअली, जैसे पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करना पड़ता है, यंग पेशेंट को, उसके बाद ही इसको करना पड़ता है। अगर पेशेंट अनस्टेबल है, जैसे मैंने बोला था ना, डैमेज कंट्रोल ऑर्थोपेडिक्स, पहले फिक्सेटर जैसे बाहर से पिन लगा के इसको फिक्स करें, देन पेशेंट स्टेबल होने के बाद इसको ऑपरेट करें। और एल्डरली पेशेंट को जैसे पहले हम इसका कार्डियक और सारा वर्कअप करें और उसको ऑपरेट करें। तो और

0: सही तरह से अगर आप इसको ऑपरेट नहीं करेंगे, इसका मॉर्बिडिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये पेल्विस एंड एस्टेबलम जैसे आपका पैर से स्पाइन को आपको जॉइन करता है,
1: बिल्कुल,
0: तो अगर ये खराब हो जाता है तो आप चल नहीं सकते, तो पेशेंट को बेड रिडन बन
1: बिल्कुल बना देता। तो डॉक्टर जी, इसमें सर्जरी की नौबत कब आती है?
0: सब इंजरी के वैसे हम ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे वेट बेरिंग एक्सिस में जो इंजरी नहीं है, जैसे हम रैमय प्यूबिक रैमय और रैमय फ्रैक्चर बोलते हैं, उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं, जैसे इलियल ब्लेड में होता है उसको ऑपरेट नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ये आपका वेट बेरिंग एक्सिस में इंजरी है और ये इंजरी डिस्प्लेस्ड है, तो अगर इंजरी हेयरलाइन क्रैक है ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं, अगर इंजरी डिस्प्लेस्ड है इसको सही तरह से फिक्स करना पड़ता है।
1: तो क्या डॉक्टर इसका आउटकम अच्छा होता है?
0: आउटकम बहुत अच्छा होता है, जैसे ये सर्जिकली ऑल्सो ऑर्थोपेडिक सर्जन ये बहुत पेल्विक एस्टेबलर एंड हिप फ्रैक्चर टेक्निकली बहुत डिमांडिंग है, इसको अलग ट्रेनिंग करना पड़ता है, बार बार करने में आपका टेक्निक भी बहुत बेहतरीन हो जाता है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह इसको फिक्स करोगे तो इसका रिजल्ट्स इज वेरी वेरी वेरी सैटिस्फाइंग।
1: तो डॉक्टर जी, पॉलीट्रॉमा और स्पाइनल इंजरीज जब हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, तो इसमें कौन कौन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस एक पेशेंट को हो सकते हैं?
0: नहीं, वैसे पॉलीट्रॉमा में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाता है, स्पाइन इंजरी में अगर आपको पैरालिसिस हो गया तो यू आर लाइफ लॉन्ग यू आर पैरालाइज, जैसे पेल्विस में भी आपको सही तरह से फिक्स नहीं किया है, या पेल्विक टिल्ट हो गया या स्टेबलर हिप जॉइंट ठीक तरह से नहीं है, तो यू आर बेड रिडन और यू आर लिम्पिंग, तो इसका मॉर्बिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो
1: ओके,
0: ये सब इंजरीज में कॉम्प्लिकेशन रेट्स, इन्फेक्शन, मोर्टेलिटी सब ज़्यादा है, और इनका रिकवरी प्रोसेस भी बहुत लंबा है,
1: मतलब टाइम लगता है इसमें बहुत ज़्यादा, और डिपेंड करता है कि अगर आपका एज फैक्टर भी क्या इसमें होता है, कि अगर आपकी एज कुछ ज़्यादा है तो रिकवरी भी बहुत धीरे धीरे होती है।
0: नहीं, अगर एल्डरली पेशेंट्स में रिकवरी काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि उसका और भी प्रॉब्लम्स हो जाता है, और यंग पेशेंट को भी इसका टाइम लगता है, जैसे एक रिस्ट फ्रैक्चर है
1: जी,
0: तो आपने फिक्स किया तो पेशेंट 3 या 4 हफ्ते में काम कर सकता है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अगर एक पेल्विक और स्पाइन फ्रैक्चर्स हो गया तो आपको महीने लग जाता है रिकवरी में, उस पेशेंट को बहुत अच्छा रिहैबिलिटेशन देना पड़ता है, और इसका फैमिली का सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरत है, और इनका इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन, क्योंकि अगर एक यूजुअली यंग अडल्ट है वो फैमिली का ब्रेड विनर है,
1: बिल्कुल,
0: वो कम से कम उसका 3 से 6 महीने से या 9 महीने को इसका आउट ऑफ अर्निंग हो जाता है,
1: बिल्कुल,
0: तो
1: वो चैलेंज हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है,
0: और सीवियर स्पाइन इंजरी में डेडिकेटेड स्पाइन रिहैबिलिटेशन भी करना पड़ता है, तो फिलहाल अभी मॉरिशियस में इसका फैसिलिटीज बहुत कम है, स्पाइनल रिहैबिलिटेशन सेंटर, लेकिन जितना भी गिवन सिचुएशन हम उसको एक सिस्टम बनाया हुआ है तो रिजल्ट अच्छा है।
1: तो डॉक्टर जी, रिहैबिलिटेशन की जब आप बात करते तो इसमें रिहैबिलिटेशन की क्या भूमिका है, क्या रोल है?
0: नहीं, वैसे रिहैबिलिटेशन एक पेशेंट को ब्रिंगिंग बैक टू द बेटर फंक्शनल आउटकम, जैसे पहले जैसे, तो सच बोले तो यू कैन, आप पहले जैसे हो नहीं सकते हैं,
1: सही बात,
0: अगर आप 95% बेटर है, 98% बेटर है, 90% बेटर है या पैरालाइज्ड है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल आपका ट्रीटमेंट हुआ है और रिहैबिलिटेशन हुआ है, अ वेल डन सर्जरी इज ओनली आधा डिस्टेंस क्रॉस किया है, तो एडिक्वेट रिहैबिलिटेशन, गुड रिहैबिलिटेशन आपको पूरा, जैसे आपको अच्छी तरह फिक्स कर दिया है, रिहैबिलिटेशन अच्छा नहीं है तो पेशेंट को स्टिफनेस हो जाता है या मूवमेंट कम हो जाता है।
1: तो क्या इसमें उनको जैसे फिजियोथेरापीज और ये सारी थेरापीज का इंक्लूजन किया जाता है?
0: हाँ, ये रिहैबिलिटेशन इट्स और अलग टॉपिक है,
1: तो
0: फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एक्वा थेरेपी सब है
1: इसमें। क्या काउंसलिंग भी होती है?
0: Yes,
1: साथ ही साथ,
0: बिकॉज वो पेशेंट को बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा हो जाता
1: बिल्कुल,
0: और फ्यूचर का अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे आप सोचिए एक 20-year-old वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग, एंजॉइंग द बेस्ट ऑफ

0: his life, स्पाइन इंजरी हो गया, पैरालाइज्ड है, ऑन व्हील चेयर, तो सब फ्यूचर पूरा डार्क है. तो इसको रिहैबिलिटेशन में और साइकेट्रिक काउंसलिंग और सब में उसको वो, हम उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि भाई अगर आप चल नहीं सकते इवन और व्हील चेयर, यू कैन मेक अ लाइफ. तो इसी में रिहैबिलिटेशन में स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर में और भी पेशेंट्स ऐसे आता है, वो आपस में मिलता है, फैमिली सपोर्ट भी ये डिस्कस करता है, तो वो कॉन्फिडेंस मिलता है. और आजकल ये अगर मान लीजिए वर्स्ट आउटकम पेशेंट व्हील चेयर में हो गया, तो आजकल ये व्हील चेयर्स भी इतना अच्छा आया हुआ है, तो
1: जहाँ पर वो इंडिपेंडेंटली
0: और वो यू कैन हैव अ इकोनॉमिक अर्निंग ऑल्सो, अगर अच्छी तरह रिहैबिलिटेशन, उसका मेंटल रिहैबिलिटेशन भी हो जाए.
1: तो क्या डॉक्टर ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है रिहैबिलिटेशन का, या एक सर्टन ड्यूरेशन के लिए ही ये होता है, या फिर हर छः महीने में या साल में एक बार या इस तरह से उसे दिया जाता
0: है? नहीं, रिहैबिलिटेशन तो स्पेसिफिक टाइम में होता है, 3 महीने या 6 महीने या 1 साल, उसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि पेशेंट और फैमिली को बाय द टाइम उसको पूरा समझ में आता है क्या करना है.
1: तो यहाँ केवल पेशेंट के, यहाँ पेशेंट का नहीं, उनके फैमिली का भी रिहैबिलिटेशन होता है या?
0: फैमिली का रोल बहुत है, जैसे हम बोलते हैं ना, एक अगर एक आदमी मरता है, सिर्फ वो नहीं मरता, उसका फैमिली
1: को भी अफेक्ट करता है. बिल्कुल.
0: तो जैसे अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो पेशेंट का रिकवरी, फंक्शनल थिंग सब अफेक्ट हो जाता है. फैमिली स्ट्रक्चर सपोर्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और फैमिली का रिहैबिलिटेशन
1: जो रोल है,
0: मेंटल काउंसलिंग इज आल्सो बहुत जरूरी है.
1: तो क्या डॉक्टर जी, मान लीजिए अगर कोई स्पाइन इंजरी या फिर किसी पॉलीट्रॉमा से निकला है, तो क्या उसे फिर डेली लाइफ में भी डाइट या ऐसे कुछ चीज़ों का भी समावेश करना चाहिए जो एक तरह से उसको न्यूट्रिएंट्स दे, या हेल्दी लाइफस्टाइल, या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो उसके लाइफ में फिर बाद में चेंजेस के बाद आती हैं?
0: ना, ये हर इंजरी में ये ट्रू है. देखिए पॉलीट्रॉमा में तो इतना चोट हुआ है, बॉडी आपका रिबिल्ड करना पड़ेगा, तो न्यूट्रिशियस हाईली हाई प्रोटीन एंड बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़रूरी है
1: जी.
0: और तो हेल्दी लाइफस्टाइल आपको बेटर फंक्शनल आउटकम के लिए अफेक्ट करता है. तो अगर जैसे मैंने बताया, अच्छा सही टाइम में सही जगह पे पहुंचा है, अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है, अच्छा रिहैबिलिटेशन हुआ है, और इनका कुछ पेशेंट्स है हमें भी पता नहीं चलता है इसको एक्सीडेंट हुआ है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. कई बार जैसे इंटरनल इंजरीज की वजह से बहुत सारी,
0: नहीं अगर सर्जरी अच्छा हो जाता है और उसका रिहैबिलिटेशन अच्छा हो जाता है, रिकवर हो जाता है,
1: तो पता भी नहीं चलेगा. बिल्कुल, पता भी नहीं चलेगा.
0: टू नॉर्मल.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और इसमें 100% 95-98%
1: तो इसमें भी जैसे मरीज की ओर से भी क्या कोई आउटकम देना पड़ता है कि मान लीजिए जैसे बाहर से तो रिहैबिलिटेट किया जा रहा है उसको, बाकी सारी चीजें तो प्रोवाइड की जा रही है, क्या उनका विल पावर भी इसमें बहुत सपोर्टिव रहता है? क्योंकि मैं समझती हूँ कि कई बार जैसे मान लीजिए अगर आप 25 ईयर ओल्ड की बात कर रहे हैं जब व्हील चेयर पर चला आता है, तो क्या उनकी तरफ से भी अगर कोई विल पावर या विलिंगनेस जो होती है जीने की, जो चाह होती है, विल दैट ऑल्सो हेल्प कि उनको फिर से वो एक तरह से उठकर खड़े हो सके? या कई बार जो लोग चलने फिरने की भी हालत नहीं रहती है, क्या उनके लिए भी साइकोलॉजिकली ये सपोर्ट हेल्पफुल रहता है?
0: जी, ये विल पावर तो सबसे बड़ा फैक्टर है.
1: बिल्कुल.
0: ठीक है, जैसे हम रह सकते हैं, हम अच्छा सर्जरी कर सकते हैं, हम अच्छी चीज़ बोल सकते हैं, फैमिली रह सकता है, लेकिन वही पेशेंट इज द वन, उसको दर्द उनका है.
1: बिल्कुल, विलिंगनेस होनी चाहिए. हाँ.
0: उनका है, पहले कदम वही रखना है. तो जब वो शुरू करता है, दर्द तो होता है.
1: बिल्कुल.
0: तो उसको साथ साथ हम दवाई दे सकते हैं. हाँ. लेकिन फिर भी हाँ. ये तो मशीन नहीं है ना, बॉडी.
1: बिल्कुल.
0: तो वो उतना विल पावर से शुरू करेगा तो, और लगातार उसमें काम करेगा तो उसका
1: रिजल्ट,
0: विल पावर बहुत बहुत.
1: बिल्कुल. और इसमें पेशेंस की आवश्यकता बहुत होती है, मैं समझती हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक इंजरी के बाद उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, और रिकवरी का जो प्रोसेस है वो उससे भी लंबा चलता है. तो इसमें कहीं ना कहीं इनपुट जो है वो विल पावर, विलिंगनेस की होती है.

0: और बिल्कुल फैमिली का रोल बहुत ही ज़्यादा अहम होता है, बहुत ही चैलेंजिंग फेज़ होता है, और फैमिली के साथ साथ कहते हैं ना कि कई बार जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं। और जैसे आजकल डॉक्टर ने जैसे शुरू में कहा कि एक्सीडेंट रेट्स आजकल इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कम होने का नामो निशान नहीं है, तो इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम के ऑलमोस्ट एंड तक हम आ पहुँचे हैं, तो डॉक्टर जी जस्ट इस कार्यक्रम को समअप करने के लिए आप कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करेंगे?
1: तो पहला चीज है आप याद रखना, तो ये जो एक्सीडेंट आप प्रिवेंट कर सकता है,
0: बिल्कुल
1: कुछ चीज़ में आपने कुछ गलती नहीं किया तो सामने आने वाला या पीछे आने वाला आपका लग गया तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज इज स्पीडिंग, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो अगर आप ज्यादा स्पीड में जाओगे तो एक्सीडेंट का ज़्यादा है
0: चांसेस,
1: और आपका पॉलीट्रोमा का चांसेस ज़्यादा है। आप स्पीड कंट्रोल में जाएगा तो आपका इंजरी के सीवियरिटी कम है, अगर इंजरी के सीवियरिटी कम है आपका जीने का चांसेस और फंक्शनल रिहैबिलिटेशन भी अच्छा है। तो स्पीडिंग तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबल, और दूसरा ड्राइविंग के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल है, बात करना है, वो सब अवॉइड करना
0: चाहिए,
1: और ट्रैफिक रूल्स
0: फॉलो
1: करना है।
0: बिल्कुल, जहाँ पर एक ट्रैफिक रूल्स बनाए जाते हैं और उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा यानी सख्त रूल्स है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे फ़ायदे के लिए है। और जैसे डॉक्टर जी ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि गलती हमारी ना होने के बावजूद भी अगर हमें इसका सामना करना पड़ता है तो इसमें बहुत ज़्यादा खतरा भी हो सकता है। और जैसे डॉक्टर ने बताया कि स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स, तो बिल्कुल यहाँ पर हमें अपने नियमों का पालन करना है, हमारे जो कानून सख्त कानून हमारे लिए जो रास्तों पर बनाए गए हैं उसका नियमों का पालन आप करते चले, और बिल्कुल ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसका ध्यान अगर हम रखें तो बहुत सारी मुसीबतों से हम बच सकते हैं। तो जी हाँ, आज हमने स्पाइनल इंजरी पॉलीट्रॉमा पर बात की, और आज हमारे साथ बिल्कुल सीनियर कंसल्टेंट, ऑर्थोपेडिक सीनियर कंसल्टेंट जुड़े डॉक्टर करुणा गरन हमारे साथ, टेक्निक पर हमें साथ सहयोग मिला फैजान जी का, साथ ही साथ उरुसा बानो हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट, और शीतल लोबिन हमारे साथ जुड़ी रही प्रोड्यूसर के रूप में। आप सभी दर्शकों ने और श्रोताओं ने इस कार्यक्रम को सुना, बिल्कुल ऐसे ही किसी और कार्यक्रम में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी अगले बुधवार एक और ऐसे टॉपिक के साथ। और बिल्कुल हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर करुणा गरन का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, उनकी टीम का जो हमेशा तैनात रहती है ऐसे ही एक्सीडेंटल बिल्कुल एक्सीडेंट्स के लिए, जहाँ पर वे लोग बिल्कुल चाहते हैं कि कोई अपनी जान ना गंवाएं, पर हमें भी अपनी तरह से पूरी जिम्मेदारी निभानी है। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम को बस यहीं पर विराम देंगे, फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए रत्ना को दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ दिन।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप समाचार विधिमा से। विधिमा आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को नमस्कार। होशवा में 7 महीने के अदगियानों पर इनके अंतिम संस्कार के दौरान कल भावुक माहौल रहा। रविवार को पिता के हाथों हुई इस मासूम की मौत से पूरा देश स्तब्ध है। अंतिम श्रद्धांजलि देने बड़ी संख्या में रिश्तेदार, पड़ोसी और स्थानीय लोग जुटे। मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स एसोसिएशन MHOA ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से जुड़े मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। मंत्री के निजी डॉक्टर को सरकारी अस्पताल में उनकी चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहने की अनुमति दी गई थी। MHOA के अध्यक्ष डॉक्टर विनेश सिवसन ने निजी डॉक्टर के चयन के अधिकार का सम्मान करते हुए सवाल उठाया कि उन्हें सरकारी अस्पताल के उपकरण और कर्मचारियों की सेवाएं किस आधार पर उपलब्ध कराई गई। संगठन ने यह भी पूछा कि क्या ऐसी सुविधा अन्य मरीजों को भी मिलेगी और क्या निजी डॉक्टरों के सरकारी अस्पताल में हस्तक्षेप के लिए कोई आधिकारिक प्रोटोकॉल मौजूद है। NCE 2026 की परीक्षाएं 2 से 16 अक्टूबर तक 7 दिनों में आयोजित होंगी। परीक्षा की शुरुआत आर्ट एंड डिजाइन से होगी, जबकि 16 अक्टूबर को गणित की परीक्षा के साथ 17 समाप्त होगा। इस बीच सरकार ग्रेड 9 में NCE समाप्त करने की तैयारी कर रही है। सुधार का अंतिम ब्लूप्रिंट पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपा गया है और समीक्षा के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। 1 अक्टूबर से टॉफी, जाम, बिस्कुट, वेफल, जेली और च्युइंगम जैसे मीठे उत्पादों पर प्रस्तावित टैक्स विस्तार फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। उद्योग मंत्री अदिला मियां की अध्यक्षता वाली समिति ने इस मुद्दे पर काम शुरू कर दिया है। फिशरीज इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2026 का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों की निगरानी मजबूत करना और अवैध मछली पकड़ने पर रोक लगाना है। नए नियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त मछली पकड़ने वाले जहाजों की इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत किया गया है। और विदेश में पेंसिल्वानिया में खसरे यानी मीजल्स के टीके न लगवाने वाले 2 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई है। इस साल राज्य में इस अत्यधिक संक्रामक वायरस के 393 मामले सामने आए हैं, क्योंकि पूरे अमेरिका में संक्रमण 35 वर्षों में अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: NBC Play, NBC Radio.tv. NBC Radio.tv. 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 10:03 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। कार्यक्रम है भक्ति धारा, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। तो चलिए श्रोताओं, कहते हैं जहां श्रद्धा है वहां गणेश है, जहां गणेश है वहां शुभता और विश्वास भी है। तो चलिए इसे शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी का नाम लेंगे।

0: चलिए भक्ति धारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आपकी सेवा में ज्ञान चक्र कार्यक्रम आप सुन पाएंगे।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस ज्ञान चक्र कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। शिव से शिक्षा। शिव का वाहन नंदी, उस पर आभूषण सर्पों के, सभी एक दूसरे के शत्रु, पर गृहपति के छत्र छाया में सभी सुख तथा शांति से रहते हैं। घर में प्रायः विचित्र स्वभाव और रुचि के लोगों रहते हैं, जिसके कारण आपस में खटपट चलती ही रहती है। घर को शांत के आदर की शिक्षा भी शिव से ही मिलती है। भगवान शिव और अन्नपूर्णा अपने आप परम विरक्त रहकर संसार का सब ऐश्वर्य श्री विष्णु और लक्ष्मी को अर्पण कर देते हैं। श्री लक्ष्मी और विष्णु भी संसार के सभी कार्य को भली भांति सुधारने के लिए अपने आप ही अवतरणीय होते हैं। गौरी शंकर को कुछ भी परिश्रम न देकर आत्म अनुसार संधान के लिए उन्हें निष्ठ पंच रहने देते हैं। ऐसे ही कुटुंब और समाज के सर्वमान्य पुरुषों को चाहिए कि योग्यता और योग्यतम कुटुंबियों के साथ हाथ समान, कुटुंबियों के साथ समाज और कुटुंब का सब ऐश्वर्य दे देते, और उन योग्य अधिकारियों को चाहिए कि समाज के प्रत्येक कार्य संपादन के लिए स्वयं ही अग्रसर हों। वृद्धों को निष्प्रंच होकर आत्मानुसार साधना करने दें। महापार्थेश्वर हिमालय के महाशक्ति स्वरूपा पुत्री का श्री शिव के साथ परिणय होने से ही विश्व का कल्याण हो सकता है। किसी प्रकार की भी शक्ति क्यों न हो, जब तक वह धर्म से परिणित संयुक्त नहीं होती तब तक कल्याणकारी नहीं होती। परंतु आसुरी शक्ति तो

0: तपस्या चाहती ही नहीं, फिर उसे शिव या धर्म कैसे मिलेंगे? धर्म संबंध के बिना शक्ति आसुरी होकर अस्वस्थ ही संहार का हेतु बनेगी। प्रकृति माता की यह प्रतिज्ञा है कि युमाम जयन्ति संग्राम में यो मे दर्प व्युपहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भ्राता भविष्यति। अर्थात संघर्ष में जो मुझे जीत मिलेगा, जो मेरे दर्पण को चूर्ण कर देगा और जो मेरे समान या अधिक बल का होगा वही मेरा पति होगा। यह स्पष्ट है कि रक्त बीज शुंभ निशुंभ आदि कोई भी दैत्य दानव प्रकृति वितेज नहीं हुए, किंतु सब प्रकृति से पराजित प्रकृति के अंश काम क्रोध लोभ मोह दर्पण आदि से पद पद पर भाग्न मनोरथ होते रहे। हाँ, जब गुणवित प्रकृति पर भगवान शिव ही प्रकृति को जीतते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

चलिए श्रोताओं, श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है। चंद भक्ति गीत भगवान शिव जी पर आधारित है। ये पहला गीत है जो है अनूप जनता के स्वर में हम सुनेंगे। ये बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान।

0: चलिए श्रोताओ, आप सुन पाएंगे विनय अंजलि कार्यक्रम। ये कार्यक्रम जो है डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे।
1: लीजिए सुनिए डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।

प्रिय श्रोतागण, सादर नमस्ते। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हम विनयांजलि का शुभारंभ कर रहे हैं प्रकाश आर्य जी के गाये एक भजन से। आप इसका रसास्वादन करें।

श्रोताओं, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का माने है विनय, विनती। इस शब्द का एक अर्थ है याचना यानी मांगना। दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक जो ईश्वर में विश्वास करते हैं और एक जो विश्वास नहीं करते। जो ईश्वर विश्वासी होते हैं उन्हें हम आस्तिक कहते हैं, और जो विश्वास नहीं करता वह नास्तिक कहलाता है। दोनों आस्तिक और नास्तिक संसार में पाए जाते हैं। आस्तिक दो प्रकार के हैं, एक जब प्रार्थना करते हैं तो वह केवल अपने लिए मांगते हैं, कहते हैं ईश्वर मेरा दुख दूर कीजिए, मुझे सुख दीजिए, मेरी आयु को लंबा कीजिए आदि आदि। परंतु कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो सबकी भलाई की कामना करते हैं। वे गा उठते हैं, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा भगवान सबकी पूरी हुई। सबके सुख सबके कल्याण की प्रार्थना वही भक्त करता है जो भगवान को सब प्राणियों में बसा मानता है। वह कह उठता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस संस्कृत श्लोक का एक कवि ने हिंदी में इस प्रकार भावार्थ किया, हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग भगवन, धन धान्य के

भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। श्रोतागण, यह भावना जो इस प्रार्थना में व्यक्त हुई है यह उदार भक्त की भावना है। वह मानता है कि सभी प्राण धारियों में परमात्मा बसा हुआ है। श्रोताओ, मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहते हैं, वह अकेला जी नहीं सकता। जब एक शिशु जन्म लेता है तब उसके माता पिता भाई बहन सब होते हैं, परिवार में सब के सुख की कामना करते हैं। दूसरी इकाई परिवार के बाद समाज है जिसमें बहुत से लोग होते हैं। मनुष्य ने जाति और समुदाय के आधार पर समाज को बांट रखा है। हम जब प्रार्थना में सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं तब केवल अपने समुदाय की प्रार्थना नहीं करते अपितु सभी लोगों सभी समाजों की भलाई चाहते हैं। समाज के बाद की जो इकाई है वह देश है। एक देश में अनेक समुदायों के लोग पाए जाते हैं। इस प्रार्थना के माध्यम से हम पूरे देशवासियों के सुख की कामना करते हैं। देश से ऊपर संसार है। जब हम प्रार्थना में सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं तब हमारी यही कामना होती है कि संसार के सभी लोग सुख प्राप्त करें। श्रोतागण, इस प्रार्थना में कितनी उचरी भावना है। आज हम क्या देखते हैं, परिवार में सुख इसलिए नहीं है कि पति पत्नी भाई बहन रिश्ते नाते में अनबन है, फूट है, बिगाड़ है, झगड़ा है। जब हम अनबूझ बनते हैं, नासमझ होते हैं तब दुख के बीज बोते हैं और सुख का फल खाना चाहते हैं, यह कैसे संभव है। प्रार्थना में तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसका अर्थ है कि हम सबके सुख की कामना करते हैं। परंतु यह प्रार्थना तभी सफल होती है जब इसकी भावना को हम अपने आचरण में परिणत करते हैं। श्रोताओ, हमारी प्रार्थना को सफल बनाने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। भूलना नहीं चाहिए कि पिता परमेश्वर सर्वांतर्यामी है और सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब है सब कुछ जानने वाले हैं। वे सबके अंदर समाये हुए हैं, इसे सब कुछ जानते हैं कि किसकी प्रार्थना सच्ची है और किसकी सच्ची नहीं है। यदि हम सुख पाने की प्रार्थना करते हैं तो आवश्यक है कि हम दुख के बीज न बोएं। पाप के रास्ते पर चलकर कोई सुखी नहीं बन सकता। एक संस्कृत वाक्य में प्रश्न किया गया है, सुखस्य मूलम किम, यानी सुख का मूल, सुख की जड़ क्या है। उत्तर दिया गया, सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। धर्म बड़ा व्यापक शब्द है। महाराज मनु ने इसके 10 लक्षण इस प्रकार बताइए हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म का पहला लक्षण है धृति यानी धीरज। दुख आने पर हमें धीरज से काम लेना चाहिए। दूसरा लक्षण है क्षमा, जो हमसे छोटे हैं या जो हमारे बराबर हैं यदि वह गलती करता है तो हमें एक बार दो बार कम से कम 3 बार तो क्षमा कर ही देनी चाहिए। दमो अस्तेयम, दमन करना, इंद्रियों को वश में रखना। ये इंद्रियां घोड़े के समान हैं, इधर उधर भागती रहती हैं और यहाँ तक कि ऐसे रास्ते पर इंद्रियां लेकर व्यक्ति को चल पड़ती हैं जिस रास्ते में केवल कांटे ही कांटे, दुखी दुख हैं। इसे कहा दमो, दमन करो। फिर कहा अस्तेयम, हम चोरी न करें। मन से भी चोरी होती है, वचन से भी हम झूठ बोलकर किसी को धोखा दे देते हैं और

किसी का द्रव्य, किसी का धन लेकर भी हम उसको दुख पहुंचाते हैं। तो इंद्रियों को वश में करने के अस्तेयम यानी चोरी न करने की भावना होनी चाहिए। फिर महाराज मनु कहते हैं, शौच पवित्रता, मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, विचार की पवित्रता, यदि शौच हमारे अंदर है तो हम धर्म का पालन करते हैं। और इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों को वश में करना है। धीर विद्या, अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, अपनी विद्या को, सत्य विद्या को जानना चाहिए। और सत्यम, सत्य क्या है? ईश्वर सत्य स्वरूप है, हमारी आत्मा सत्य है, इस सत्य को हमें जानना चाहिए। और अक्रोध, गुस्से से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से व्यक्ति दूसरे को हानि पहुंचाने से पहले स्वयं अपनी हानि पहुंचाता है। इसलिए धर्म के इन 10 लक्षणों को जो अपने आचरण में परिणत करता है वही सुख पाता है और वही अधिकारी बनता है। सर्वे भवन्तु सुखी न कहने का या प्रार्थना करने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। श्रोताओं, चलें हम इस प्रार्थना को मन से करें और विचार करके करें, ताकि सारा संसार सुख का अनुभव कर सके। हमारी प्रार्थना परमात्मा से ऐसी हो कि सारा संसार सुखी बने। आपने ध्यान से सुना होगा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में टेक्नीशियन के रूप में साथ दिया श्रीमती अंजु लक्ष्मण जी, हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। अंत में आप एक गीत सुनेंगे और हमें अनुमति देंगे, फिर मिलेंगे। नमस्ते।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए श्रोताओं, 10:40 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं भक्ति धारा कार्यक्रम। अभी आप बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम सुन रहे थे डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में, और इस कार्यक्रम का समय पूरा हो चला। तो चलिए हम बढ़ेंगे इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में। और आपको पता है आज है बुधवार, बुधवार का दिन समर्पित है भगवान गणेश जी को, और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने भगवान गणेश जी का नाम ले चुकी है। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, और आपको पता है कि शिवमय वातावरण है और श्रावण मास के संदर्भ में चंद प्यारे प्यारे भक्ति गान आपकी सेवा में हम प्रसारित कर रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान जो है अनूप जलुता के स्वर में हम सुन पाएंगे।

चलिए श्रोताओं, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र में बहुत ही शक्ति है। कहते हैं मंत्रों का जाप करना बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। मन में अपार शांति की अनुभूति होती है, मंत्र जो है शांत होता है और जीवन में हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आगे बढ़ें। तो चलिए इस मंत्र का जाप आप करते रहे और हमारे साथ देते रहे। 10:50 हो चुके हैं इस स्टूडियो की घड़ी में और अगली भेंट में बहुत ही प्यारा सा भक्तिगान जो है अनूप जरिता के स्वर में एक बार फिर से आप सुन पाएंगे।

श्रोताओं, 10:55 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। आइए सेंट्रल एक्सेस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। बनान और क्लूनी के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है ओब्लू, ओब्लू पुल्ट्री, से डब्ल्यू आर ओब्लू टस्टे, एम टी एस बनान, से डब्ल्यू आर पम्पिंग क्लूनी, डोमेन लाग्राव, हिड्रोपोनिक, बीमानिक और रूट रॉयल क्लूनी के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल एक्सेस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल एक्सेस बोर्ड की तरफ से विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा के कार्यक्रम के अंत तक आप पहुँचे हैं। जाने से पहले ये आरती आप सभी सुनने वालों के नाम, साथ निभाने के लिए धन्यवाद। वापस मिल रहे कल इसी चैनल पर सुबह के 6 बजे। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।

0: टाइम चेक माफ कीजिएगा, सुबह के 11 बज रहे हैं। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से। विधिमा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को नमस्कार। 1 अक्टूबर से टॉफी, जाम, बिस्कुट, वेफल, जेली और च्युइंगम जैसे मीठे उत्पादों पर प्रस्तावित टैक्स विस्तार फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। उद्योग मंत्री आदिलामिया मियां की अध्यक्षता वाली समिति ने इस मुद्दे पर काम शुरू कर दिया है। समिति ने सोमवार को GESTE के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर टैक्स के लागत, कीमतों और स्थानीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पर चर्चा की। अंतिम फैसला समिति की सिफारिशों और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही होगा। फिशरीज इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम्स अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2026 का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों की निगरानी मजबूत करना और अवैध मछली पकड़ने पर रोक लगाना है। नए नियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त मछली पकड़ने वाली जहाजों की इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत किया गया है। NCE 2026 की परीक्षाएं 2 से 16 अक्टूबर तक 7 दिनों में आयोजित होंगी। परीक्षा की शुरुआत आर्ट एंड डिजाइन से होगी, जबकि 16 अक्टूबर को गणित की परीक्षा के साथ सत्र समाप्त होगा। इस बीच सरकार ग्रेड 9 में NCE समाप्त करने की तैयारी कर रही है। सुधार का अंतिम ब्लूप्रिंट पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपा गया है और समीक्षा के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। विदेश में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक अस्पताल में आग लगने से 15 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। ये हादसा एसी कंप्रेसर फटने के कारण हुआ। और भारत में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिससे कई राज्यों में बाढ़, भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने जैसी गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। लगातार हो रही बारिश से सड़कें पानी में डूब गई हैं, वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई क्षेत्र बाढ़ की कगार पर खड़े हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रुए एडवाहत ट्रेफल रोजिल में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की बीबी वाहिदा बी रामजान, जो वाहिदा नाम से भी जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज शाम सवा चार बजे उनके घर रुए एडवाहत ट्रेफल रोजिल से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए गोत उगने की मस्जिद ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए सैमोटें मोरश का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टूडे एट 4:15। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: शम्मे फरोजा।

आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

दिल में हो ज़िक्र खुदा, लब पे इन दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूँ महक उठे ज़िंदगी जैसे गुलों की दुआ। मौज़े सामीन, उम्मीद है आप बफ़ज़ल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस

सुनेंगे तिलावत कुरान पाक, हम्द, नातो सलाम, और आपके पैगामात। ताखीर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आज आप समाअत फरमाएंगे सूरह अल अनाम का एक हिस्सा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

और अल्लाह की निशानियों में से कोई निशानी इन लोगों के पास नहीं आती मगर ये उससे मुंह फेर लेते हैं। जब इनके पास हक आया तो उसको भी इन्होंने झुटला दिया, सो इनको उन चीजों का जिनसे ये हंसी करते हैं अनकरीब अंजाम मालूम हो जाएगा।

क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर दिया जिनके पांव मुल्क में ऐसे जमा दिए थे कि तुम्हारे पांव भी ऐसे नहीं जमाए, और उन पर आसमान से लगातार मेघ बरसाया और नहरें बना दी जो उनके मकानों के नीचे बह रही थीं, फिर उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर दिया और उनके बाद और उम्मतें पैदा कर दीं।

0: पर फरिश्ता क्यों नाजिल ना हुआ जो इनकी तस्दीक करता, और अगर हम फरिश्ता नाजिल करते तो काम ही फैसल हो जाता, फिर इन्हें मोलक भी न दी जाती। नीज अगर हम किसी फरिश्ते को भेजते तो उसे मर्द की सूरत में ही भेजते, और जो शुबा ये अब करते हैं उसी शुबे में इन्हें डाल देते।
1: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ

और ऐ पैगंबर, अगर हम तुम पर कागज में लिखी हुई कोई तहरीर नाजिल करते और ये उसे अपने हाथों से टटोल भी लेते तो जो काफिर हैं वो यही कह देते कि ये तो साफ साफ जादू है, और कहते हैं कि इन पैगंबर

और तुमसे पहले भी पैगंबरों के साथ हंसी होती रही है, फिर जो लोग उनसे हंसी किया करते थे उनको हंसी करने की सजा ने आ घेरा।

कहो कि मुल्क में चलो फिरो, फिर देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। कहो कि आसमान और जमीन में जो कुछ है किसका है, कह दो अल्लाह का, उसने अपनी जात पाक पर रहमत को लाजिम कर लिया है, वो तुम सबको कयामत के दिन जिसमें कुछ भी शक नहीं जरूर जमा करेगा। जिन लोगों ने अपने आप को नुकसान में डाल रखा है वो ईमान नहीं लाते।

और जो मखलूक रात और दिन में बसती है सब उसी की है और वो सुनता है जानता है। कहो क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को मददगार बनाऊं कि वही तो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है और वही सबको खाना देता है और खुद किसी से खाना नहीं लेता। ये भी कह दो कि मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं सबसे पहला फरमाबरदार बनूं और ये कि ऐ पैगंबर तुम मुशरिकों में न होना।

और अगर अल्लाह तुमको कोई सख्ती पहुंचाए तो उसके सिवा उसको कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर नेमत राहत अता करे तो कोई उसको रोकने वाला नहीं। वो हर चीज पर कादिर है और वो अपने बंदों पर गालिब है, और वो दाना है, खबरदार है।

इनसे पूछो कि सबसे बढ़कर करीने इंसाफ किसकी शहादत है। कह दो कि अल्लाह ही मुझ में और तुम में गवाह है, और ये कुरान मुझ पर इसलिए उतारा गया है कि इसके जरिए से तुमको और जिस शख्स तक वो पहुंच सके आगाह कर दूं। क्या तुम लोग इस बात की शहादत देते हो कि अल्लाह के साथ और भी माबूद हैं? ऐ पैगंबर, कह दो कि मैं तो ऐसी शहादत नहीं देता। कह दो कि सिर्फ वही एक माबूद है, और जिनको तुम लोग शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं।

जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इनको यानी हमारे पैगंबर को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचाना करते हैं। जिन्होंने अपने आप को नुकसान में डाल रखा है वो ईमान नहीं लाते।

और उस शख्स से ज्यादा कौन जालिम है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा या उसकी आयतों को झुठलाया? कुछ शक नहीं कि जालिम लोग कामयाब नहीं होंगे।

और जिस दिन हम सब लोगों को जमा करेंगे फिर मुशरिकों से पूछेंगे कि आज वो तुम्हारे शरीक कहां हैं जिनका तुम्हें दावा था, तो उनसे कुछ उज्र न बन पड़ेगा और बजुज इसके कुछ चारा न होगा कि कहें अल्लाह की कसम जो हमारा परवरदिगार है हम शरीक नहीं बनाते थे, देखो इन्होंने अपने ऊपर कैसा झूठ बोला और जो कुछ ये इफ्तिरा किया करते थे सब इनसे जाता रहा।

और इनमें बाज ऐसे हैं कि तुम्हारी बातों की तरफ कान धरते हैं, और हमने इनके दिलों पर तो पर्दे डाल दिए हैं कि उनको समझ न सकें, और कानों में बोझ डाल दिया है कि सुन न सकें, और अगर ये तमाम निशानियां भी देख लें तब भी उन पर ईमान न लाएं। यहां तक कि जब तुम्हारे पास तुमसे बहस करने को आते हैं तो जो काफिर हैं कहते हैं, ये कुरान और कुछ भी नहीं, सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं।

वो इससे औरों को भी रोकते हैं और खुद भी परे रहते हैं, मगर इन बातों से अपने आप ही को हलाक करते हैं और इस बात से बेखबर हैं। काश तुम इनको

0: उस वक्त देखो जब ये दोजख के किनारे खड़े किए जाएंगे और कहेंगे कि ऐ काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं ताकि अपने परवरदिगार की आयतों की तकजीब न करें और मोमिन हो जाएं।
1: सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ पाक परवरदिगार हमें कुरान शरीफ समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। कभी किसी को देखकर ये मत सोचो कि उसकी ज़िंदगी मुझसे बेहतर है, उसके पास ज़्यादा दौलत है, उसके पास ज़्यादा खुशियाँ हैं और मेरे पास कुछ नहीं। तुम सिर्फ़ लोगों की ज़िंदगी का वो हिस्सा देखते हो जो वो दुनिया को दिखाते हैं, मगर उनके दिल की परेशानियाँ, उनकी आजमाइशें और उनके छुपे हुए आंसू, उनके दुख तुम नहीं देख सकते। अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए अलग अलग रास्ते, अलग वक्त और अलग आजमाइशें मुकर्रर की हैं। इसलिए दूसरों की नेमतों को देखकर अपने रब की नेमतों को मत भूलो। जो तुम्हारे पास है उस पर शुक्र करो, जो नहीं है उसके लिए हलाल कोशिशें करो, और जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में रखा है उस पर यकीन रखो।

0: ऐ पाक परवरदिगार, तेरा शुक्र अदा करते हैं उन तमाम नेमतों के लिए जो तूने हमें अता की हैं। मौजूद सामेईन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:26 हो चुके हैं। बुध का दिन है, अगस्त के 26 तारीख है और माह नूर माह रबीउल अव्वल की आज 13 तारीख है। अब आप समाअत फरमाएंगे खतीब व इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास्क पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा कादरी साहब की ज़ुबानी एक बयान। आइए समाअत फरमाइए।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल अकीमतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم ولكم وآله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले तो जिंदा है वल्ला तो जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले तेरा खाएं तेले गुलामों से उलझें हैं मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला की मशहूर ज़माना नात शरीफ के चंद अशार थे जिसको हर ख़ास व आम तिलावत करता है पढ़ता है गुनगुनाता है और उससे महजूज़ होता है। ये हकीकत में पेवर नात शरीफ के अल्फाज हैं जिसमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वबारक वसल्लम की नात गोई है। मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पुरबहार और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ़ लाना कितनी खुशी और खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहुल करीम ने हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हमें मुसलमान घरों में और उसके साथ साथ सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों के घरों में पैदा किया जहाँ के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

वसल्लम के मीलाद शरीफ की गूंज को हमने सुना, हमारे कानों में अजान दी गई, हमारे कानों में इकामत को पढ़ा गया और हमें घुट्टी में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुस्तफ़ा जान अहमद से वफ़ादारी का सबब और मुस्तफ़ा जान अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी का सलीका ये बचपन ही से हमें दिया गया। हमने अपने घरों में महफिलों को आबाद होते हुए देखा, हमने अपने घरों के अंदर चरागा होते हुए देखा, हमने अपने घरों को सजते हुए देखा, हमने अपने घरों में अच्छे खाने बनते हुए देखे। मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहारों से हमने अपने घर को रोशन देखा। इसलिए आज गलियों में, बाज़ारों में और हर जगह, हर तरीके से, हर मकाम पर इंसान ज़िक्र विलादत मुस्तफ़ा कर रहा है और करता रहेगा। मसाजिदों में, खानकाहों में, मदारिसों में, गलियों में, कूचों में, बाज़ारों में, घरों में, आदमी की तन्हाइयों में, इज्तिमाइयात में, हर जगह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो रहा है। क्या इंसान है, क्या हैवानात हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, ज़मीन से लेके आसमान तक और आसमानों की मखलूक हो या ज़मीन के अंदर की मखलूक हो, हर जगह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक है। जहाँ जहाँ खुदा का ज़िक्र है वहाँ वहाँ मुस्तफ़ा का ज़िक्र है। खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बाँ खुदा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बाँ खुदा न करे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की विलादत बसआदत की खुशियाँ दुनिया मना रही है और मनाती रहेगी। आके करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम का मिलाद शरीफ कल भी मनाया गया और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आज भी बहुत सारे इलाक़ों में मनाया जा रहा है। इसलिए मैं आके करीम की विलादत बसआदत के हवाले से बात को अर्ज़ करता हूँ और आपको मैं ये बात बता करके अपने आप को खुशी भी महसूस कर रहा हूँ कि यह पैगाम हुजूर की मिलाद की खुशी में मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। एम्बेसी मॉरिशस के ज़रिए से, जिसके ज़रिए से ये प्रोग्राम उर्दू का नशर हो रहा है। आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत से पहले भी दुनिया में इंसानों की कोई कमी नहीं थी। दुनिया के खित्ते खित्ते में, दुनिया के कूचे कूचे में, गोशे गोशे में इंसानियत आबाद थी, इंसान आबाद थे, इंसानों से जो है दुनिया भरी हुई थी। लेकिन यह इंसान शराफत व तकद्दस से ज़िंदगी गुजारने से दोचार हो चुका था और इतना दूर हो गया था कि इसे ये मालूम ही नहीं था कि हम इंसान हैं। हमको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी क्रिएशन का शाहकार बनाया है। इसे ये मालूम ही नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इतना मोहतरम, इतना अजीम शान क्यों बनाया है। इसे यह नहीं मालूम था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सर के ऊपर ताज करामत रखा है। इसे ये नहीं मालूम था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आसन तकवीम पर पैदा फरमाया है, हमें इतना मुकर्रम क्यों फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये इंसान है जिसके हम जायज़ा लेते हैं, चाहे वो आजम की ज़मीन हो या अरब की ज़मीन हो। हर जगह कुफ्र व शिर्क की जो है बोलवाला था और हर जगह जुल्म व जफा के बाज़ार गर्म हो चुके थे। यहाँ तक कि शराब को पीना ऐसा था जैसे लुकमे पर आदमी शराब को पीता है। खाना ना खाए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन शराब के बगैर उसकी ज़िंदगी नहीं चलती थी। हालात इस तरह के थे कि जिनाकारियों के बाज़ार इतनी धूमधाम से बचे हुए चल रहे थे कि इंसान सगी बहनों के साथ भी जिना कर रहा था। हत्ता के हाल तो ये था कि सगी बहनों के साथ निकाह हो रहे थे, शादी ब्याह किए जा रहे थे और सगी माओं के साथ में अपना जवान बेटा जिना करने के बाद फ़ख्र महसूस करता था। हम जज़ीरतुल अरब की अगर तारीख का जायज़ा लें तो हमें मालूम होता है कि बच्चियों को ज़िंदा दफन किया जा रहा था। अगर किसी के घर में बच्ची पैदा हो जाए तो सगा बाप उसे माँ की गोद से छीन करके ज़मीन से बुलंद करने के बाद हाथों को उछाल करके उसे ज़मीन पर गिरा देता था। उसकी ज़बान बाहर निकल आती थी, उसकी आँखें उबल आती थी और वह आँखें मिला करके अपने बाप को देखती थी तो बाप ज़ालिम बजाय आंसू बहाने की उसकी आँखों से खून टपकने लगता था। ये जुल्म की दास्तान है। हालात इस तरह के थे कि अगर किसी इंसान का शोहर मर जाता किसी बीवी का और वह बीवी की शादी हुई है, अभी नई नवेली दुल्हन है और उसका शोहर मर गया है, तो फिर उस औरत को समाज में ज़िंदा रहने का कोई अधिकार नहीं था। हालात

ये थे, या तो उसे जिंदा चिता के ऊपर उसे जला दिया जाता था या उसे जिंदा गाड़ दिया जाता था। और अगर उसे जलाया नहीं जाता था तो फिर 6-7 महीने के लिए किसी कोठरी में उसे बंद कर दिया जाता था। उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी के कुछ मसाइल और कुछ ज़रूरतें वहीं तक पूरी कर दी जाती थी। और वो अगर किस्मत से बेचारी उस कोठरी से बाहर निकल आती थी तो उसके मुँह को काला करने के बाद एक गधे के ऊपर मायूब जानवर पर बिठा करके उसको घुमाया जाता था और बस्ती वालों को और शहर वालों को यह ज़हन व फ़िक्र दिया जाता था, ये मनहूस औरत है जिसकी वजह से इसका शोहर मर गया है। ज़ालिम, अगर शोहर मर जाए तो औरत की नहूसत समझी जाती थी, लेकिन अगर औरत मर जाए तो मर्द की नहूसत नहीं समझी जाती थी। मेल डोमिनेटिक सोसाइटी में यही माहौल था और दुनिया इस तरह से ज़मीन दोस्त हो गई थी और इंसानी कदरों से दोचार हो चुकी थी कि उसे यह पता ही नहीं था यह अशरफुल मखलूकात भी है। यह नहीं मालूम था कि औरत भी दर्द रखती है, इस माँ का भी कोई मकाम है। न माँ की अजमत सलामत थी, न बहन का वक़ार सलामत था, न बच्चियों का तकद्दस सलामत था, बल्कि औरत को समाज में ज़िंदा रहने का कोई इस तरह से अधिकार ही नहीं था। हाल ये थे कि मार्केट में लाकर के सगा बाप अपनी बेटियों को बेच देता था, शोहर अपनी बीवियों का सौदा कर देता था, मार्केट इस तरह का था। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पुरबहार से पहले इस तरह के हालात मक्का के पाए जा रहे थे। हजरत ईसा पैगम्बर के आसमान पर उठाए जाने के बाद तकरीबन 570 या 71 साल का ज़माना गुजर गया था कि जो पैगम्बर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो तालीम नशर फरमाई थी और एक खुदा की इबादत का शऊर और सलीका अता फरमाया था, लोगों ने उसमें इंटरफियर कर दिया था और हत्ता के 3-3 खुदाओं के कायल हो गए थे। हाल ये था कि इंसान एक खुदा की तलाश में निकलता था तो ना जाने कितने माबूदान बातिल को उसने सामने खड़ा कर दिया था, और जो बजाय एक खुदा की इबादत करने के ना जाने कितने खुदाओं की इबादत कर रहा था। यही इंसान तो है कि जब एक खुदा की इबादत की तलाश के लिए निकला था तो इसने समझते हुए दिन के उजाले के अंदर चमकते हुए सूरज को देखा, और जब इसकी नज़र इस सूरज के ऊपर पड़ी तो ये हैरत ज़दा रह गया कि इतना ये सूरज है जो कायनात को रोशन कर रहा है, दर व दीवार को चकमगा रहा है और दर दीवार रोशन नज़र आ रहे हैं। जब इसकी नज़र उस सूरज पर पड़ी तो इसकी पेशानी झुकी और कहा, तू ही मेरा खुदा है। यह सूरज दिन के उजाले में कायनात को रोशन करता रहा, लेकिन जैसे ही रात के दामन में दिन को समा दिया गया और फिर रात का चादर उसके ऊपर पहना दी उड़ा दी जाती है, तो उसके बाद जब रात को चांद की चांदनी नमूदार होती है और चांद रात के अंधेरे में भी रोशनी का बंदोबस्त कर देता है और नूरानी किरणें दर व दीवार पर बखेरता है, तो इंसान की नज़र जब चांद के ऊपर पड़ी तो इसने कहा, तू ही मेरा खुदा है। जब कभी इसकी नज़र आसमान की बुलंदियों के ऊपर चली गई, इतना ऊँचा आसमान है, तो अपनी पेशानी को झुका कर कहा, तू ही मेरा खुदा है। जब कभी इसने अंजुमन सितारों की जगमगाती हुई रोशन अंजुमन को देखा तो अपनी पेशानी को झुका कर कहा, तू ही मेरा खुदा है। ये इंसान है जो कभी हरे भरे दरख्तों के सामने से गुजरा तो उनकी हरियाली देख करके अपनी पेशानी को झुका कर कहा, तू ही मेरा खुदा है। यही इंसान जब कभी बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान से गुजरा तो उनकी हैबतनाक चोटियों को देख करके अपनी पेशानी को झुका कर कहा, तू ही मेरा खुदा है। यही इंसान है कि जब कभी बहते हुए दरिया के सामने से गुजरा और उसकी दरिया की लहरों को देखा और उसकी मौजों को टकराते हुए देखा तो अपनी पेशानी को सामने रख कर कहा, तू ही मेरा खुदा है। गोया के ज़मीन के कंकर से लेके आसमान के आफ्ताब तक हर चीज़ माबूद बनी हुई थी और एक इंसान की मजबूर पेशानी थी जो हर एक के सामने झुक रही थी, कभी नफ़ा के सामने, कभी नुकसान के सामने, कभी हुस्न के सामने, कभी बदसूरती के सामने, कभी ताकत के सामने, हर जगह इंसान की पेशानी जलील हो रही थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बस आदत हुई और मुस्तफ़ा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की इबादत का सलीका और शऊर देने के बाद दुनिया को यह पैगाम दिया है कि यह पेशानी किसी के सामने झुकने के लिए नहीं है, यह पेशानी खुदा वादहुला शरीक की बारगाह में झुकेगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने एक खुदा की इबादत का शऊर और सलीका देकर हमारी पेशानी को हर जिल्लत से आज़ाद कर दिया। वह एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को नजात, वह सजदा जिससे रूह जमी कांप जाती थी उसी को आज तरसते हैं मिंबर व मेहराब। यह सहर जो कभी फरदा है कभी ये इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा, वह सहर जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद, होते ही बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वसादत से पहले के हालात पर नज़र डाली जाती है तो आंखों से आंसू आते हैं, दिल रोने लगता है। हालात इस तरह के थे, वो बच्चियों का क्या कसूर था जिन्हें जिंदा बाप सगा बाप जिंदा दरगोर कर रहा था, उन औरतों का क्या कसूर था जिनके शोहर मर जाते थे, बेवा हो जाती थी, अगर कोई बच्चा यतीम हो जाता तो बजाय उसके कि उसकी
परवरिश की जाए, उसके

0: हाथ और पांव में बेड़िया और जंजीरें गुलामी की डाल दी जाती थी। अल्लाह अकबर कबीरा उनके मालों को लूट लिया जाता था। यतीमों की आहें पुकार रही थी, मौला किसी रहमतुल आलमीन को भेज दे। बेवा औरतों की आत्मा पुकार कर कह रही थी, मौला किसी रहमतुल आलमीन को भेज दे। वो बच्चियां जो कब्र में जिंदा उतारी जा रही थी पुकार कर कह रही थी, मौला किसी रहमतुल आलमीन को भेज दे। जब किसी बेवा औरत को, जिंदा औरत को शोहर की चिता पर जलाया जाता होगा, उसकी आत्मा पुकार कर कहती हूँ, मौला किसी रहमतुल आलमीन को भेज। अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदों पर करम आया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों पर करम फरमाते हुए मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पर, अरब के देश में मक्का शहर में, हजरत इब्न हाशिम के ख़ानदान में, कबीले कुरैश के अंदर, अब्दुल मुत्तलिब के घराने में, अब्दुल्लाह के घर में, हजरत आमिना खातून के वतन मुकद्दस से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ाइदुल मुरसलीन बना करके, खातमुन नबीयीन बना करके, सैयदुल आलमीन बना करके, रहमतल लिल आलमीन का ताज पहना करके, आमिना खातून के वतन मुकद्दस से पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त इमामुल अंबिया को जलवगर फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत हो गई, सुभान अल्लाह। सुबह सुबह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो सरकार की माँ फरमाती है, मेरे आका, मेरे महबूब, मेरा बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हाल ये थी कि इतनी खुशबू फैली, इतनी खुशबू फैली कि मेरा मकान जो है उस खुशबू से, जो है उस खुशबू से ऐसा मुअत्तर हो गया था कि दरो दीवार से खुशबू आ रही थी, बल्कि मक्का की गलियों में ठंडी ठंडी खुशबू की हवाएं चल रही थी। हाल ये है, सरकार की माँ कहती है, जिस तरह से औरतों को तकलीफ़ होती है मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, जिस तरह औरतों को परेशानी होती है मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत हो गई है, अब दुनिया में रोशनी हो गई है, उजाला हो गया है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको हुजूर की विलादत की खुशियों की बरकतें नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौज़ सामईन, अभी आप समात फरमा रहे थे एक बयान विलादत मुबारक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। एक बयान ख़तीब इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास्क पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा कादरी साहब की ज़ुबानी। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी मानवात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। आइए समात फरमाइए चंद ऐलानात। 29 अगस्त, जी हाँ, सनीचर 29 अगस्त सुबह 10 बजे शान रसूल मस्जिद लागी लॉज पोर्ट लुइस में आलिमा सैयदा उनाजा फ़ातिमा की सरपरस्ती में मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। इसके अलावा समात फरमाइए चंद और ऐलानात। सनीचर 29 अगस्त, जी हाँ, सनीचर 29 अगस्त दिन के 1:30 बजे बैतुनूर मल्टी सोशल कॉम्प्लेक्स सिदमौशाल पोर्ट लुइस में आलिमा शमीमा सुब्राची की सरपरस्ती में द मुस्लिम यूथ फेडरेशन लेडीज़ विंग की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। इसके अलावा 28 अगस्त, जी हाँ, 28 अगस्त जुम्मा 28 अगस्त सुबह 10 बजे जामिया अयूबिया रिजविया पोर्ट लुइस निकोले रोड में शैला आपा की सरपरस्ती में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम किया जा रहा है। बाद नमाज ज़ोहर लंगर भी तकसीम किया जाएगा। और आपको बताते चलें कि सनीचर 29 अगस्त, जी हाँ, सनीचर 29 अगस्त दिन के 1:30 बजे यानी बाद नमाज ज़ोहर इस्लामिक कल्चरल सेंटर लापे स्ट्रीट पोर्ट लुइस में मुस्लिम लेडीज़ काउंसिल की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है।

मौजूद सामीन, आइए समाअत फरमाइए चंद और ऐलानात इतवार 30 अगस्त। जी हाँ, इतवार 30 अगस्त सुबह 9:30 बजे से हनफिया रज़विया दारुल उलूम और मजलिसे नोमान की जानिब से ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम किया जा रहा है। दारुल उलूम लेन न्यू मॉस्क रोड शुमै इंग्रेनिये में। इसके अलावा इतवार 30 अगस्त सुबह के 9:30 बजे दारुल उलूम शुमै ग्रेनिये लेन में जामिया हनफिया एसोसिएशन की जानिब से मौलाना हारून असैन की सरपरस्ती में ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम किया जा रहा है।

0: અને મોજ કરો, મજાતે રહો.
1: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस.

0: हेलो डियर लिसनर्स, मैं हूँ वेदिता। आप सभी को रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की फर्स्ट एनिवर्सरी पे बहुत बहुत सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें अपना प्यार देने के लिए। ऐसे साथ देते रहिए ताकि हम आपका मनोरंजन करते रहे और आप हमारे साथ मस्ती करते रहे।
1: आपकी पसंद

दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। नमस्कार श्रोता, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। जी हाँ, धन्यवाद आप साथ दे रहे हैं और उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम। हम साथ मिलकर ये पल और खूबसूरत बनाएंगे। आपको क्या करना है, मैसेजेस करना है ऑन 5251705 अपने मैसेजेस के लिए, और फ़ोन करना है ऑन 4028085 4028085। और हमें आपका इंतज़ार है। चलिए आज का पहला गाना सुनते हैं महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में।

0: मेरा छोटा सा संसार, छोटा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार।
1: आपकी पसंद दो बजकर 45 मिनट हुए हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला गाना जो है अनजाना फिल्म से लिया गया है लता मंगेशकर की आवाज़ में। और आज की पहली फरमाइश अनीता जी जो हमें सुन रही है फ्रॉम मोडाल बे, गाना खासकर करुणा अमृता अनीता के लिए, और गाना खासकर विकास जय संजीव और राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब।

कर अपनी दो बहनों, अपनी तीन बहनों के लिए इंदिरा शारदा, और जी हाँ इंदिरा शारदा जो है हर साथ में सहेली है नीला प्रतिभा शोभा गीता गजाधर के लिए गाना चल पड़ा हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती।

चले दोस्तों, साथ में ये गाना जाएगा ज्योति जो रहती है यूनियन पार्क, और गाना वो डेडिकेट कर रही है प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और अविष्टा के लिए।

0: जी हाँ, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, और हर मुस्कुराहट के पीछे कभी कभी दर्द भी बहुत होता है। और यहाँ पर हमें सुन रही है दीदी सुदेवी जी। जी हाँ, वो रहती है वाक्वा और खास गाना वो मांग रही है अपने लिए, दीदी लालिता सुनीता कुशल परिवार के लिए, शोभा देवीना माला बिंदु संगीता मालेंगा के याशना नीरज लक्षिका कृषिका और राम रतन परिवार कुआहू परिवार हृदय परिवार राघुबर परिवार और झालू परिवार के लिए। और गाना है 20 साल बाद से लिया गया।
1: से कह दो जी

0: वेंसडे 26 अगस्त, सेव द डेट। होगा कुछ बहुत खास, होगा कुछ बहुत स्पेशल। सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रेडियो मस्ती RM2 एंड रेडियो मनोरंजन RN3। लेट्स सिंग टुगेदर, लेट्स डांस टुगेदर, लेट्स सेलिब्रेट टुगेदर। केक कटिंग, गिव अवेज डिस्ट्रीब्यूशन, गेम्स एंड गिफ्ट्स, और होगी बहुत सारी मस्ती जहां हम करेंगे आप सबका मनोरंजन। आपसे हम मिलने आ रहे हैं गुडलैंड्स न्यू मार्केट दिन के 10 बजे से 11 बजे तक, पोर्ट लुइस अर्बन टर्मिनल मॉल दिन के 12 बजे से 1 बजे तक, रॉसबेल मॉल बाय वेस्ट दिन के 2 बजे से 3 बजे तक, फ्लैक टैक्सी स्टैंड नेक्स्ट टू बस स्टेशन शाम के 4 बजे से 5 बजे तक। सीधे स्टूडियो से निकलकर हम मिलने आ रहे हैं आपके साथ। सेव द डेट, सेव द डेट, बुधवार 26 अगस्त हम मिलेंगे आपसे इन जगहों पर, तो जरूर हमारा इंतजार करें। साथ मिलकर मनाएंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। गुडलैंड्स, पोर्ट लुइस, रॉसबेल एंड फ्लैक, तैयार हो जाइए। हम मिलेंगे आपसे वेंसडे 26 अगस्त को और सेलिब्रेट करेंगे रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती की फर्स्ट एनिवर्सरी। Sponsored by Lutavere. Lutavere.
1: थोड़ी सी खुशी है, थोड़ा सा है गम। जी हाँ, चलिए अगला गाना हम चलाएंगे खासकर कमला डिनू जी के लिए जो हमें सुन रही है फ्रॉम मोहताबा, और गाना खासकर वो मांग रही है अपने लिए और उनकी सहेली सीता, उनके भाई के लिए, और भाई सुधीर, ज्ञानेश्वर, रियांश, आरोही, सभी MBC टीम के लिए, और साथ ही साथ में रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे 3 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर, और हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे गीता जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार। मॉरिशस में स्ट्रोक यानी मस्तिष्क आघात के मरीजों के इलाज की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। विक्टोरिया हॉस्पिटल कॉडस और SSON हॉस्पिटल पॉम्पलोमिसस के बाद अब सनेरू जगन्नाथ हॉस्पिटल में भी स्ट्रोक यूनिट शुरू की गई है। फ्लाक में आज सुबह इस विशेष इकाई का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे। इस स्ट्रोक यूनिट का उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र के मरीजों को जल्द से जल्द आवश्यक इलाज उपलब्ध कराना है। उच्च शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल करिकुलम कमिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य श्रम बाजार की जरूरतों का आकलन करना है। इस त्रिपक्षीय समिति की सह अध्यक्षता बिजनेस मॉरिशस और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस कर रहे हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों से अपने पाठ्यक्रमों की समीक्षा करने को कहा गया है, ताकि ऐसे स्नातक तैयार किए जा सकें जो बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को ढाल सकें। पिछले 10 वर्षों में

0: यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने डिजिटल क्षेत्र के विकास और आर्थिक बदलावों के कारण 140 पाठ्यक्रमों को बंद या संशोधित किया है। इन बदलावों के चलते रोजगार के नए क्षेत्र और नए पेशे भी सामने आए हैं। विदेशी खबरों में नेपाल में तिब्बत की सीमा से लगे इलाके में अचानक आई जबरदस्त बाढ़ ने कई गांवों को तबाह कर दिया है। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है और चीनी सीमा के पास 9 जवान लापता हैं। अधिकारियों ने भारी जानमाल के नुकसान की आशंका जताई है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
2: आइए सुनिए सीबी की ओर से एक विज्ञप्ति। बनान और क्लूनी के आसपास के इलाके ओब्लू पुल्ट्री CWA ओ कुले ओब्लू टोस्टे MTS बनान CWA पंपकिन क्लूनी डोमेन ला ग्राव हाइड्रोपोनिक बिटानिक और रूट रॉयल क्लूनी के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 28 अगस्त 2026 सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
3: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस।
4: आपकी पसंद
2: तीन बजकर 3 मिनट हुए हैं दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। इस कार्यक्रम को हम जारी रखते हैं और यहाँ पर हम आपको याद दिला दें, नंबर है 4028085402808 और मैसेजेस आप कर सकते हैं ऑन 5251700 और यहाँ पर अगला गाना संगीता जी के लिए जो हमें सुन रही है क्यूपिप से जारी रखते हैं ये कार्यक्रम। उषा कौर आपके साथ 4 बजे तक।

जाने वालों जरा मुड़ के देखो इधर। और यहाँ पर गाना हम चलाएंगे फिल्म दोस्ती से लिया गया रफ़ी साहब की आवाज़ में, और गाना खास कर जाएगा विद्या जी के लिए जो रहती है यूनियन पार्क और इस समय हमें सुन रही है। गाना उनके लिए और पति सुभाष की याद में और पूरे गाने फैमिली के लिए जो रहती है वाकवा।

0: किंग अंकल से लिया गया ये प्यारा सा तराना खासकर आकाश चेतन मनसुख के लिए जो रहते हैं बॉम्बू, और गाना वो मांग रहे हैं अपने लिए और साथ में सभी मनसुख परिवार के लिए जो रहते हैं बॉम्बू।
1: अकड़ बकड़ बम्बे बम बम बम ब्लाडी।

3:21 हुए हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर हम चलाने जा रहे हैं अगला गाना बंधु परिवार के लिए जो रहते हैं थ्रियोले। ये दुनिया के बदलते रिश्ते किशोर कुमार

3:27 हुए हैं श्रोताओं, चलिए यहाँ पर हमें सुन रही हैं सिमलाजी चौरटिया बेलरोज और गाना वो मांग रही है बहन रोमा आरती इंदिरा भाई राकेश और धीरज के लिए और साथ में उनके बेटे हैं नमलेश बेटी कीर्तिना।

लैला मजनू, शीरी फरहान, ही रांझा।

दोजख की आग में जल मरने वालों के। मगर अफसोस, आज की दुनिया में मजनू, फरहा, रांझा तो है, मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों, आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है, एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

आपकी पसंद। चलिए आपकी पसंद प्रोग्राम को यहाँ हम अगला गाना चलाने जा रहे हैं। देवीनाथ जी खातिर जो हमने के जो इस वक्त हमको सुन रही है बुबासन से, साथ देने के लिए धन्यवाद आपको। गाना जाता है आपके लिए और आपके परिवार के लिए।

3:52 हुए हैं दोस्तों, आप साथ दे रहे हैं रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। ये गाना जाएगा अमृता जी के लिए जो हमें सुन रही है इस समय। मेबर्ग से गाना जाएगा उनके पति देवानंद के लिए बेटा रोहित और बेटी इक्षा। और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त हो चला। आपने साथ दिया, धन्यवाद। उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ शाम आपको।

0: Express. आइए सुनिए सीबी की ओर से एक विज्ञप्ति। लाबोंचो के आसपास के इलाके रॉयल रोड, टेंपल रोड, शिवाला रोड, विलेज होल लेन के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि गुरुवार 27 अगस्त 2026 सुबह के 9:15 से शाम के 4 तक बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम सुनिए शिरीष रामा के साथ।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: साल भर में सबसे प्यारा
3: और एक फ्री रेडियो मनोरंजन सेट ही पहला वाटी दिवसाची हार्दिक शुभेच्छा।
4: पहला वर्ष ने वर्ष गांठ ने तमने बद्धा ने RM2 अने RM3 तरफ थी घनी घनी शुभकामनाओं।
5: रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती के पहल का सालगिरह के ढेर बना शुभकामना।
6: रेडियो मस्ती मरी रेडियो मनोरंजन को तुली वार्षिकोत्सव शुभाभिनंदन लु।
7: इनिय मुदल आंड निरेव नलवाटिकल RM3 RM2
8: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन को पहली सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं।
9: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की पहली सालगिरह मुबारक।

0: स्वर तरंग,
1: स्वर तरंग। स्वर तरंग,
0: स्वर तरंग।
2: हेलो श्रोताओं, नमस्कार।

प्रिय श्रोताओं नमस्कार। आज के इस खेती बाड़ी के कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ बालगोबिन बासेनू, वल्गराइजेशन ऑफिसर फारे से। आज कंपोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो कंपोस्ट करने के बहुत तरीके हैं, पर आज के इस प्रोग्राम में सबसे आसान तरीका आपको मैं बताऊंगी। कंपोस्ट किस चीज को कहते हैं? तो जब बायोडिग्रेडेबल पदार्थ, जो हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, सरकर एक खाद बनती है जो ऑर्गेनिक पदार्थ, न्यूट्रिएंट और माइक्रोब्स से भरा हुआ है, उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट को फल और सब्जियों को उगाने में काम आती है। आर्थिक विकास से हमारे रहन सहन में बहुत बदलाव आई है, जिसे हम बहुत खरीदारी करते हैं, और दुर्भाग्यवश ऐसे बदलाव से बहुत सी वेस्ट मटेरियल हर रोजाना पैदा होता है। हर एक मॉरिशन लगभग 400 केजी वेस्ट हर साल पैदा करते हैं, और इससे हर साल मॉरिशस में लगभग 500,000 टन्स की घरेलू कचरा पैदा होता है। सरकार को बहुत ज्यादा लगते हैं इन कचरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और उनको खत्म करने के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कचरे उठाने के लिए और इसका ट्रीटमेंट करने के लिए जगह लगते हैं, व्यवस्था लगते हैं और बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। यहाँ वहाँ पड़े हुए कचरे ना सिर्फ लैंडस्केप को खराब करते हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए और एनवायरनमेंट पे भी जरूर भारी पड़ता है। तो इसके लिए कुछ अच्छा करना बहुत जरूरी है। सभी घरों में बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होते हैं, वो एक अच्छी नेचुरल रिसोर्स होता है। इन बायोडिग्रेडेबल कचरों को हम कंपोस्टिंग के द्वारा रिसाइकल करके कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट एक ऐसी पदार्थ है जो कचरों की डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से, जहाँ पर मिट्टी में बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रोब्स, कीड़े मकोड़े द्वारा से बनती हैं। इन जीव

अंटू को बहुत सारे हवा और गर्मी चाहिए अपने पूरे लाभ दिखाने के लिए। अंत में एक अच्छी खाद मिलती है जो नेचुरल, इकोलॉजिक और ऑर्गेनिक भी है, जिसे हम कृषि विकास में उपयोग कर सकते हैं, जिसे मिट्टी के स्ट्रक्चर, उसके फर्टिलिटी और पानी रखने की क्षमता को बढ़ाता है। कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं, पर हर एक तरीके एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि अपने आंगन में भी कर सकते हैं, छोटे आकार में या चाहे तो बड़े कमर्शियल आकार में भी आप कर सकते हैं। अपने यहाँ कंपोस्ट बनाने के लिए आप अपने जगह ठीक तरीके से ही चुनें। कौन सी सिस्टम में अपने कचरे को डालना है, कौन सी मटेरियल को चुनना है, कैसे चुनना है, इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखें। कंपोस्ट बनाने के लिए एक गुप्त जगह जो एक्सेसिबल भी हो, थोड़ा छांव में हो, ही ठीक होता है। आप अपने कंपोस्ट बिन प्लास्टिक के ले सकते हैं, लकड़ी से या फिर कंक्रीट ब्लॉक्स से भी आप बना सकते हैं। प्लास्टिक का बिन आसानी से मार्केट में मिल जाता है, प्रैक्टिकल भी है और ज्यादा दिनों तक भी चल सकती है। आप इकोनिकल शेप कंपोस्ट भी अपना सकते हैं, जिसे आप अपने कचरे आसानी से ऊपर से ही डाल सकते हैं। इनके एक ढक्कन नीचे की तरफ भी होते हैं, जहां से आप तैयार हुए खाद को आराम से निकाल सकते हैं। एक अच्छे तरह ढके हुए कंपोस्ट बिन गर्मी को अंदर बढ़ाता है और चूहे से आपका कंपोस्ट को भी बचाता है। कचरे को चुनने के बाद कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जिन्हें हम कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रसोई का कचरा जिनमें सब्जियों और फलों के छिलके होते हैं, सब्जियों की पत्ती, मुरझाए और खराब हुए फल या फिर सब्जी, अंडे के छिलके, कॉफ़ी का वेस्ट जिसे हम कॉफ़ी ग्राउंड्स कहते हैं, कागज़ के फिल्टर, चाय की पत्तियाँ, चाय के वेस्ट और जो हर्बल चाय जिसे हम चिजान भी कहते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें घर के कचरे भी होते हैं, जैसे कि कर्टन, बिना छिपा हुआ कागज़, लकड़ी का जो डस्ट होता है जिसे हम सोडस्ट कहते हैं। आप बगीचे के कचरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें हैं सूखी पत्तियाँ, सूखे फूल, हरे पत्ते जिसे हम टी ट्रिमिंग कहते हैं, कटी हुई घास हम गाजों भी कहते हैं, और जो डालियाँ भी हम डाल सकते हैं, और जो भी फल आपके पेड़ से गिरे हुए हैं वो भी आप डाल सकते हैं। दूसरे और कुछ ऐसी सामान हैं जिन्हें कंपोस्टर में नहीं डालनी चाहिए, वो हैं प्लास्टिक के बैग या प्लास्टिक की जो भी वस्तु होते हैं, प्लास्टिक का धातु जो डिब्बे होते हैं, बोतल, टूटे हुए कांच, तेल या फिर जो भी ग्रीसी पदार्थ होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो मिल्क से बना होता है, और बचे हुए मांस मछली के भोजन नहीं डालते हैं। बचा हुआ खाना, डायपर्स, वाइप्स, सिगरेट के टुकड़े भी नहीं डालते हैं। सिंथेटिक कपड़े, घरेलू पशुओं के एक्सक्रीमेंट जैसे कि बिल्ली और कुत्ते होते हैं, उनके एक्सक्रीमेंट नहीं डालते हैं। न्यूज़पेपर और जो भी मास्क इस्तेमाल किया जा चुका है उसे नहीं डालते हैं। जो भी लकड़ी, ट्रीटेड वुड जैसे हम करते हैं, और घास जिनमें बीज लग चुके हैं, हम उसे नहीं डालते हैं कंपोस्टर में। हम ऑर्गेनिक कचरे को उनकी पानी की मात्रा जिसे हम वाटर कंटेंट कहते हैं, उसके आधार पर कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले होते हैं हरी वस्तुएं जैसे रसोई का कचरा, कटी हुई घास, इनमें आमतौर पर बहुत अधिक नाइट्रोजन और पानी होता है। ऐसे वस्तुएं बहुत जल्दी डिकम्पोज होती हैं, डिकम्पोजिशन के दौरान एक पानी छूटती हैं और बहुत बदबू भी आ सकती हैं। और दूसरी ओर है सूखी हुई ऑर्गेनिक पदार्थ जैसे लकड़ी की डालियाँ, सूखी पत्तियाँ, कागज़, कॉटन, जो कार्बन से भरपूर और पानी की मात्रा में बहुत कम होती हैं, और इसीलिए इस प्रकार के सामग्री को डिकम्पोज होने में थोड़ा अधिक समय लगता है। डिकम्पोजिशन

हरा कचरा, सूखा कचरा, कार्बन और नम कचरा अलग अलग आकारों में। सुझाव दिया जाता है कि 2/3 सूखी सामग्री के साथ आप 1/3 हरी सामग्री मिलाएं। ये सब अच्छे डिकम्पोजिशन के लिए आवश्यक हैं। कचरे को चुनने के बाद जो कचरा आकार में बड़ा और सख्त होता है उसे डिकम्पोजिशन को बेहतर बनाने के लिए काटना या पीसना चाहिए। इसके साथ प्रिय श्रोताओं, मैं आज का प्रशासन समाप्त करती हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप फागे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आपके सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। अगले सप्ते फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।

जी हाँ प्यारे प्यारे श्रोताओं, अपने वादा को मुझे मैं बखूबी याद करता हूँ अपना वादा, और आपके समक्ष आ ही गए हैं। 5:14 हो गए हैं।

0: प्यारे प्यारे श्रोताओं को, संगीत प्रेमियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। आपसे एक और मुलाकात के लिए हम कब से थे बेताब। हम तो आपको चाहते हैं बेहिसाब, क्योंकि हमारे श्रोता जो होते हैं वो तो होते हैं बड़े ही लाजवाब। अंताक्षरी प्रोग्राम में आप लोगों का हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। स्टूडियो में उपस्थित है आप ही का सेवक रोशन, लेकर आप ही का साप्ताहिक मनपसंद कार्यक्रम अंताक्षरी। और आज उषा जी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनकी ओर से हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। नंबर वही है 402-808-5402-8085-402-8085। और आज का जो विषय है बड़ा ही आसान सा है, और आप लोगों को तो पता है ही कि विषय क्या होने वाला है इस सप्ताह। शुक्रवार को पूरा विश्व भर मनाएगा जोश के साथ रक्षाबंधन। इस शुभ अवसर पर हम चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता है पहला गाना वो रक्षाबंधन पर गाएं, भाई या बहन पर, या कोई प्रेरणादायक गाना गाएं जो हमारे मन को मोह ले और हमें उत्साह प्रदान करें। और दूसरा गाना हमारी ओर से, एक प्रश्न हमारी ओर से होगा, चाहे वो शब्द पर हो, म्यूजिक राउंड हो या अंतरा हो, कुछ भी हो सकता है। और आज आपको मौका दिया जाएगा दोनों दो श्रोताओं को ऑन एयर भाग लेने के लिए, यानी प्रोग्राम निराला, आप दोनों के बीच में एक हसीन सा मुकाबला। तो चलिए हम स्वागत करते हैं हमारे पहले श्रोता का, और हमारे दो श्रोता आ गए हैं, हम उनसे बातें करेंगे। चलिए हम पहले श्रोता से बात तो कर लें, देखते हैं कि कौन है इस खेल में भाग लेने के लिए सबसे पहले। हेलो
1: हेलो
2: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते, ये तो विलमय की श्यामा जी हैं, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा सर्दी हो रहा है।
0: हाँ जी, ये तो मौसम का असर है श्यामा जी।

0: राखी अभिनंदन हो, भाई
1: आपको
0: बहन
1: भी
0: खुश रहे।
1: रक्षाबंधन अभिनंदन, आपको और आपके पूरे परिवार को। तो चलिए दूसरी लाइन पर हम देखना चाहेंगे कि कौन विराजमान है। हेलो हेलो हेलो,
2: हेलो, नमस्ते रतन जी। हेलो,
1: नमस्ते, ये तो इंदिरा जी हैं फ्रॉम मौदाबेया, है ना?
2: हाँ
1: ओके, तो इंदिरा जी और श्यामा जी आप दोनों आपस में खेलेंगे। ओके, हम
0: नमस्ते
1: शुरुआत
0: इंदिरा
1: कर
0: जी। नमस्ते श्यामा जी।
1: क्या बात है, ये दोस्ती हम कभी नहीं भूलेंगे।
2: हाँ ठीक है।
1: चलिए श्यामा जी, आप सुनाइए पहला गाना रक्षाबंधन पर, सुनाइए।

0: बहुत सुंदर सा गाना आपने गाया है और आपके लिए तालियां हो जाए। चलिए अनजाना फिल्म का गाना आपने गाया है, बहुत ही सुंदर। तो चलिए इंदिरा जी, रक्षाबंधन पर कोई भी गाना आप गाइए, रक्षाबंधन पर।
1: भैया भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना।
0: जी हाँ, भैया मोरे राखी के बंधन को आप निभाते रहें। चलिए ये हो गया आप दोनों का गाना रक्षाबंधन पर। अब श्यामा जी आपकी बारी है, कोई भी गाना गाइए आप जिस गाने में बंधन शब्द है, कोई भी गाना जिस गाने में बंधन शब्द है। श्यामा जी और आपका समय शुरू होता है अब।
1: ये बंधन तो प्यार का बंधन है,
0: जन्मों
1: का संगम है,
0: सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। और करण अर्जुन फिल्म का गाना आपने गाया है। और आपको मिलते हैं 20 अंक, बनती हैं आप फर्स्ट ऑफ द वीक। धन्यवाद आपको, बाय बाय श्यामा जी,
1: बाय बाय।
0: चलिए इंदिरा जी अब आपकी बारी है। उन्होंने कहा ये बंधन तो प्यार का बंधन है ना, चंदा कब दूर गगन से। तो चलिए आप हमें गगन शब्द पर कोई गाना सुनाइए, गगन शब्द पर। हाँ,
1: नीले गगन के पंछी, नीले गगन के पंछी। ओके,
0: यही
1: और हो सकता
0: ये गाना भी तो है,
1: ये भी तो
0: है। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, है ना। लेकिन आपने खूब अच्छा से अनुमान लगाया। आप भी बनती हैं स्टार ऑफ द वीक इंदिरा जी। बाय बाय
1: बाय बाय।

0: चलिए अब हम मिलते हैं अपने तीसरे श्रोता से। हेलो
1: हेलो बेटा जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, दो आवाजें आई हैं, तो चलिए पहले हम जीवंती जी की आवाज सुन लें। कैसी हैं जीवंती जी? बेबीदेव से आप बात कर रही हैं ना
1: जी?
0: आपका स्वागत है जीवंती जी। दूसरी लाइन पर कौन है, हम मिलना चाहेंगे उनसे। हेलो
2: हेलो, नमस्ते रोशन भाई।
0: नमस्ते उदय भाई।
2: सभी बहनों को, भाइयों को रक्षाबंधन का बहुत सी शुभकामनाएं।
0: बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते
2: नमस्ते
0: नमस्ते जीवंती जी और उदय भाई, आप दोनों लाइन पर हैं अभी, तो चलिए हम आप दोनों से अब अंताक्षरी प्रोग्राम खेलते हैं। एक बहुत मज़ेदार खेल है ये। तो चलिए जीवंती जी, रक्षाबंधन पर भाई या बहन या कोई भी प्रेरणादायक गाना आपके दिमाग में है?

0: बहुत सुंदर सा गाना जीवंती जी ने गाया, मेरे भैया मेरे अनमोल रतन, बहुत अच्छा। और हम उदय भाई की ओर बढ़ेंगे, अब एक गाना आप गाइए।
1: हुए एक एक धागे में भाई बहन का प्यार राखी, धागों का चोहार राखी, धागों का चोहार।
0: क्या बात है उदय भाई, आप तो बहुत भावुक होकर गा रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ,
1: दिल
0: छू जाता है।
2: खुशबू कब दूर पवन,
0: सचमुच खुशबू कब दूर पवन से, बहना कब दूर भाई से, है ना। चलिए अब हम जीवंती जी की ओर बढ़ते हैं, और आपके लिए एक कलाकार हैं, आप उस पर कोई गाना गाइए, और कलाकार का नाम है प्रदीप कुमार साहब। प्रदीप कुमार जी पर कोई भी गाना आप गाइए, प्रदीप कुमार पर। प्रदीप कुमार जी, हाँ, बहुत आसान है आपके लिए तो। प्रदीप कुमार जी पर जीवंती जी, ओ जीवंती जी, कोई बात नहीं जीवंती जी, आपने कोशिश की है तो कोई बात नहीं, फिर से मुलाकात होगी जीवंती जी। ओके, धन्यवाद। उदय भाई,
1: हाँ जी,
0: चलिए प्रदीप कुमार जी पर कोई गाना गा सकते हैं आप।

0: बहुत अच्छा, ये तो जीवंती जी का गाना था, लेकिन आपने ये गाना गा दिया। आपको मिले हैं 5,
1: अगर नहीं उसका पता है तो मैं
0: उनके लिए गा देता,
1: तब तक मैं सोच रहा था।
0: कोई बात नहीं, तो आपको मिले हैं 5 अंक। ओके, 15 अंक, और आपके लिए प्रश्न इस प्रकार है अब। ओके, वो तो जीवंती जी, उनको जवाब देना था, लेकिन आपने उनके बदले में गा दिया। तो अब आपके लिए जो प्रश्न हमने तैयार किया है वो है जैकी श्रॉफ साहब। जैकी श्रॉफ जी पर कोई भी गाना आप गा सकते हैं। जैकी श्रॉफ गाइए।
1: जग्गू दादा।
0: जग्गू दादा, बिल्कुल।
1: उतना याद नहीं है।
0: ओ लला, कोई बात नहीं। उदय भाई, ये गाना तो आपको पता है ना?

0: हीरो है, आप सचमुच हीरो है भाई उदय भाई, धन्यवाद, हमारी मुलाकात और होगी बाद में, धन्यवाद।
1: सभी को रक्षाबंधन अभिनंदन,
0: रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को, धन्यवाद।

0: जी हाँ, ममता के मंदिर की मूरत। चलिए अब हम मुलाकात करेंगे दो श्रोताओं से। पहली आवाज़ कौन सी है? हेलो
1: जी, मैं शीला हूँ, बेलगोज से।
0: शीला जी, बेलगोज से आपका स्वागत है। शीला जी, पहली बार इस प्रोग्राम में? कई
1: बहुत
0: बार आपने
1: सप्ताह
0: हर सप्ताह
1: नहीं, बहुत दिन हो गए।
0: बहुत दिन हो गए। ओके शीला जी, आपका स्वागत है। और दूसरी लाइन पर कौन इंतज़ार कर रहा है? हेलो
2: हेलो रोशन भाई, मैं गिरीश। हेलो थोड़ा
0: अरे
2: से।
0: भाई गिरीश जी, कैसे हैं आप? ठीक?
2: बस ठीक है, थोड़ा थोड़ा
0: थोड़ा थोड़ा
2: चल
0: ठीक
2: रहा
0: है
2: है।
0: भाई गिरीश जी, द गोल्डन वॉइस। तो
2: यस,
0: चलिए
2: थैंक यू।
0: शीला जी और गिरीश भाई दोनों आपस में मुकाबला करेंगे। अब हम बढ़ेंगे शीला जी की ओर। और शीला जी, आप पहला गाना गाइए रक्षाबंधन पर।
1: रखिया बंधा लो भैया, सावन आई, जियो तुला को बड़ी सहो, रखिया।

0: बहुत अच्छा, आपने रक्षाबंधन पर एक गाना गाया। अब गिरीश भाई की ओर बढ़ते हैं। गिरीश भाई, ओवर टू यू नाउ, कोई भी गाना रक्षाबंधन पर गाइए।
1: ओके, मैं ये बंधन तो का गाना फिर से गा सकता हूँ?
0: कोई बात नहीं, जैसे आप गाना चाहें।
1: सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से,

0: जी हाँ बिल्कुल, ये शामा जी ने गा लिया था, लेकिन आपने अपना पहला गाना इसे चुना, बहुत सुंदर सा गाना आपने गाया है, बहुत धन्यवाद गिरीश भाई। अब बढ़ते हैं शीला जी की ओर। ओके शीला जी,
1: जी
0: ओके, आपको गाना पड़ेगा गायक कलाकार कुमार सानू पर कोई भी गाना, कुमार सानू जी पर कोई भी गाना। शीला जी, बहुत आसान सा सवाल है ये तो। गाइए।
1: भूल गई।
0: ओके शीला जी, आप नहीं गा पाई तो कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की, बहुत धन्यवाद आपको शीला जी। ओके बाय। गिरीश भाई, शीला जी नहीं गा पाए कुमार सानू जी पर, तो आप कोई कुमार सानू जी का गाना गा सकते हैं।

0: हम करें, जाने मन जाने जा, दिल ने दी ये सदा।
1: जी हाँ, विश्वासघात फिल्म का गाना है और शीला जी नहीं गा पाई। आपको मिले हैं 5 अंक, यानी 15 अंक
0: थैंक यू।
1: आपको मिल गए हैं। अब आपको गाना पड़ेगा, आपकी बारी है अब। ये तो शीला जी की बारी थी। ओके, किसी को 25 अंक अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। देखते हैं आपको पता चलेगा या नहीं। तो चलिए, साधना सरगम जी पर कोई गाना गाइए गिरीश भाई।
0: साधना संगम पर,
1: साधना सरगम जी पर, हाँ गाइए प्लीज।
0: ओके।

0: क्या बात है गिरीश भाई, आपको मिले हैं पूरे 25 अंक। आपका नाम सबसे ऊपर है और आप यूं ही गाते रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें, ईश्वर आपकी सदैव
1: भाई
0: रक्षा
1: जी, मैं
0: करें।
1: एक आपसे एक
0: हाँ जी,
1: फरमाइश, यानी कैसे कैसे कहूँगा,
0: अच्छा,
1: जो वो दोस्त मीनाक्षी जो भाग लेते हैं ना,
0: हाँ जी, हाँ बिल्कुल।
1: तो उनकी उनकी आवाज़ जो है बहुत बहुत सुंदर, कविता कृष्णा मूर्ति जैसे है उनकी
0: अरे
1: आवाज़।
0: वाह, क्या बात है,
1: तो
0: क्या कॉम्प्लीमेंट है।
1: और वो नाराज ना होने पर मैं उससे बात कर सकता हूँ?
0: अच्छा, मैं उनसे पूछूंगा पहले। ओके भाई जी,
1: ओके, नो प्रॉब्लम।
0: ओके, धन्यवाद गिरीश भाई, आपका नंबर तो मेरे पास है ही, तो
1: हाँ,
0: आपको
1: उनको दे
0: बताएंगे।
1: देना। ओके,
0: ओके, धन्यवाद
1: थैंक यू भाई,
0: गिरीश,
1: वेलकम,
0: ओके,
1: धन्यवाद,
0: बाय
1: बाय।
0: बाय।

0: हेलो
1: हेलो
2: रोशन जी, नमस्ते।
1: नमस्ते नीला जी।
2: हाँ जी
1: नमस्ते। दूसरी लाइन पर कौन है? हेलो हेलो, दूसरी लाइन पर कौन है? हेलो
2: जी।
1: हाँ नीला जी, हम आपको सुन रहे हैं। नीला जी आपका स्वागत है।
3: हेलो।
1: हाँ जी हेलो, सुबीर सेन भाई।
3: मैं सुबीर हूँ।
1: हाँ जी सुबीर सेन भाई, तो एक तरफ नीला जी, दूसरी तरफ सुबीर सेन भाई। किसका रेडियो सेट इतनी ऊंची आवाज में? नमस्कार।
3: नमस्ते। नमस्कार सभी।
1: ओके नीला जी एक तरफ, दूसरी तरफ सुबीर भाई। ओके नीला जी आप शुरू कीजिए आपका पहला।

0: लगाना
1: हाँ
0: रक्षाबंधन पर, गाइए नीला जी।
1: अच्छा। डाली पर भाई बहन का प्यार राखी, धागों का चोहार राखी, धागों का चोहार।
0: बिल्कुल, राखी धागों का त्योहार, बहुत अच्छा। अब हम बढ़ेंगे सुबीर भाई की ओर। सुबीर
1: ओके
0: सेन भाई, कोई भी गाना रक्षाबंधन पर या कोई प्रेरणादायक गाना ही गा सकते हैं आप,
1: ओके
0: गाइए।
1: ओके

0: बहना।
1: बहुत सुंदर सा गाना सुबीर भाई ने गाया और नीला जी ने भी सुंदर गाना गाया। ओके नीला जी, आपकी बारी अब। चलिए नीला जी, इस शब्द का आप प्रयोग करें और कोई भी गाना गाइए, और जो शब्द है वो है चंदा।
2: चंदा?
1: हाँ जी, चंदा का कोई, चंदा शब्द पर कोई भी गाना आप गाइए।
2: चंदा

0: क्या बात है नीरा जी, आप ही बनती हैं स्टार ऑफ द वीक। बहुत धन्यवाद नीरा जी,
1: थैंक यू,
0: बाय बाय।
1: बाय।
0: चलिए सुबीर सेन भाई, अब आपकी बारी है और आपको जो शब्द हम देंगे अभी वो है आसमान।
2: आसमान
0: आसमान पर कोई भी गाना।
2: आसमां के नीचे, अरे आसमां के नीचे, नहीं आए
0: पीछे
2: पीछे प्यार का
0: का जहान।
2: जहां, दे चलो
0: हाँ जी, और जुआ सैफ
2: कदम
0: का
2: के
0: गाना
2: निशान
0: बना के चले। हाँ जी, आसमां के नीचे। और आपका जो जवाब है एकदम सही है नीला जी, और सुबीर सेन भाई दोनों को बहुत बधाई। फिर से मुलाकात होगी अगले सप्ताह।
2: थैंक यू
0: धन्यवाद,
2: रोशन भाई।
0: बाय बाय।
2: राखी अभिनंदन,
0: राखी अभिनंदन आप दोनों को।
2: ओके।

0: फूल जैसे। अब देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो
1: हेलो
2: हेलो
0: हेलो। हाँ जी, दो आवाजें आ रही हैं। चलिए हम पहले महिला को सुनते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्ते रोशन जी।
0: नमस्ते, ये तो मीनाक्षी जी है फ्रॉम बुबा से।
2: कंग्रेचुलेशन, आपका यस्टरडे प्रोग्राम वाज रियली अमेजिंग।
0: ओ धन्यवाद आपको मीनाक्षी जी, आपने देखा प्रोग्राम?
2: हाँ जी, बहुत अच्छा था।
0: हाँ जी, पहली सालगिरह रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन का है ना,
2: सभी ने बहुत अच्छा किया।
0: बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। और हम बढ़ते हैं दूसरी लाइन पर, कौन है? हेलो
3: हेलो,
0: अली साहब।
3: बिल्कुल सही पहचान आपने।
0: हाँ जी, आप तो महफूज हैं इस कालिए में
3: फिर भी सुकून और पुरसुकून भी।
0: बिल्कुल, तो मीनाक्षी जी एक तरफ और अली साहब दूसरी तरफ।
2: जी हाँ।
0: ओके मीनाक्षी जी, पहला गाना रक्षाबंधन पर या कोई भी अगर मोटिवेशनल सॉन्ग हो आपके पास? तो
2: ये मेरी फेवरेट, मेरी भैया रोशन के लिए है।
0: अच्छा, गाइए बहना, गाइए प्लीज, गाइए।
2: गुड़िया जैसी बहना है भैया का ये कहना है, जीत रहे भैया मेरा, भाई तुझका

0: क्या बात, बहुत सुंदर सा गाना।
1: आपका नाम मेरे भैया से ही है, रोशन आप हैं।
0: अच्छा,
1: रोशन जी उसका।
0: अरे क्या बात है, ये तो
1: और
0: बहुत।
1: मेरी मेरी जो उसकी पत्नी है उसका नाम है उषा।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। तो चलिए, आपने मेरी अदालत फिल्म का गाना गाया है, बहुत ही सुंदर। रजनीकांत उस फिल्म में थी, थे ना। ओके, ये रहा पहला गाना, ये सुदास जी का। अब हम बढ़ते हैं अली जनाब की ओर। अली जनाब
2: जी,
0: यहीं पर हैं आप?
2: मैं तो यहाँ हाजिर हूँ।
0: बिल्कुल हाजिर हैं आप, तो कोई भी गाना गाइए, भाई बहन पर, रक्षाबंधन पर, या कोई मोटिवेशनल सॉन्ग आपके पास हो तो प्लीज गाइए।
2: बेईमान का ये गाना, ये राखी बंधन है ऐसा,
0: बहुत अच्छा गाइए।
2: ये राखी बंधन है ऐसा, जैसे और पवन का, जैसे और गगन का। ठीक है ना?
0: बहुत ठीक है अली जनाब, क्या बात। तो चलिए, मीनाक्षी जी बहुत अच्छी तरह से खेल रही हैं और अली साहब भी बहुत अच्छी तरह से गा रहे हैं, दोनों को हम बधाई कहेंगे। लेकिन मीनाक्षी जी, आपकी बारी है अब। ओके, तो चलिए, कलाकार के रूप में हम आपको देंगे कलाकार राजीव कपूर। राजीव कपूर पर कोई भी गाना आप गाइए।
1: क्या कहे ना कि गरों में यहाँ मौसम जारों का।
0: बहुत अच्छा, राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गाना, और आपने क्या खूब गाया है, बहुत बधाई हो आपको मीनाक्षी जी।
1: थैंक यू,
0: ऐसे ही आप गाती रहें, धन्यवाद।
1: ओके, बाय बाय
0: बाय। तो ये थी मीनाक्षी जी, अब अली साहब आपकी बारी है अब, और आपका जो कलाकार हम आपको देने वाले हैं वो है संजय खान। संजय खान,
2: खान,
0: हाँ जी, कोई भी गाना संजय खान साहब पर।
2: आलू की बाजी बैगन का बरका,
0: अरे वाह,
2: बोलो जी क्या कहोगे। ठीक है ना?
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया रही जनाब, आप भी कम नहीं निकले, आप तो माहिर हैं।
2: और फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बेईमान में ये तो 7 अवार्ड मिला है।
0: हाँ, मनोज कुमार साहब को बेस्ट एक्टर का अवार्ड ना,
2: मनोज कुमार राखी बेस्ट टीम, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट डायरेक्टर,
0: क्या बात है,
2: बेस्ट सिंगर।
0: लेकिन आप
2: की बात है।
0: हाँ, लेकिन आप बेईमान मत बने, ईमानदार बने।
2: भाई तो ईमानदार बेईमान कैसे आपके साथ बात करूंगा।
0: ओके भाई अली जनाब, बहुत खुश हुआ मैं आपसे बात करके, धन्यवाद आपको,
2: धन्यवाद,
0: बाय।

0: दिल ये दुआएं लाया कि हमारे जो श्रोतागण हैं हमेशा खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। और मुस्कुराते हुए कौन आ गए हैं हमारी लाइन पर, चलिए।
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते भाई रोशन जी, मैं बोसों से बोल रही हूँ, सुविता।
0: सुविता जी आपका स्वागत है, बोसों से आप बात कर रही हैं, धन्यवाद आप आए इस प्रोग्राम में। चलिए दूसरी
1: बंधन तो सबको अभिनंदन भाई जी,
0: धन्यवाद आपको, आपको भी अभिनंदन हो रक्षाबंधन। अब देखते हैं दूसरी लाइन पर कौन है। हेलो
2: हेलो
0: नमस्ते जी।
2: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते।
2: नमस्ते भाई जी, मैं हूँ ज्योति बॉम्बू से।
0: ज्योति जी बॉम्बू से, अच्छा वेस्टर्न रीजन में एक तो बोसोंज की सुविता जी है और दूसरी बॉम्बू की ज्योति जी है।
1: ज्योति जी नमस्ते, मैं बोसों से बोल रही हूँ।
2: बहन जी नमस्ते आपको जी, मैं बहुत शुभकामनाएं राखी के भेज रही हूँ सभी सुनने वालों के लिए।
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: चलिए सुविता जी,
2: राखी के अवसर पर
0: अच्छा झटपट फटाफट कोई गाना गाइए रक्षाबंधन पर, गाइए और रेडियो सेट को जरा धीमी कर दें प्लीज, गाइए
3: सबको बहना मिले,
0: गाइए सुविता जी। आपका रेडियो सेट बहुत
1: भाई जी,
0: जी आपका रेडियो सेट बहुत जोर से
1: नहीं नहीं नहीं नहीं बुता दिया नहीं।
0: आपने
1: जो गाना गाऊं

बहुत सुंदर सा गाना सुविता जी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं ज्योति जी की ओर। ज्योति जी, ज्योति फैलाइए।

0: सुंदर सा गाना ज्योति जी ने गाया, ये गाना श्यामा जी ने गा लिया था लेकिन आपने गाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन पहला गाना है ना, बहुत सुंदर। अब हम बढ़ेंगे सुविता जी की ओर। ओके सुविता जी, अच्छा जो गाना आपको जो गाना गाना है वो हेमलता जी पर, हेमलता जी पर कोई भी गाना आप गाइए।
1: हेमलता जी पर,
0: हाँ कोई भी गाना, बहुत आसान है। हेमलता, हेम, ओ कोई बात नहीं सुविता जी, आपने कोशिश की है, बहुत धन्यवाद आपको। ओके फिर से मुलाकात होगी, बाय बाय।
1: शुभ रात्रि,
0: शुभ रात्रि आपको भी, बाय। चलिए हम ज्योति जी की ओर बढ़ेंगे अब। ज्योति जी,
2: हेलो।
0: हाँ ज्योति जी, ओके हाँ ज्योति जी, हाँ तो हेमलता जी पर सुविता जी नहीं गा पाई है तो आप गाइए हेमलता जी पर।
2: हेमलता के कोई भी गाने,
0: हाँ कोई भी गाना हेमलता जी पर गाइए।
2: पूजन करो माता लक्ष्मी का, निश दिन मैया के द्वार सोना बरसे रे, ओ सोना बरसे रे। पूजन करो माता लक्ष्मी।
0: बहुत सुंदर, और आपको मिले हैं 5 अंक क्योंकि सुविता जी नहीं गा पाई थी, तो अभी 15 अंक हैं आपके पास। अब आपकी बारी है, आपको एक और गाना गाना पड़ेगा, और जो हम आपको कलाकार देंगे वो एक गायक कलाकार है और उसका नाम है शैलेंद्र सिंह।
2: शैलेंद्र सिंह,
0: हाँ जी कोई भी गाना।

0: ने तुझको मुझको आशिकी शायरी आ गई।
1: बहुत सुंदर ज्योति जी, आपको मिले हैं पूरे 25 अंक।
0: धन्यवाद।
1: केवल आप और गिरीश भाई को मिले हैं 25 अंक इस प्रोग्राम में। बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। बाय।
0: धन्यवाद। बाय
1: बाय।

0: खोना नहीं, ये बहुत ही सुनहरे लम्हे अंताक्षरी के। हेलो
1: हेलो हेलो अंताक्षरी गाना।
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते। हेलो हाँ जी नमस्ते।
1: नलिनी कैट्रोबोन से।
0: क्या नाम है आपका?
1: नलिनी।
0: नलिनी जी कैट्रोबोन से। ओके, आपका स्वागत है नलिनी जी। और दूसरी लाइन पर कौन है?
1: लता का गाना, लेकिन पता नहीं।
0: ये तो हो गया, अब दूसरा गाना हम आपसे गवाएंगे अभी। ओके चलिए, अब हम बढ़ेंगे दूसरी लाइन पर। हेलो

0: हेलो
1: हाँ जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, मैं हूँ राधा मोचिदा से। जी
1: राधा जी, मोचिदा से आपका स्वागत है। राधा जी,
0: हाँ, मेकअप से ट्राई कर रही हूँ,
1: हाँ क्या
0: लाइन में नहीं लग
1: करें,
0: रहा है।
1: चलिए दूसरी लाइन पर देखते हैं कौन है। हेलो,
0: हेलो, मैं राधा।
1: हाँ राधा तो आप हैं राधा जी, और दूसरी लाइन
0: तो
1: पर कौन
0: अभी
1: है।
0: एक एक
1: हेलो,
0: हेमलता ने बात की ना।
1: नहीं अब हम दूसरी दूसरी दूसरा गाना हम आपसे गवाएंगे अभी।
0: ओके
1: ओके हेलो,
0: ओके हेलो,
1: हाँ जो हाँ जी नमस्ते,
0: नमस्ते जी।
1: क्या नाम है आपका।
0: जी मैं कीटों से निशा जी बोल रही
1: ओ
0: हूँ।
1: निशा जी, क्या बात है, आप ही से मुलाकात हुई थी इस दिन के दौरान, है ना। तो आप
0: जी
1: आ गई हैं तो आपका स्वागत है। तो एक और राधा जी
0: धन्यवाद।
1: हैं मोचिदा से, दूसरी और पीतों से निशा जी हैं। चलिए हम राधा जी से मांग करेंगे कि रक्षाबंधन पर कोई भी गाना गाइए आप। राधा जी
0: जी मैं गा रही हूँ,
1: गाइए।
0: जैसे सुभद्रा और किशन का, जैसे बद्रिया और पवन का, जैसे चंदा और गगन का, ये रक्षा बंधन है ऐसा, ये रक्षा बंधन है ऐसा।
1: जी हाँ, बहुत सुंदर। अब निशा जी को हम सुनेंगे। रक्षाबंधन पर कोई भी गाना है आपके पास निशा जी,
0: नहीं, गाना मत गाइए प्लीज
1: कोई भी गाना
0: जी।
1: गाइए।
0: रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, ओ राखी बनवा ले मेरे वीर, ओ राखी बनवा ले मेरे वीर।
1: जी हाँ, आपका जो वीरा है वो हमेशा आपसे राखी बंधवाएंगे। बहुत
0: धन्यवाद।
1: अच्छा, तो आप काटिएगा मत। अब राधा जी की बारी है। राधा
0: जी
1: जी, आपके लिए जो शब्द हमने तैयार किया है वो है शब्द धरती। कोई भी गाना धरती पर।
0: धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो ऐसा लगता है सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान।
1: बहुत सुंदर राधा जी, बधाई हो आपको, और
0: धन्यवाद,
1: मिलेंगी अगले सप्ताह। बाय बाय बाय,
0: बाय, शुभ संध्या
1: शुभ संध्या आपको राधा जी। निशा जी, अब
0: जी।
1: आपकी बारी है, और आपके लिए जो शब्द है वो है हंसते, क्योंकि आप हंसती तो बहुत हैं। गाइए।
0: हंसते कट जाए रसते, जिंदगी यूं ही चलती रही, खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया
1: बिल्कुल
0: चाहे बदलते रहे।
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सा गाना आपने गाया है। फिल्म खून भरी मांग का गाना है ना। और आप को हम कहेंगे बहुत बहुत बधाई हो। आप ऐसे ही भाग लेती रहें, और पूरे परिवार को हम कहेंगे रक्षाबंधन अभिनंदन आपको।
0: धन्यवाद, आपको
1: धन्यवाद।
0: भी
1: ओके,
0: शुभ रात्रि।
1: शुभ रात्रि।

0: जी हाँ, मैं आशिक तो नहीं, लेकिन आपसे बात करके प्रोग्राम में आप भाग लेते हैं, मुझे आशिकी हो जाती है कभी कभार। अब चलिए, अब हम मुलाकात करेंगे दो श्रोताओं से। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते।
0: हाँ जी,
2: हेलो
0: हेलो। हाँ
2: नमस्ते
0: जी,
2: रोशन जी।
0: नमस्ते अनीता जी, कैसी हैं आप?
2: अच्छी हूँ।
0: ओके, दूसरी लाइन पर कौन है? हेलो।
1: हेलो, नमस्ते रोशन भाई। मैं हूँ
0: नमस्ते
1: शोभा
0: बहन,
1: पॉपलेमुस से।
0: पोपले मुझसे। शोभा बहन, आपका स्वागत है।
1: जी हाँ, नमस्ते
0: चलिए।
1: अनीता जी।
2: नमस्ते शोभा जी।
0: ओके, वेरी गुड। तो चलिए, अब हम बढ़ेंगे आप की ओर। और आप हैं अनीता जी, कोई भी गाना गाइए। आप
2: जी
0: गाइए कोई भी गाना।
2: बहना ने भाई के कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार

0: बंधा
1: क्या बात है अनीता जी,
0: है।
1: बहुत सुंदर। और हम बढ़ेंगे अब किसकी ओर, क्या नाम है आपका? शोभाज बहन जी।
0: सुबह।

0: शुभा
1: शोभा जी, गाइए आपका गाना जो रक्षाबंधन पर आधारित है, गाइए।
0: क्योंकि मेरे भाई नहीं है ना, तो मैं ये गाना गाती हूँ।
1: ओके,
0: मैं बहुत पसंद करती हूँ ये गाने के, क्योंकि
1: गाइए।
0: किसी और ने गा दिया है तो
1: कोई बात नहीं,
0: मुझे
1: कोई बात नहीं,
0: फुर्सत।
1: आप गा
0: जी
1: सकती
0: हाँ
1: हैं, आज छूट है, गाइए।
0: जी हाँ। चंदा रे मेरे भैया से कहना, बहना या दू करे, यही है भैया।
1: बहुत सुंदर शोभा जी, आप तो भावुक हो गई, आंख से आंसू टपक पड़े, क्योंकि
0: जी
1: भाई
0: हाँ,
1: जिंदा नहीं है
0: मेरे भाई
1: अभी।
0: नहीं, मेरे
1: हाँ
0: एक ही
1: जी,
0: भाई थी, वो
1: एक ही
0: चली गई।
1: भाई
0: लेकिन जब
1: था।
0: ये राखी के त्योहार आते, मैं बहुत रोती थी,
1: क्या
0: बहुत
1: करें, ये
0: रोती।
1: ईश्वर का क्या कहें, उनकी लीला है, उनका न्याय है, उनके सामने हम क्या कर सकते हैं, हम तो नतमस्तक है ना
0: क्यों
1: शोभा जी।
0: भगवान ऐसे करते हैं? जिनके एक ही भाई है तो वो चल छीन लेते हैं मुझसे।
1: क्या करें,
0: मुझे मालूम नहीं
1: ये उनकी लीला है, हम तो वी आर जस्ट मियर मोर्टल्स, हम तो मृत्यु लोक में आए हैं, यहाँ पर आए हैं तो हमें जाना भी पड़ेगा,
0: और जिसके
1: ये तो
0: पास है
1: अंतिम
0: दो
1: सत्य
0: तीन
1: है।
0: चार भाई है, पांच छह भाई है, क्योंकि बातचीत
1: हाँ,
0: नहीं करते हैं
1: ये
0: भाई
1: बात
0: बहन
1: तो
0: में,
1: है,
0: ये
1: बिल्कुल
0: ठीक नहीं है भैया।
1: नहीं, लेकिन हम कुछ नहीं कह पाएंगे इस पर, लेकिन आपसे हम सहमत हैं, लेकिन क्या करें, और आपसे हम आपको सहानुभूति प्रस्तुत कर रहे हैं। ओके अनीता जी, अब आपकी बारी है, और आपको हम
0: जी
1: कहेंगे राजेश खन्ना जी पर कोई गाना गाइए प्लीज।

0: क्या बात है नीता जी, बहुत धन्यवाद, मुलाकात होगी अगले सप्ताह। ओके
1: बाय
0: बाय
1: बाय।
0: चलिए अब
1: शोभा जी,
0: अब आपकी बारी है, आपको गाना पड़ेगा श्री राज कपूर साहब पर कोई गाना।
2: मेरा जिद्दा है जापानी,
0: हाँ
2: जरूर हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी फिर भी मैं हूँ हिंदुस्तानी, यही गाना
0: है। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। तो अनीता जी, शोभा जी, ऐसे ही आप गाती रहें, मुस्कुराते
1: रहें।
0: बाय। ओके धन्यवाद। तो चलिए अनीता जी और शोभा जी के साथ ही आज का ये बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम अंताक्षरी का समाप्त हो गया, और आपको हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने क्या साथ दिया, और ऐसे ही आप साथ देते रहें। हमारा वादा है आपसे कि हम ऐसे ही प्रोग्राम आपके लिए लाएंगे रेडियो मॉरिशस पर, रेडियो मस्ती पर, या चाहे हो रेडियो मनोरंजन पर। आपके भरपूर मनोरंजन के लिए हम यहाँ पर सदैव तत्पर हैं, और आपकी सेवा में हम हमेशा उपस्थित होंगे। आप खुश रहें, लोगों को भी खुश रखें, सारे परिवार को और पूरे मॉरिशस भर को हम कहेंगे रक्षाबंधन अभिनंदन। भाई बहन का प्यार जो होता है वो अमर होता है, हर हाल में भाई बहन की रक्षा करता है, और बहन हर हाल में भाई के लिए प्रार्थना करती है। आप भी पूरे मॉरिशस भर में जो लोग हैं यहां पर, उनकी सही सलामती के लिए अवश्य ईश्वर से प्रार्थना करें। केवल अपने बारे में क्या सोचना, ये कोई जिंदगी है, दूसरों के बारे में सोच के तो देखो। इसी बात पर आपसे हम अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि आपको।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सभी को हमारा नमस्कार। शाम के ठीक 6 बजे हैं। पेश है आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। फ्लाक के सेनेरू जगन्नाथ अस्पताल में नई स्ट्रोक यूनिट शुरू की गई है। कॉन्डोस के विक्टोरिया अस्पताल और पॉम्पलोमिसिस के एसएसओएन अस्पतालों के बाद अब देश के पूर्वी क्षेत्र में भी स्ट्रोक के मरीजों को जल्द विशेष इलाज मिल सकेगा। समय पर उपचार और बेहतर देखभाल के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। मॉरिशस के जंगलों और प्राकृतिक संपदा की बेहतर सुरक्षा के लिए नया फॉरेस्ट एंड रिजर्व्स बिल तैयार किया जा रहा है। नए कानून में जंगलों, नदियों और पहाड़ी क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के साथ खेती में पेड़ों को बढ़ावा देने और जंगलों से मिलने वाले जैविक पदार्थों के बेहतर इस्तेमाल का भी प्रावधान है। और विदेश में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक अस्पताल में लगी भीषण आग में कम से कम 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार एयर कंडीशनिंग में लगी आग और ऑक्सीजन की नलियों के कारण तेजी से फैली तत्काल जांच के आदेश दिए गए हैं। और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले ये खबर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई बाढ़ के बाद सैकड़ों यात्री लापता हैं, जिनमें कम से कम 291 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार लापता लोगों की प्रारंभिक सूची में भारत के 100 से ज़्यादा पर्यटक और ब्रिटेन के 12 पर्यटक शामिल हैं। अब तक कम से कम 17 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सड़कों, पुलों, संचार व्यवस्था और जल से चलने वाली बिजली उत्पादन के ढांचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। रासुआ और नुआकोट सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। और मॉरिशस में स्ट्रोक यानी मस्तिष्काघात के मरीजों के इलाज की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। विक्टोरिया अस्पताल, कॉन्डोस और एसएसओएन अस्पताल पॉम्पलोमिसिस के बाद अब सेनेरू जगन्नाथ हॉस्पिटल में भी स्ट्रोक यूनिट शुरू की गई हैं। फ्लाक में आज सुबह इस विशेष इकाई का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे। इस स्ट्रोक यूनिट का उद्देश्य पूर्वी क्षेत्र के मरीजों को जल्द से जल्द आवश्यक इलाज उपलब्ध कराना है। ज्यादा जानकारी रजनी बिकर के साथ।
2: जब एक स्ट्रोक होता है तो स्ट्रोक में इस रक्त प्रवाह में रुकावट होती है। ये एक आपातकालीन चिकित्सा स्थिति है जब हर एक मिनट जरूरी है। स्पेशलिस्ट वालों के लिए एक स्ट्रोक होने पर जल्द से जल्द हस्तक्षेप करना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर दिनेश रितु ने कहा,

0: blé. Ça veut dire l'armée pour aller là. Et dans ce côté des épaules, ce artère principal qui prend de ce l'armée. Mais nous ne faisons ce travail nécessaire là, nous ne faisons ce pontage. Tout dort bien, ce l'armée bien.
1: मरीज को जल्द से जल्द सेवा प्रदान करने से उसके दिमाग में होने वाले नुकसानों को सीमित किया जा सकता है और इनसे जुड़ी परेशानियों को भी। बिना समय गवाए कदम उठाने की भारी जरूरत होती है। अब से देश के पूर्वी इलाके के मरीजों के लिए सनेरु जगन्नाथ अस्पताल में एक इकाई इसके लिए समर्पित, विक्टोरिया अस्पताल में और हाल में SSRN अस्पताल में स्ट्रोक यूनिट्स कायम किए जाने के बाद से सेवाओं के विकेंद्रीकरण में एक नया चरण, जहां पर काफी प्रगति नोट की गई है।
2: Pourcentage death as a result of stroke là-bas dans sa région-là, il baissait drastiquement. Là, déjà, nous pouvons faire dire en plaque ici, il y en a presque 4 lits en tout qui nous gagnent pour stroke patients.
1: विशेष रूप से मरीज की देखभाल करते हुए समय की बर्बादी कम की जा सकती है और खासकर स्ट्रोक के शिकार मरीज को बेहतर रूप से स्वस्थ होने के बेहतरीन मौके भी मिल सकते हैं।
3: इस उद्घाटन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री से पत्रकारों ने उनकी सर्जरी को लेकर उठे विवाद पर भी सवाल किए। उनकी सर्जरी एक निजी क्षेत्र के डॉक्टर ने सरकारी अस्पताल में की थी। हालांकि अनिल बेचू ने इस मामले पर विस्तार से जवाब देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में पहले ही अपनी सफाई दे चुके हैं और राष्ट्रसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर फिर से इस पर जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोई व्यक्ति चाहे कुछ भी करे, उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है और आखिरकार वे एक इंसान हैं। उनको सुनते हैं।
2: Si moi je parle dans privé, moi je vais faire l'opération, de là à te pas quoi dans l'hôpital. Si moi je parle en dehors, je vais en tenir trop beaucoup l'argent. Et notre nous, côté qui côté pour aller, qui côté pas pour aller. Moi ni même, comme n'importe qui sont là. Moi aussi, mon souffrance, moi aussi, mon malade, moi aussi, mon l'âge est avancé, mon besoin, mon bon traitement. C'est tout qui m'a bougé, je ne vais pas faire rien qui est illégal.
3: एक नया कानून फॉरेस्ट एंड रिजर्व्स बिल तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हमारे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को आधुनिक बनाना है। ये ध्यान देने वाली बात है कि वन क्षेत्र में काफ़ी कमी आई है और अब केवल 2% मूल वन ही बचे हैं। ये महत्वाकांक्षी कानून जंगलों, नदियों और प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा को और मजबूत करने की नींव रखेगा। इसमें पहाड़ी ढलानों पर स्थित संरक्षित क्षेत्र भी शामिल हैं। ज्यादा जानकारी रजनी बिकर के साथ।
1: फिलॉसफी हमारे प्राकृतिक विरासत का एक अहम स्थल, जंगलों के संरक्षण को लेकर चिंता हो चली।
4: La forêt ici c'est une plantation de pin. Tu m'as dit auparavant c'est pour produire du bois. Il y a un direct économique bénéfique de la forêt. Mais avec le temps, nous avons réalisé qu'il y a une fonction environnementale avec la biodiversité qui est la forêt. Mais il y a beaucoup plus.
1: Mauritius mein keval 42,000 hectares de zameen par jungle hai. Jungleon ki kam hoti sankhya aur zameenon ki bigadti sthiti ko lekar chintajanak aankde samne aa rahe hain. अभी एक नए कानून फॉरेस्ट एंड रिजर्व्स बिल की तैयारी चल रही है। कृषि उद्योग मंत्रालय के एक्टिंग डिप्टी कंजर्वेटर जायद झुमका ने कहा,
4: La forêt pour l'instant nous considérons comme tout un area qui plus que 0.5 hectare qui a une canopée de plus que 10% ou ça une vegetation cover de 25%. Mais sa définition là exclut un terrain agricole, un terrain résidentiel.
1: इस विधेयक का एक प्रमुख मुद्दा है कृषि फॉरेस्ट्री में जमीनों की कटनी की समस्या से निपटने के खिलाफ संघर्ष और बायोडायवर्सिटी के हक में कदम उठाया जाना।
4: Les capables agriculteurs, soit ban légumes, ban culture vivrière, ensemble avec ban zob, ou ça même avec ban l'élevage, quand nous mettons ban animaux aussi avec ban zob. Et ça, il y a un aspect bénéfique déjà, l'aide aux protections de la TLRM. Il y a une autre forme qui amène une autre forme de rentabilité pour ban planteur. Parce que si, par exemple, si je mets ban zob fruitier ensemble avec ban légumes aussi, je gagne le 30 alternatif.
1: इसके अलावा शहरी इलाकों में हरे भरे स्थल कायम करने की भी एक अहम चुनौती है। इसके साथ ही फॉरेस्ट एंड रिजर्व बिल जंगलों को अधिक स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने का भी इरादा रखा जाता है, जैसे कि बायोमास स्रोत की तरह।
4: And the one façon pour adresser ce problème là, diminuer nos carbon footprint, c'est comment dire, servir ce qu'on appelle une forêt biomasse d'une façon soutenable. C'est-à-dire nous produire un produit du bois et les autres biomasse.

0: commencé puis maintenant forêt que nous cave à briller demain ce dire pour produire d'énergie quand nous coupe maintenant forêt ou ça quand nous même quand nous fait ban élagage tout ça nous fait d'une façon soutenable.
1: साथ ही नदियों और नेचुरल रिजर्व्स की रक्षा पर भी खास ध्यान केंद्रित, यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों पर स्थित ढलानों पर भी एक फॉरेस्ट्री इन्वेंटरी कायम किए जाने के अलावा विधेयक में अलग अलग प्रकार के रिजर्व

0: Au niveau du CV, de l'espace de forêt qu'on a, des espèces endémiques qu'on retrouve dans chaque forêt, on a encore un trou. Donc il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail scientifique à faire pour restaurer et pour pouvoir comprendre notre forêt qui est unique au monde. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même un niveau d'endémicité extrêmement élevé. Je pense que la base de cette loi qui va être intéressante, c'est du science to policy. Donc intégrer les données scientifiques, les données environnementales pour la gestion de nos forêts, réorganiser le système des bois et forêts, et en impliquant naturellement la société civile, les jeunes, le secteur privé et les chercheurs, je pense qu'on arrivera à faire vraiment un bon mélange pour que cette loi-là soit efficace.
1: एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में जहां पर्यावरण का संरक्षण एक राष्ट्रीय हित बन गया है, नए कानून में संचालन की कई इकाइयों की स्थापना का भी प्रावधान है, जिसमें फॉरेस्ट्री परिषद और सभी के हितों के वास्ते कदम को अमल में लाना तथा सहयोग बढ़ाने के लिए एक दफ्तर कायम करना शामिल है।
2: मॉरिशस और सेशल्स के बीच संसदीय सहयोग को लेकर आज प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम और सेशल्स की नेशनल असेंबली की स्पीकर असागेल अनेस्ता के बीच मुलाकात हुई। ये भेंट सेशल्स के एक प्रतिनिधिमंडल के मॉरिशस दौरे के तहत हुई। दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से दोनों देशों की संसदीय संस्थाओं के कामकाज और उनके संचालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। अफ्रीकी विकास बैंक ने मॉरिशस से टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा फाइनेंसिंग जुटाने की मांग की है। अपने कंट्री फोकस रिपोर्ट 2026 में अफ्रीकी विकास बैंक ने 2027 में मॉरिशस की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 3.8% होने का अनुमान लगाया है। इसके लिए बैंक ने कई संरचनात्मक चुनौतियों से निपटने की जरूरत बताई है। साथ ही सरकारी फाइनेंसिंग के बेहतर संचालन और सरकार तथा निजी क्षेत्र के बीच ज्यादा साझेदारी की भी सिफारिश की गई है। मामी गवातुमांग की सशर्त जमानत की अर्जी पर सुनवाई आज बेल एंड रिमांड कोर्ट में जारी रही। 4 घंटे से ज्यादा समय तक फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के कार्यवाहक जांच निदेशक से वकील कुशल लोबिन, जो मडागास्कर के इस अरबपति के वकील हैं, ने सवाल किए। पूरी सुनवाई के दौरान वकील कुशल लोबिन ने एक ही बात पर जोर दिया। उनका कहना था कि मामी गवातुमांग को गिरफ्तार किए जाने के बाद से 10 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन जांच के दौरान अधिकारियों द्वारा जुटाई गई जानकारी के बारे में उनसे कभी आमना सामना पूछताछ नहीं की गई। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर निशान मोहिपत को कल इंटरमीडिएट कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही है। अनुचित व्यवहार के मामले में उन्हें ये सजा सुनाई गई है। ये सजा ऐसे समय हुई है जब डॉक्टर पहले से ही अन्य मामलों को लेकर चर्चा में हैं। इनमें मजिस्ट्रेट वर्षा बिफेन दुर्गा की लिपोसक्शन के बाद हुई मौत का मामला भी शामिल है। उच्च शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल करिकुलम कमिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य श्रम बाजार की जरूरतों का आकलन करना है। इस त्रिपक्षीय समिति की सह अध्यक्षता बिजनेस मॉरिशस और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस कर रहे हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों से अपने पाठ्यक्रमों की समीक्षा करने को कहा गया है, ताकि ऐसे स्नातक तैयार किए जा सकें जो बदलती जरूरतों के अनुसार खुद को ढाल सकें। उदाहरण के तौर पर पिछले 10 वर्षों में यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने डिजिटल क्षेत्र के विकास और आर्थिक बदलावों के कारण 140 पाठ्यक्रमों को बंद या संशोधित किया है। इन बदलावों के चलते रोजगार के नए क्षेत्र और नए पेशे भी सामने आए हैं। ज्यादा जानकारियां याचना मिश्रा के साथ।
3: हर जगह मौजूद नई टेक्नोलॉजी के साथ नौकरी की नई संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। ये नौजवान इससे भली भांति परिचित हैं। इस क्षेत्र में पढ़ाई के बाद बहुत जल्द इनको नौकरी भी मिल सकती है। जो अभी सीख रहे हैं काम पर सहायक होगा। एप्लीकेशंस पर हम काम कर रहे हैं। मैं एनालिटिक्स पर पढ़ाई कर रही हूँ, कंपनियों में डेटा पर काम करके व्यापार को ठोस बनाने पर। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस अपनी करिकुलम को अर्थनीति की मांगों के अनुकूल ढालना चाहती हैं। 140 ऐसे कोर्स में बदलाव लाए गए या हटा दिए गए जो आज के जमाने की मांगों से मेल नहीं खाते। 150 नए

0: रोज जोड़े गए हैं। गन्ना क्षेत्र संबंधी शोध प्रोग्राम हटाया गया क्योंकि MSI और IRD द्वारा इसी प्रकार के शोध किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्रालय ने पिछले मार्च में नेशनल करिकुलम कमिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा और आर्थिक जगत के बीच एक ठोस सेतु तैयार करना है।
1: Tout en une cause le mismatch dans la demande et la plan of labor qui nous envie réduire. Ça, c'est un. Deuxième, nous remarquons qu'il y a une mobilité assez parmi nous dans la propre université publique. C'est la cause de ça. Nous disons comme ça, nous avons introduit un.
0: Nous avons toujours parlé de la capacité de travail. Les universités sarvajanik vishwavidyalayon mein bhi zyada vikalp nahi the. Is par kaam kar rahe hain. Iske alawa vidyarthiyon ko ab artificial intelligence par course lena hoga.
2: L'aspect théorique. Les rester pareil. Mais il y a un 20% des programmes qui nous font, ils sont adaptés avec le marché du travail. Nous avons 20% qui ont changé là, sa comité-là peut décider. Qui va une mesure qui est capable de retirer. Mais il y a un nouveau élément qui se permet là-dedans qui s'appelle micro-credentials.
0: कोर्स का 20% भाग श्रम मंडी के अनुसार होना चाहिए और इसमें लाए जाने वाले बदलाव पर समिति निर्णय लेगी। नयापन है माइक्रो क्रीडेंशियल्स जो निजी क्षेत्र के साथ तैयार होता है। कुछ कंपनियों के पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूनिवर्सिटी में नहीं है। इस समिति से हम ऐसे स्थलों में लैबोरेटरीज आदि में प्रवेश बढ़ाने पर काम कर पाएंगे। श्रम मंडी की मांगों को पूरा करने के लिए शैक्षिक प्रोग्राम्स में बदलाव और नयापन लाया जा रहा है।
3: Et certainement, tout le sujet de digitalization, AI, en a un vrai besoin. Tout ça qu'on appelle green transition aussi, hein? Ce qui est climat, la transformation vers les énergies renouvelables.
0: Digitalization, AI, green transition, jalvayu, in sabhi mein kshamtaon ka vikas zaruri hai. ICT aur vittiya kshetra mein bhi kamiyan paayi ja rahi hain. जब प्रशिक्षण मंडी की मांगों के अनुरूप न हो या जो सिखाया जाए वो आर्थिक सच्चाइयों को नहीं दर्शाता, तब स्किल्स मिसमैच की स्थिति पैदा होती है। यानी नौकरी की मांगें क्षमताओं से अलग हो जाती हैं। इसी से नौजवानों की भर्ती में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।
4: विदेशी खबरों में, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज सुबह एक अस्पताल में आग लगने से करीब 15 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। इस अस्पताल की नर्सरी में एयर कंडीशनर का कंप्रेशर फटने से आग लग गई। ये हादसा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पिम्स के गायनिकोलॉजी वार्ड में हुआ। घटना के समय नर्सरी में 16 नवजात शिशु थे, जिनमें से 15 बच्चों की मौत हो गई। सिर्फ एक बच्चे को ही बचाया जा सका। इस हादसे के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश के एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी को निलंबित कर दिया है। हर साल 26 अगस्त को मदर टेरेसा की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। उन्होंने अपना जीवन गरीबों, बीमारों, अनाथों और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा की जयंती हमें ये संदेश देती है कि किसी की मदद करने के लिए हमेशा बड़े साधनों की ज़रूरत नहीं होती। प्यार, दया और सेवा की छोटी सी भावना भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आस्था गोविंद चितामन को सुनते हैं।
5: एक सफेद साड़ी, नीली किनारी और जीवन का एक ही संकल्प, जहाँ पीड़ा हो वहाँ सेवा का हाथ बढ़े। मदर टेरेसा का जीवन करुणा की ऐसी ही यात्रा है, जिसमें सबसे अधिक महत्व उस मनुष्य का था जिसे अक्सर दुनिया अनदेखा कर देती है। 26 अगस्त 1910 को जन्मी मदर टेरेसा ने बहुत कम उम्र में ही सेवा का मार्ग चुन लिया था। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा और कुछ समय बाद भारत पहुंची। कोलकाता आगे चलकर कर्म भूमि बन गया। शुरुआती एक शिक्षिका के रूप में हुई, लेकिन विद्यालय की दीवारों के बाहर एक दूसरी दुनिया थी। गरीबी से जूझते परिवार, बीमार लोग, बेसहारा बच्चे और जीवन के अंतिम पड़ाव पर अकेले पड़े लोग। मदर टेरेसा ने अपना जीवन इन्हीं लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सफेद साड़ी, चेहरे पर सहज मुस्कान और सेवा का दृढ़ संकल्प, धीरे धीरे यही पहचान बन गई। 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उद्देश्य था उन लोगों तक पहुंचना जिनके पास सहारे के लिए कोई नहीं था। अनाथ बच्चों से लेकर बीमार और जीवन के अंतिम क्षणों से गुजर रहे

0: लोगों तक उनकी सेवा के केंद्र में हमेशा मनुष्य और उसकी गरिमा रही। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी पहचान कोई पुरस्कार नहीं था। वो थी किसी अकेले व्यक्ति के पास बैठ जाना, किसी बीमार का हाथ थाम लेना और जिसे दुनिया ने भुला दिया हो उसे ये एहसास दिलाना कि वो भी महत्वपूर्ण है। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा का निधन हुआ। 2016 में उन्हें संत घोषित कर दिया गया। आज उनकी जयंती पर उनका जीवन एक सरल संदेश छोड़ता है। दुनिया बदलने के लिए हर बार बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी करुणा का एक छोटा सा भाव भी किसी का पूरा संसार बदल सकता है।
1: और अब पेश है मौसम संबंधी जानकारियां याचना मिश्रा के साथ।
2: हमारे इलाके पर अस्थिर हवाओं का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। कल सुबह ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। दोपहर बाद पश्चिमी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर मौसम बरसाती रहेगा। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 15 से 17, अधिकतम 23 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है। मस्करीन्स के दक्षिण पश्चिम में पाई जाने वाली जोरदार एंटीसाइक्लोन का असर शुक्रवार 28 अगस्त से पड़ने लगेगा। मौसम बरसाती रहेगा, तेज और ठंडी हवाएं बहेंगी और तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। समंदर भी खराब रहेगा और ऊंची लहरें उठेंगी, खासकर शुक्रवार की सुबह। कल सुबह सूर्योदय 6:23 पर होगा और शाम को सूर्यास्त 6 बजे होगा।

0: और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें शिव का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: मापू लेकलेसियो गुडलैंड्स में 38 साल के 38-year-old के श्री ज्ञानेश्वर सिंह बाल्डोवा, जो आतिश से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके घर मापू लेकलेसियो गुडलैंड्स से उठाकर बेलमो गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 9:30 AM। रॉयल रोड रोस्टे में आराधन दुकान के पास 51 साल की 51-year-old की श्रीमती सती प्रिया गंगा, पैदाइश नाम चांदू और जो सती से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर रॉयल रोड रोस्टिया आगाडन दुकान के पास से उठाकर दारूची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: गुरुवार 27 अगस्त शाम 6:30 बजे श्रावण गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री कबीर काउंसिल आश्रम लाकाव्यन नंबर 2 वाक्वा में साध्विक ज्ञान यज्ञ चौका आरती का आयोजन किया जा रहा है। श्रावणी उपाकर्म के शुभ अवसर पर गुरुवार 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:30 बजे मॉरिशस सनातन धर्म फेडरेशन श्रावणी उपाकर्म उत्सव एवं जनेव परिवर्तन विधि धार्मिक स्नान और

ज का आयोजन कर रहा है फ्रिकोफ्ला के शिव सागर मंदिर में। ये विधियां पंडितों के लिए आयोजित किया जा रहा है। गुरुवार 27 अगस्त को सुबह 5 से लेकर शाम के 3 बजे तक श्री शिरडी साई महिमा डिवोशनल ग्रुप द्वारा गांववासे के गंगा तालाब में महाविभूति अभिषेक किया जाएगा। श्रावण मास के संदर्भ में एक्वायर राजपूत सभा, गहलोत राजपूत महासभा के तत्वाधान में गुरुवार 27 अगस्त को शाम 5 बजे एक्वायर में ही महायज्ञ का आयोजन कर रहा है। गुरुवार 27 अगस्त को श्रावण मास के संदर्भ में लावोच्य के झरनाथ शिवालय शाम 6 बजे रामायण सत्संग का आयोजन कर रहा है।

听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟您告别，下次节目再会。

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
2: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम, रात के हम सफर। हमारा सादर प्रणाम। एक बार फिर से हम उपस्थित हो चुके हैं आपका ये मनपसंद कार्यक्रम को लेकर। और चलिए, हम आप ये लाए हैं बेहतरीन से बेहतरीन भजन जो आप सुनना पसंद करते हैं। श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में हम जो है शिव की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर।

श्रोता हुआ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम और शिवमय वातावरण है। शिव केवल देवों के देव नहीं बल्कि शांति, शक्ति, त्याग और सत्य के प्रतीक है। उनके मस्तक का चंद्रमा हमें शीतलता सिखाता है, गले का नाग निर्भयता का संदेश देता है और उनकी तीसरी आंख हमें भीतर का सत्य देखने की प्रेरणा भी देती है। तो आइए कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।

श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। वैसे शिव का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, मन में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जहां अहंकार जो है समाप्त होता है, वही शिवत्व की शुरुआत होती है ना?

साक्षता और शिव का नाम लेते ही मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। वे सिखाते हैं कि संसार की भागदौड़ के बीच भी अपने भीतर शांति का दीप जलाए रखना है हमें। तो चलिए इसे शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे तकनीकी सहायक अंजू है, तो उनको हम धन्यवाद देंगे। एक और मुलाकात तक आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

छोड़ने को न थे जब तक उनके पास रोशन दलील ना आए। वो कौन? वो अल्लाह का रसूल के पाक सहीफे पढ़ता है, उनमें सीधी बातें लिखी हैं और फूट न पड़ी किताब वालों में मगर बाद इसके कि वो रोशन दलील उनके पास तशरीफ़ लाए। और उन लोगों को तो यही हुक्म हुआ कि अल्लाह की बंदगी करें, निरे इसी पर अकीदा लाते एक तरफ के होकर, और नमाज़ कायम करें और ज़कात दें, और ये सीधा दीन है।

ए अल्लाह हमारे लिए हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमारे लिए हमारे घर में वसअत पैदा कर दे और हमारे लिए हमारे रिस्क में बरकत दे। ए हमारे रब, हम तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहे।

हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए रोने लगे और फिर फरमाया, अल्लाह ताला से बख्शिश व आफ़ियत मांगो, क्योंकि किसी शख्स को ईमान के बाद आफ़ियत से बेहतर कोई नेमत नहीं दी गई है। ऐ अल्लाह, हम तुझसे उस खैर व भलाई का सवाल करते हैं जिसके ख़जाने तेरे हाथ में है। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन कराम, महफिल शब प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। तकनीकी मदद के लिए अंजू का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबिनाज जान अली को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। शब खैर। सुबहानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तग़फिरुका व अतूबु

0: RM3 Radio. Radio.
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: सब संगठन के और जी प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन, रेडियो मॉरिशस AM मोड पर और रेडियो मनोरंजन FM मोड पर। द AM और FM मोड पर, दोनों मोड पर सबको के हमने की ओर से नमस्ते। बहुत छोटी देर का प्रोग्राम अभी से लेकर रात के 11 बजे रहे। आज है बुधवार की रात, बुधवार 26 अगस्त 2026। और बेशक आज गमर के रात बाद जलसा के रात बाद मन करता था कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर और घुमैया का जगह देवी जगह विच सैंक पर। आज को जन्मदिन बा, शादी बा, शादी के साल गया कोनो भी खास मौका को की याद करते हुआ तब बेशक नंबर और घुमैया का जगह देवी जगह चला शुरू कर भोजपुरी प्रोग्राम के जबरदस्त गीत के साथ। धना जी, नाव जी की आवाज में धक्के पे धक्का।

सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून. सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास. दो घंटों का सुरीला सफर पुएर्टो पिमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में, जहां तेरासिन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ इस म्यूजिकल सफर को मजेदार और यादगार बनाएंगे. ऑन दिस फ्राइडे 28 अगस्त दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. साथ ही टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे. सो भूलिएगा मत, इस शुक्रवार 28 अगस्त को फ्रॉम नून टू 2 PM पुएर्टो पिमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास.

कमजोर हो इंसान जोन बात बात पर रोएला जोन बात बात पर आंसू बहावेला आंसू बहे बता कौन सी मेरी संसार में चला सख्त बने के तब तू सब इस संसार के फास करे अगर बात बात मेरो ब कमजोर हो तहे दुनिया थोड़ा और दबा के रखी है दुनिया है इसे एक कलयुग बोलल जला तो कोनो भी बात हुई नहीं रोइया उदास नहीं हुआ निराश नहीं हुआ तू डट के सामना करिया और बोलिया भगवान अगर तू मुसीबत देवत हो प्रॉब्लम देवत हो जिंदगी में तो प्रॉब्लम सह के शक्ति भी चेहला दे गया हो कि नहीं और ऐसे में चला भोजपुरी तरह का प्रोग्राम के आगे बढ़ा आपसे कमाल बोला था अभी कुछ संगति प्रताप जी टिकटॉक पर कबई बा टिकटॉक पर आपसे रात के 10 बजे भी प्रताप साउस होता ओके फिकर नहीं करिए रात के 10 से 11 बजे ये प्रोग्राम चाहिए लाइव टिकटॉक पर टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मनोरंजन जहाँ पर सब हमने के देखे भी अभी का दिन सकत वह सुने खाली रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन और अगला गीत दुल्हन के दादी बहुत ही प्यारा संगीत है और है गीत जो हमने चलावा थी ये सब संगतिया के नाम प्रीति और रेशमा माता बदल गीत तो लोग माँ इंदिरा पापा सुरेश और सब माता बदल परिवार के नाम रीता सीतालु है गीत और नाम कमला जी के उसे आरोही खातिर देवेन नदी वाला आप हन वानकूवर से उनके साथ देव हो दीपक हन ब्राइटन यूके से और माँ खातिर गीत उदय धनी राम गीत और खातिर और रिहाना आसनाली फिनिक्स एवं जयलर जियाद खातिर रवि

0: बंगारू
1: अगे तो हर नाम विशाल हिरू की उसका पत्नी शालिनी को दुगो बेटा और कर कर को परिवार है कृष्णा उकरो नाम मुकेश है गीत चरी सूरज मुकेश गंगा सूरज गंगा सत्यम सनु और सब शिवरतन परिवार के नाम है गीत चली गीतवा एकदम जोरीबा एकदम चकाचक जब

चैनल की जब कमती बती बता अच्छा रहेला और जब बताया रहता तो चैला नरम आवाज़ में बताई के और प्यार से बताई के तो हमेशा याद रखिए साईं बाबा की कथन टॉक लेस यानी कि कमती बताई के और टॉक सॉफ्टली एंड लविंगली एक में सबके कल्याण बाहो कि नहीं। रात के 9:15 हुआ था और ढेर को के साथ देवत वन रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर बहुत बहुत धन्यवाद के साथ दे खातिर। अगला गीत बुझावल हम बुझीला और एक गीत चलावत है इस रवि दिनु के नाम फिर बोबा सिंह के भाई हरीश आई तोरो खातिर पोलॉजी की छोटी खातिर आशा जानु को जेवन प्रतिमा दीना सजू रोशनी अपाया धर्म केत गोसाई और वीरापेन ये लोग सेंटर में SSS कॉलेज के अध्यापक हवन जा तो है गीत तो लोग के नाम सासी बनुमाली है गीत और खाती तोहर पत्नी तोहर बेटा बेटी दामाद और सब बनुमाली परिवार के नाम हिरीश नारायण मिडलैंड्स रहेलन है गीत और खाती तोहर माता जी खाती तोहर बेस्ट फ्रेंड प्रताप की ओर से राजमन्ना और होरीलाल दीनू है गीत और नाम और यूनिवर्सिटी मगज के सब हमारे जेब लोग के नाम खासकर फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज के हमारे सब स्टूडेंट्स कॉलीग और जितना कोई बीए फ्रेंच एमए फ्रेंच और पीएचडी फ्रेंच में एनरोल हवन सा है गीत तो लोग खातिर बुझावल हम बुझीला।

जीते जी कोई के खाए के नहीं दिला, जीते जी कोई के पानी नहीं दिला पिए के, तो कर मरला के बाद पत्ता में खाए के निकाला तवा, ये कौन कहते मानिया है। अब वो नई बात है, बैठ के रोतवा जब रहल तक कोई गंती नहीं लेवे, तो इंसान की फितरत है। जब वो इंसान तो रों के सामने बात जिंदा बात, तब ओकर ख्याल रखिया, ओके भूख लगी था खाए के दिया, प्यास लगी था पानी दिया, नहीं कि जब जिंदा बात तो कोई गंती नहीं लग, और जब चल गल दुनिया छोड़ के, तब सब कोई रोआ था आंसू बहावा था, तो ता दिन कहाँ रलन जा। तो इसने होला यही दुनियादारी है भैया, आजकल इंसान ऐसे उगल बा, पर सच्चा इंसान वो है जो न जब गो इंसान जिंदा बात हो रहा के सामने तो कर गंती लिया, अब बदमिया मर गल तो कर याद में आंसू बहावत हो, या खा के पत्ता में डालत हो, या पानी दे तो के जाना था कि मिला था कि नहीं। भैया ये कहते जब जिंदा बा कोई तो कर ख्याल रखिया जा। अगला गीत फुलिया, गीत ललिता, ललिता जलसा ग्रुप, और एक गीत हमने चलाओ थे इस प्रेमिला के नाम, हेलो प्रेमिला, इंदिरा लौटन, अनिता लाल जी और सब बीतू परिवार, मोदार बे से अनिता वन फ्री कॉम फ्लैग से परी की ओर से कर भाई माधव टुक टुक कर प्रणाम करते रहे, और भाई अबू हवन बाकवा से आफेज लावेनिया सैम्पियर से रोजिदा हाईलैंड से इब्राहिम भाई पोर्ट्रिस से फातमा न्यू ग्रोव से गोबियो न्यू ग्रोव शोभा पॉम्पलेमुस से और राफिक मोहित वन तयाग से, और राफिक मोहित बड़ा जोर गमत करता बोला था प्रताप जी और गीतवा डाल देना फुलिया, तो चला फुलिया की गीतवा सुनब सा और कमरवा डुलावब सा, ए हे।

I see that's the gateria kamar wad dulai tiria ka jago dewe jago wit sank par telefone kar tiria ban pasand ila bhojpuri geet sun tiria desi travel tiktok page par aap sa raat ke 10 baje bhi raat ke 9 baje ke aadha holba aur sangatya log हमने सबको यहाँ कोनो न कोनो पालतू जानवर बा कोई चिड़ै पोसेला कोई तोची पोसेला कोई बिल्ली पोसेला और मॉरिशस में ढेर कोई कुत्ता पोसेला तो कुत्ता हमने के एगो पालतू जानवर है लेकिन ये जानवर कम परिवार के सदस्य ज़्यादा लगेला और कुत्ता हमने के घर के गार्दी करेला असल में कुत्ता जो है भैरव भगवान के दूसरा रूप है अगर भारत में जेबा तो जहाँ पर दुर्गा माँ की मूर्ति बा दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे कुत्ता की मूर्ति रहेला तो सबसे पहले कुत्ता के पूजा होला भैरव देवता के रूप में और फिर दुर्गा माँ के तब भैरव भगवान के प्रणाम करेला सा और बोलल जला कि जब यमदूत आवेला कोई के प्राण हरे तो हमने के जोन कुत्ता है वो यमदूत से याचना करेला वो बोलेला हे यमदूत स्वामी हमार मालिक के लेके नहीं जा कहे कि हमारे मालिक के जो है वो हमके खाए के देवेला हमके पाल पुस के इतना बड़ा कर लगवा तो यमदूत से ढेर याचना करेरा और प्रार्थना करेरा अपन मालिक खातिर इतना वफादार है कुत्ता है जोन कुत्ता जानवर है जिसके हमने खाए के दे रहा सा कोई तो झूठा खाए के दे देवेला पर ये झूठा खा कर भी हमेशा वफादार है तो जब यमदूत अवेरा कोई के प्राण हरे तो एक कुतवा होकर से जिसकी करे रहा बोले रहा हमारे मालिक के प्राण नहीं हर कहे कि हमारे मालिक अंके ध्येय माना प्यार देवे अंके खाए के देवेला तो यमदूत भी कबू कबू है भैरव भगवान की बात सुन के ओकर हृदय पिघल चला और वो खाली हाथ लौट चला ऐसे बोलल गल बा है ढेर माना पुस्तक में जब हमें रिसर्च कर रही था ऐसा बोलल गल बा कि कुत्ता जो है वो यमदूत भगवान से प्रार्थना करेला कि ओकर मालिक के गोरा अच्छा से रखे के और ओके नहीं लेके जाए के यमपुरी तो बेशक अब जब अपन कुत्ता के देखब ओके दुलार करब तो हमार बात सोचिए कि कैसे यमदूत भगवान से झगड़ा करेला और अपन मालिक के प्राण बचावेला और अंग्रेजी में कहावत गए कहावत बह ए मैंस बेस्ट फ्रेंड इज हिज डॉग ले मेयर एमी दे लम से सन शेयर तो ऐसे ही लिखा लोग नहीं बोलगवा ना और अगला गीत आजकल के छोकरी नीरज खूब मधु गीत अगले वन सैंपल किरण भा बाल मुकुंद है गीत तोहर खातिर तोहर दुगो बेटी खातिर अग्रवेजपोस के श्रीमती दुआ का चिकना माया काशी हवन गीत और नाम शैलेश महावीर की ओर से ओकर पापा जीवन घरोली ओकर लैका और सब महावीर परिवार के नाम और शैलेश महावीर हमने के संगे खूब नाचता गावता कमरवा डरावता शैलेश महावीर है गीत खासम खास तोहर खातिर

आजकल के छोकरा छोकरी लोग बड़ी कमाल करेला। आज नहीं जन्म के छोकरा के छोकरी जो कहते पहनावा, कबू छोकरा लोग लंबा बार धारण करेरा फूली पहने रहा, और कबू छोकरी लोग पौतालों टी शर्ट पहने रहा। तो पीछे से दिख बता नहीं जन्म सकबा बोल एक्सक्यूज मी सर हाउ आर यू, तो दिख बता महिला भाया एक्सक्यूज मी बहन जी बोल दे रहा, देखा था तब पुरुष। हाँ तो आजकल जिप्सिल्बा बोले के नारी है और के पुरुष लोग के पहनावा से नहीं सकब से जाने भैया आजकल मॉडर्न जमाना बा। रात के 9 बज का था वो था तू सुनते रेडियो मॉरिशस सर रेडियो मनोरंजन प्रोग्राम भोजपुरी तरह का रात के

11 बज रहे और बेशक तेरे के पसंद जागी ते का जगह देवी जगह विच सांग पर टिकटॉक पे जो खुलब से रात के 10 बजे अब हम बात कर से जीरा के बारे में तो जीरा कौन चीज है जीरा एगो उपयोगी मसाला है एक इस्तेमाल हमने रेसिपी में इस्तेमाल करी रहा सा इस स्वाद और खुशबू के और बढ़ावेला तो डाइजेस्टिव सिस्टम के तेरा अच्छा है पाचन में मदद करेगा जीरा पेट के खाना पचाए में सहायता करेगा और जैसे बड़ी पेट के आराम पहुँचावेगा और जीरा में आयन बा मैग्नीशियम बा और खनिज भी बा और एंटीऑक्सीडेंट बा जीरा में ऐसा प्राकृतिक यौगिक होला जो शरीर के केशिकन के ऑक्सीडेंट नुकसान से बचावेला है और खाना में उपयोगी है जीरा सकब से दाल में डाले सब्जी में करी में चावल में रायता में या चटनी में जीरा डाला और भूख में सहायता करेगा जीरा के सुगंध और स्वाद भूख बढ़ावेला तो जो आदमी लोग के भूख नहीं लगेगा कमती खा लन सा जब जीरा डलबा हो जिन परफ्यूमा खैवा में से निकली आ हा हा ऐसा सुंधा मोकेरा तो करिया गम गम तो थोड़ा मन करी खाई की तो जीरा को छोटा सन मसाला जरूर बा लेकिन स्वास्थ्य आहा एकदम ही स्वादिष्ट खाना के बनावेला तो जरूर जब मसाला में कोनो भी तकारी पकावत हो चाहे वेज हो नॉन वेज हो तो जीरा के इस्तेमाल जरूर करिए जा और ऐसा में भोजपुरी बजा बाजी बॉयज के वो गीत नहीं सा गीत चलाओ जैसे आप लोगों के विशाल बिशेसर के नाम ओकर घरोली ओकर बेटा और सब बिशेसर परिवार के लिए तो विशाल बिशेसर है गीत खासम खास तोहर नाम पैंक पैंक उज्जवल वालों तो

और अब हमने तुम्हारा एक कहानी सुनाओ सर, बेन ऑर्डर इज सैम्पियर। ये कहानी जो ना मॉरिशस में गुजर बा, और बेशक कहानी के टाइटल है पॉल और वियर्जिनी। पॉल और वियर्जिनी कहानी जो है ये बेन ऑर्डर दे सैम्पियर जो है वो दिख रहे रहल इल दे फ्रांस में है ये कहानी रहल। और बेशक पॉल वियर्जिनी जो है दुगो लड़का जो मॉरिशस में है रलन सा, पॉल गरीब घर के लड़का रहल, वियर्जिनी धनवान घर के लड़का रहल। और बचपन से लोग साथ साथ स्कूल जाता है और बढ़ा ले जो है ये लोग में दोस्ती हो, फिर दोस्ती प्यार में बढ़ल। और एक दिन वियर्जिनी के मौका मिलल जाए कि लाफ्रांस पढ़े जाएगी, घूमे जाएगी, पर वो वादा कर लग पॉल से कि जब वापस इल डिफ्रांस लौटी तो ओकर से शादी करी। हालांकि पॉल गरीब लड़का रहल पर बहुत ही मेहनती रहल और काम करवा छुकरा रहल। और वियर्जिनी जो है वो चाहे कितना भी धनी क्यों ना रहल पर वो पॉल के जो है सामान नज़रिया से दिखत रहल। और जो दिन वियर्जिनी गल लाफ्रांस वो दिन पॉल बहुत रोलक और इंतज़ार करलक कि वियर्जिनी एक दिन मॉरिशस आए तो से शादी करी। हालांकि परिवार लोग डाको नहीं रहल कहे कि वियर्जिनी जो है धनी घर के लड़का रहल और पॉल गरीब घर के लड़का। कहानी आगे बढ़ते जाला और वियर्जिनी एक दिन को बातों में आवेला तो बातवा जो है तो बातवा डूब जाला और वियर्जिनी की मौत हो जाला। तो इस सदमा से पॉल के भी सदमा पहुँचेला और पॉल भी मर जाला। तो एगो प्रेम कहानी है जहाँ दोनों प्रेमी जो है मर जाला, कह के एक दूगो प्रेमी एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे सर, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकत रहन सर। तो जब पॉल सुनल कि वियर्जिनी के जहाज डूब गल बा और मर गल बा, तो ओकरे सदमा में उस शोक में जीते जीते जीते एक दिन पॉल भी दम तोड़ देवेला और पॉल की भी मृत्यु हो जा रहा। अगर थोड़ा मौका मिली तो सोशल मीडिया पर जाइए या कोनो लाइब्रेरी में जाइए और है लिबुआ खोजिए उपन्यास के टाइटल पॉल वियर्जिनी और एक निकले वन बेन ऑर्डर सैम्पियर। एक ट्रांसलेशन हिंदी में बा, तमिल तेलुगु में भी बा, ढेर माना भाषा में भी बा सकबा है। के इंटरनेट पर भी कहानी पढ़े, कहानी के शीर्षक याद रखिए पॉल ए वियर्जिनी। और अगला गीत मामा और पापा और अगवा के लेके है गीत कल्याणी की ओर से, चलावते से कल्याणी रन बॉशेरी है गीत सुरागनी की ओर से वो भी रहे रन बॉशेरी। और जितना कोई अभी हमने की सुना था रात के गीत थोड़ो ना मामा पापा और अगवा के लेके, मामा पापा अगवा के लेके रात के कहाँ जाते हैं चला एक साथ सुनब जा।

रात की 9:50 और भोजपुर का प्रोग्राम चलता रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। और संगतिया लोग, भगवत गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले वन कि जो इंसान तोर हक छीने की कोशिश करता तब तोरा चेहरा अपन हक खातिर लड़े की, अगर तू अपन हक खातिर नहीं लड़ब तो तोहर हक खातिर कोई नहीं लड़ी। तो ये महाभारत में भगवत गीता में बोल गए कृष्ण भगवान जो एक अध्यापक के रूप में है और अर्जुन है गो स्टूडेंट के रूप में है। और एगो अध्यापक कैसे अपन चेला के समझावता कि अपन हक खातिर छेना लड़े के, और अर्जुन सोचेला कि वो लड़ाई नहीं सके करे खाए कि जगह से लड़ाई करता और कुसे है परिवार है। तो कृष्णा बोले नहीं, तू एगो क्षत्रिय हव और क्षत्रिय हो के नाते तुके छेना अपन धर्म निभाए के, ऐसे ही हमियों के छेना अपन धर्म निभाए के।

भाई दुनिया में आने छ त नहीं छा डरे के कि ऐसे हो जाए ओसे हो जाए नहीं हमने के छा अपन कर्म करे के धर्म के रास्ता पर जाए के नेकी के रास्ता करे के और अच्छा काम करे के फल की इच्छा नहीं करा फल वो अपने आप आए तो भगवद गीता जो है एक में ढेर कुछ मिलेगा सीखे के हमने की हाँ कि नहीं। अब चल अगला गीत सुनो आतिश भगीरथी की तो अगर छोड़ के मोरी स्वा और एक गीत हमें चला होते इस जितना कोई विदेश में हो उनसे मॉरिशस वासी उनसे पर विदेश में पढ़ाई ढेर कोई पढ़ाई करेगा बा ढेर कोई काम करेगा बा जैसे दुबई कनाडा इटली जर्मनी फ्रांस स्वीडन जहाँ कहीं भी मॉरिशस वासी जो है विदेश में हवन सा और हमने की सुना तो इंटरनेट के जरिए तैगी तो नाम अजय और पूनम चिंताराम हवन ऑस्ट्रेलिया में रंभा हवन लास्विस में और दीपक यूके ब्राइटन में हवन तीत सब मॉरिशस वासी जन विदेश में बा और हमने के प्यार से सुना था देवन नदी वाला वनकूवर कनाडा में तैगी तो थोड़ो नाम छोड़ के मोरिशवा

0: बात होवे बेटा, छोकरिया पसंद बात हो के?
1: हाँ दादा, हमार बगल से तो हाँ बा।
0: एक बगल से तो मुंह मीठा करी जा, और छोकरी से पूछी था तेरी सर, कहाँ बोला था वो बेटी, तोरा भी पसंद बा? शर्मा हो नहीं बोला ना, तब ना आगे बात बोली, पसंद बा तोरा?
2: हाँ, पसंद बा।
0: नहीं बोला।

0: 819 kilohertz. 819 kilohertz. This is Radio Marxus.
1: Continuous music. Music. Music.
2: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
3: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर
2: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास दो घंटों का सुरीला सफर पोएटो पीमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में जहां तेरासिन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ इस म्यूजिकल सफर को मजेदार और यादगार बनाएंगे ऑन दिस फ्राइडे 28 अगस्त दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन साथ ही टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे सो भूलिएगा मत इस शुक्रवार 28 अगस्त को फ्रॉम नून टू 2 PM पोएटो पीमो के लेडी सुशील राम गुलाम रिक्रिएशनल सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास
4: I feel

संगतहरु घड़ी मिलाई बखत रात के ठीक 10 बजल बा तू सुनत हो रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और हमने के देखत हो रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर जहां अभी लाइव चली टिकटॉक पेज रात के 11 बजे ली और

जलसा गमत हंगामा तो होते रही रात के 11 बजे रही। अगला गीत किशोर खिमिया की आवाज़ है जलसा लाल बा है कि जो हमने चलावते इसे ही सब संगत चालू खातिर जो हमने के साथ जुड़ल हवन जा हवन सुभाष मोती शारीश आकाश अविनाश लखन बीना बीना के उससे कर दुगो बेटा और घरोला और है गीत चलावते स्टेसी खातिर दया नमस्ते सुरेखा विदेश बहादुर रेनु रेशमा मधु रेहाना जमन एनरिको बाचिस निर्मला स्वरूप रोजिफिनेट वुलया नरगिस नौबत अंजनी विदिव्याप रानी और नाशा जीना साथ में सन भी उनके साथ हो। हेलो सन संध्या नमस्ते कैसे समाचार वनाशा जीना बेम के साधुवन रीत आशीष बॉस स्काई 26 समरुद्दीन मनीन पांड्या वो भी इनके देखा वन रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर और बोलतवन प्रताप जी क्या बात है देविका भी बहुत प्यार से इनके देखा था वन और सुना था वन रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर मिजाब बीबी गुडो माधवी हेलो वष्टी नितिशा मिजार बीबी लेओ फिर मही नारायण आई गीत तोरो नाम जलसा लाल बा फ्रेंकी भी ये गीत पसंद करता और जितना कोई भी रात की थोड़ा नींद नहीं लगता तो गीत तो लोग के नाम जलसा लाल बा

0: इस दुनिया में पढ़ा लिखा नहीं रह बा आसान बात नहीं बा, बहुत ज़रूरी है पढ़ा लिखा रहे कि आज की दुनिया में। और ये खातिर हमने बोला सर कि सब कोई के चेहला खूब पढ़ा लिखा रहे के अगर एगो बी ए कर ले हुआ या एम ए कर ले हुआ तो यह नहीं रोकिया अपन पी एच डी अपन पढ़ाई करिया रिसर्च करिया। और जितना तू पढ़ा लिखा रह उतना अच्छा बा कह के जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं रहेला आदमी लोग के मूर्ख बनावेला और आदमी लोगों के एक्सप्लॉयटी करेला। तो पढ़ल लिखल जो है बहुत ज़रूरी है दुनिया में। और बेशक यहाँ पर ही हमने तो लोग के साथ देते इस रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर फिर टिकटॉक पेज पर हमने के लाइव चलाते हैं प्रसारण जहाँ पर हमने के दिखाते हुआ और हमने तो हमेशा आस पर रहते इस अगला गीत सोचे के अंजू गीत वगैरह लगभग एक फिलोसॉफिकल सॉन्ग है और एक गीत चलावते इस सब संगत यालो के नाम जो हमने के साथ जुड़ल हवन जा और ऊ हवन दिनेश मगर सुमन प्राणी ट्विंकल माधवी बुदाई यश शास्त्री तेनगव रेशमा उषा कुंज बिहारी हेलो उषा और ये गीतवा ट्विंकल खातिर पृष्टि हंसनी अर्जुन रजनी रजनी की ओर से गीत चली और बेटी पूजा दामाद अविनाश पति मान और है गीतवा चलावते इस देवेन नदी वाला खातिर राधे राधे राधे राधे देवे नदी वाला उकाम पे हवन और एंजॉय करत हवन रोशन साहब गीत हरो नाम नमस्ते जी उमिला जुदा श्रुति और वन देवेल मिलन पुन मगर जितेन दुलुआ देवी पाम सूरज और साथ में भावना की ओर से गीत चली ओकर सब परिवार के नाम संदीप गीसाओ गोल्डन ब्रश और जितेन दुलुआ है गीत चली राज दुलुआ खातिर और सब परिवार के नाम और है गीत चलाते सर जुआनीता के नाम और अभी कुछ संगत लाइन पे और से मिलब जा हेलो हेलो हेलो नमस्ते
1: हाँ नमस्ते
0: के हवा जा
1: हम रोजवेर से मानू हाँ
0: हाँ मानू कैसे समाचार
1: ठीक बात सब तो हो दिने
0: चलो तो धीरे धीरे हॉली हॉली बोला
1: धीरे धीरे हॉली हॉली शनिवार को लाइन नहीं खोली रहा
0: नहीं लाइन खोली रही सा और पापी में लिखा था दिसा तो के नाम बोला था दिसा हाँ डायरेक्ट मुझे ऐसे नहीं पास करते रे बस कब जब ढेर कॉल रहे रहता पहले हाली हाली लिखे के ना
1: वो खाते
0: हाँ अरे बोला था
1: सामान देवे के शादी रह रहा था सबके बता पुपु मानू अब इतने जीवन सांते लागे मोबे मारे
0: रहा अलग अलग को नंबर
1: नहीं जान दीना
0: हाँ निवे को नंबर
1: ठीक ओके डिवेस डिवेस अगेन
0: बहु के
1: जिमाओ के शादी रहा ढाला सुख शांति जिमा होंगे दे सही समय

0: उनका पापा हवन उनका पापा उनका माँ है कविता उनका पापा राज उनका बहन हवन और सब आगे परिवार के लिए अब राखी बा
1: हाँ रक्षाबंधन अभिनंदन
0: रक्षाबंधन अभिनंदन हमारे तीन गो भाई के डालिया राजन राकेश राजेश हमने अपनी पांच जो बहन है सब सुबा देवी बसंती हम है
1: कितना भाई बतौर
0: तीन गो भाई
1: कई गो बहन
0: पांच गो बहन पांच गो बहन तीन गो भाई और मनोरंजन के शुभकामना देवा था
1: हाँ रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती एक बरिस होगा
0: हमके मनोरंजन हमके तो बहुत दिन भर हम सुनी ला घरे रही ला ना हम अच्छी बेबी के देखी ला तो हम दिन भर सुनल करी ला बहुत अच्छा
1: ओके
0: हाई लाइन वहाँ खुला बहुत हमके अच्छा लगे ला दिन के सब गीत झल्ला हमने अपन जवानी याद करी ला
1: आई सब गीत सुन के सच्चे के सच्चे बोला तो
0: हुआ सुन के सब जवानी याद करी ला
1: ऐसे उदास नहीं रहा बस खस में नहीं रहा गाजवा खेलल करी गीतवा सुनल कर बा
0: हाँ गीतवा हाँ सुनल करी ला सा जोड़ी जोड़ी सांते झल्ला हाई सब गीतवा सुनी ला सा तो बहुत अच्छा लगे ला
1: अभी रातों के तक गमत होते रहे ला
0: हाँ गमत होते रहे ला तो हम तीन को भाई के अभी राखी तोड़ो के सब परिवार
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: रक्षा बंधन अभिनंदन अभी का शुभकामना दीप सा सब भाई लोग के अच्छा से रही भगवान सब को के निमन से गुण हाथ निमन से बनाई ले रही माप जाप तो नहीं बदल हमने पहुंच गए वहीं जिनको भाई ये मिलजुल के रही ला सा
1: हाँ बड़ा आदमी तो सब चल जाता का कर
0: हाँ हमारे बेटी ओकरो बोल देव था राति बा रीना बा उ लोग अपन भाई के बंधाई कविराज गंगा
1: अभी चला लो मन से के यंस अभी
0: नहीं काला होता
1: काला काला इनसे तो भाई यंस वीकेंड
0: काला होता तो बहुत धन्यवाद
1: शुभ रात्रि तोरो
0: हैप्पी
1: रक्षाबंधन अली बाबा आली बहुत धन्यवाद उनसे बात कर ला रजनी अपन भाई लोग खातिर गीत मंगले वन और रजनी की ओर से गीत चली करदामाद अविनाश दीनदयाल और बेशक देखा गीतवा चुन मंगले हुआ तोहरे आगे थे को गीत मंगला गीतवा क्लासिक होगा समय रही तो जरूर चलाओ अब सर कहे कि जैसे तुरंत अभी मिसाज भिजा कर रहा था और मिसाज भिजा कर रहा से पहले देर कोई टेलीफोनिक करके गीत मांगने ले हूँ सर निराश नहीं हो या समय रही तो जरूर गीत आ रहा सर पर गीत अभी क्लासिक हो गल बा ठीक बा तोहरे आगे थे कोई सुने का लग है नाराज नहीं हो रहा रजनी सब काम को फांसी से होला अगला गीत सुल्तान या वंदा गीतोरो नाम यशवीर फिर गीत चली सुनीता अनीता के नाम और हाई गीत हुआ चलावते से संदीप गीसाओ के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ पद्मिनी काउदेन हेलो पद्मिनी हाई गीत और नाम और ज़िंदगी में कबो कबो बैठ के पहला सोचे के कि कैसे जिंदगी ई मोड़ पर चला कि कबो कबो कोनो इवेंट में होला अपने खिलाफ में तो बैठ के सोची रह सा ना चिंतन मनन कई रह सा कब कब अच्छा है बैठ के सोचे के कि कैसे कौन सी होलबा कैसे हुआ था और आगे कैसे होई हाँ तो एगो रिफ्लेक्शन है चला गीत सुने अंजू की आवाज़ और जितना कोई भी ड्राइव करता है धीरे धीरे अपनी गाड़ी चलाइए और हमने के साथ दे धे कोई अभी काम पे जाता धे कोई काम से वापस लौटता था धीरे माना जगह में काम होता पुलिस स्टेशन में मेटेरियल सर्विसेज में फायर सर्विसेज में अस्पताल में क्लिनिक में डॉक्टर नर्सिंग ऑफिसर को काम करता सिक्योरिटी गार्ड्स को काम करता कॉल सेंटर में धे कोई काम करता सोफिया लोग काम करते वन सर पासाजेरे के जाते या पासाजेरे के आवत वन सर तह गीत लोग के नाम है गीतवा सुनिए एक में एगो रिफ्लेक्शन बा एगो फिलोसोफी बा चला गीतवा सुने अंजू के आवाज़ में सोचे के

हाँ, एक दिन सबको छोड़ छाड़ के जाए कि बा कौन चीज नहीं निकाल सर, कौन चीज लेके जाब सर। अगला गीत वंदना वंदना तू हमार सुना, और गीत हमने चलावती सर विश्वानी जो नवन वो बासा से गीत तोर खातिर से भी एंजल उमिला जोदा दान सुल्तान याया, और रजनी गीत तोहर दामाद अविनाश दीनदयाल, और तू गीत मंगल वंदना वंदना हमार सुना त गीत अभियावता गीता जाबुल गीत और नाम उमिला जोधा जैस श्यामा बिपिन बिपिन बी लवना और ओके बिपिन मॉरिशस में नहीं बा, मॉरिशस से बाहर हो जा। ऑलराइट, संगीत है तो है गीत तो खातिर सुनीता और परमानंद खातिर, श्यामा है गीत तोहर बेटा, तोहर बेटा के जन्मदिन के अवसर पर तो हैप्पी बर्थडे बेटा, ढे मना प्यार ढे मना आशीर्वाद, और सूरज खातिर उमिला जुदा के अवसर सूरज खातिर गीतवा चली, और मिस्टर मंगल के साथ वो तो वन, और ही गीतवा चलाते सर रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती खातिर है दोनों राज्यों के एक साल हो गल उसके लाइन भी ऐसा गाटू कटली सा गाटू खैली सा गालू गाटू पताजी कर ली सा तो एम बी सी रेडियो के दुगो जो रेडियो हब जवान हो गलावन सा भी एक बरिस हो गल एनिवर्सरी ऑफ रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन। बहुत बहुत बधाई टू द होल टीम जितना कोई काम कर रहे राज्यों में, राज्यों में हम काम करी रहा, और जय प्रताप सिंह ढेर कोई काम करा जैसे अजय परी बा, अजय सुमिता बा, रोशनी बा, रत्ना बा, अभी बा, विकास बा, द होल टीम और जो रेडियो मनोरंजन और रेडियो मस्ती जो है कर एक साल हो गल बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाई हो बधाई। चल एक साथ सुने वंदना वंदना तू हमार सुना

आज के नारी जुन्हा कदम से कदम मिला के पुरुष के आगे बढ़ते जाता। नारी हर क्षेत्र में बा, निज काशों में, एग्रीकल्चर में, इकोनॉमी में, कॉमर्स में, ला सांते में, ते नारी जुन्हा ओके कर स्थान हमेशा से मिला रहल, हमेशा रही और ऐसे ही चला आगे बढ़ते जाए के। और आज के पढ़ल लिखल नारी जुन्हा सकी को देश के भी चलाए, सकी दुनिया के भी चलाए। और नारी नहीं रही तो पुरुष अधूरा बा, नारी चहला है। देयर इज ऑलवेज ए वुमन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ ए मैन। तो सब नारी लोग के प्रणाम जो माँ स्वरूपा हवंस नारी के ढेर बा, माँ बहन बेटी भौजी बहू हो कि नहीं। तो नारी जो है शक्ति के प्रतीक है। नारी जैसे शक्ति की पूजा कही रहा सर, दुर्गा माँ बा, सरस्वती माँ बा, काली माँ।

तो नारी के सम्मान ठहरा कर के, जिन घर में नारी के सम्मान नहीं होला वो घर में देवी वास नहीं करेला, हाँ कि नहीं। तो चला अभी अगला गीत सुनसे नारी गीता का ज़्यादा गीत आ गई रे वन, और गीत चली माला बहू के नाम अब्दुल शरीफ दीप वंदना गुमानी कर घरोला रुक लैका लो खातिर शान भाई है गीत और नाम रांद्रियाम है गीत और नाम अजीत सवारत है गीत खासम खास तौर खातिर फाली लक्ष्मी है गीत चली अनिरुद्ध के नाम कर जन्मदिन बा कल हैप्पी बर्थडे अनिरुद्ध है मना प्यार आशीर्वाद। और आशा करते हैं अनिरुद्ध की हाई जुन जन्मदिन है तोहर जिंदगी में ढेर सारी खुशी और प्यार मोहब्बत लाए और तोहर लंबी आयु हो तोहर स्वास्थ्य अच्छा रही। इंदिरा हम ठीक हैं तो कैसे हो खेमराज गीत तोरो नाम इंदिरा के नाम भी और जितना भी हमने लिखा था टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस के और जो कुछ सुना था रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर गीत और खातिर इंदिरा की ओर से गीत चली खासम खास श्रीमान राजेश उगर के नाम और सब उगर परिवार के लिए। सरिता भी उनके साथ हो तो हाय सरिता है गीत तोहरो नाम नारी

आदमी कभी इधर भागेला कभी उधर भागेला, बड़ी चंचल है आदमी, अगर मानने को जगह नहीं रहेला, भगते रहेला भगते रहेला भगते रहेला। और अगला गीत भगते रहेला आदमी चंद्र देव जी बोधन गीत गए सरिका चेता के गीत और खातिर लकी वुमन गीत और नाम कवि कविराज वीना अनिता संद्री नेरा वीना बबीता नेमन सतीश कुमार डॉक्टर जाक फिर जानकी प्रसाद परिवार अग्नि चली जयराज रानी अंतेश अंकुश स्नेहा और सब दुलाव परिवार के नाम आप हो नालमाती से और मिशन क्रॉस हो नालमाती से रविराज सिन्हा बिचुक की ओर से कर गीत कर पत्नी स्वयं प्रभा बिता प्रत्यक्ष और सब बिचुक परिवार के नाम हेलो एमबी है गीत तोहरो नाम और खेमराज गिरी गीत तोहरो खाती चलावती सा दिनेश गोपी और सब गोपी परिवार के नाम अयोगी चली रावीश मंदु कैसे बा समाचार रावीश गीत तोहर खाती तोहर पिताजी तोहर माताजी तोहर भाई भौजी और सब मंदु परिवार के नाम और जितना कोई अभी भी रेडियो सेट ऑन कर लगबा तय गीत तोहरो नाम भागते रहे आदमी

Sangatialog Bandu Muhammad Khalid ke gawal thora jile hai jo ke sange hamne ke tolo ke saath pura hua tha raat ke 9 baje se abhiyan ke saath dila ja hamne ke TikTok page par dekhla radio voices radio manoranjan par sunna geet mangla ja sms phone calls khatir shukriya 11 baje sun baja agla karyakram sunere pal aur ke prasut हाँ सुनहरे पल प्रोग्राम सुन बजा और कर बाद रात के 12 बजे से कल फजर के 6 बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने हमने के जोड़ों की मुलाकात हुई कल बीफे के शान के 4 से 5 बजे रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम रही दिल से मेरे दिल रोमांटिक गीत के कार्यक्रम कल तक हमने की इजाज़त अजय प्रताप सिंह की ओर से सबको के नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल बाय बाय नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: नमस्कार हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स, मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त यानी कि गिनीशा, लेकर आ गई हूँ यादों से भरा एक खूबसूरत सफर सुनहरे पल में। हम साथ मिलकर सुनेंगे वो पुराने बॉलीवुड गीत जो सिर्फ गाने नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की कहानियां हैं। तो बस आप आराम से बैठ जाइए और तैयार हो जाइए, दिल के दरवाजे खोल दीजिए और चलिए लौट चलते हैं उन हसीन लम्हों की तरफ सिर्फ।

कभी कभी एक पुराना गाना सुनते ही पूरी जिंदगी आंखों के सामने आ जाती है। बचपन की वो यादें, पहला प्यार, दोस्तों के साथ बिताए हुए पल। आज सुनहरे पल में हम उन्हीं लम्हों को फिर से महसूस करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा क्योंकि आने वाले हैं हर गीत के साथ जुड़ी है एक प्यारी सी कहानी जो खासकर आप लोगों के लिए हम डेडिकेट करना चाहेंगे।

रेडियो मॉरिशस के प्यारे श्रोताओं, अगर आपको लगता है कि पुराने गीतों का जादू आज भी दिल को छू लेता है तो ये महफिल सिर्फ आपके लिए है। सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के वो अमर गीत, वो अमर नगमे जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो गया है। बिल्कुल आइए मिलकर संगीत भरी शाम को यादगार बनाते हैं ऑन रेडियो मॉरिशस।

मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज के इस सफर में ऐसे ऐसे गीत हम पेश कर रहे हैं जो हमारे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। वो गीत जो हर खुशी में साथ रहे, हर गम में सहारा बने। सुनहरे पल में आपका हार्दिक स्वागत तो हमने कर लिया है, लेकिन अगला गाना जो हम पेश करने वाला है ना, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और वो भी दिल से। हम आपका साथ देंगे रात के 12 बजे तक। सिर्फ यादों और संगीत की दुनिया में खो जाइए हमारे साथ।

हर गीत एक एहसास है, हर धुन हमेशा एक कहानी सुनाती है और हर सुर में छुपा है एक अनमोल लम्हा। सुनहरे पल में आज हम लेकर आए हैं पुराने बॉलीवुड के बेहतरीन गीत जो आपके दिल को सुकून देंगे और चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मॉरिशस। मैं हूँ गिनिशा जो बड़े शिद्दत से आपका साथ दे रहे हैं।

0: इसलिए कि दुनिया से रस्में वफा मिट न जाए।
1: मोहब्बत के लब में तुम भी लगाना।
0: क्यों?
1: इसलिए कि

0: क्यों?
1: इसलिए के शर्मा
2: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

वैसे देखा जाए जिंदगी की भागदौड़ में अगर कुछ हमें सुकून देता है ना, तो वो होते हैं संगीत। और जब बात हो पुराने बॉलीवुड गीतों की, तो दिल खुद ब खुद गुनगुनाने लगता है। तो चलिए आज मिलकर उन्हीं मधुर गीतों के साथ यादों के सफर पर निकलते हैं सुनहरे पल में।

खूबसूरत गाने तराने लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सुनाते सुनाते. फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुड बाय टू यू. बिल्कुल जी, आप हमें इजाजत दीजिए ताकि दोबारा फिर से लौट के आप आए आपके लिए एक और खूबसूरत सुनहरे पल के शो में. तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर और अपना ख्याल रखना जी.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: क्या कहा?

0: होते होते होते प्यार होता है।
1: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।